0: श्रोताओं, इसी के साथ ही भक्ति रस का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं पर समाप्त होता है। श्रोताओं, इस समय सवेरे के 5:55 हो चुके हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें जैविक कीटनाशकों के संदर्भ में। जैविक कीटनाशक विभिन्न प्रकार के जीवों जैसे कीटों, फफूंद, जीवाणुओं, विषाणुओं तथा वनस्पतियों पर आधारित उत्पादन है जो कि फसलों, सब्जियों तथा फलों को कीड़ों और रोगों से सुरक्षा प्रदान कर उत्पादन बढ़ाने में सहयोग करते हैं। ये 20 से 30 दिन के अंदर भूमि और जल से मिलकर जैविक क्रिया का अंग बन जाते हैं, तो वहीं स्वास्थ्य और पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। जैविक कीटनाशकों की एक बहुत लंबी सूची है। सबसे पहले आइए बात करते हैं नीम पर आधारित कीटनाशकों की। नीम एक प्राकृतिक कीटनाशी है जिसमें एजिडोरेक्टिन और सेलानिन नामक तत्व पाए जाते हैं। परीक्षणों में पाया गया है कि नीम का कीटों पर बहुआयामी प्रभाव होता है। यह कीटनाशक प्रतिकर्षक, अरुचिकारक, वृद्धि नियामक और अंडा प्रतिरोधक के रूप में प्रभावी पाया गया है। नीम के पौधों के सभी भागों में यह कीटनाशक तत्व पाया जाता है, अतः इसकी पत्तियाँ, खली और तेल सभी कीट नियंत्रण में सहायक होते हैं। ये कीटनाशी विभिन्न नामों से बाजार में बिकते हैं। इसका 5% का घोल कीट नियंत्रण में काफ़ी प्रभावी होता है। इसका फसलों में एक निश्चित अंतराल के बाद छिड़काव करते रहने से काफ़ी फायदा देखा गया है। नीम पर आधारित कीटनाशी फसलों को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचाते। इनका प्रयोग मुख्यतः धान, तिलहन, टमाटर और इस तरह की सब्जियों को हानि पहुंचाने वाले माहू, सफ़ेद मक्खी, फुदका, सूंडी और फलवेधक सूंडी पर प्रभावशाली पाया गया है। इसमें नीम के तेल की 1 लीटर मात्रा को 200 से 300 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना लाभप्रद देखा गया है। किसान भाइयों, हमारे इन द्वीपों में भी नीम की कोई कमी नहीं है। अगर आप बाज़ार से जो नीम पर आधारित कीटनाशक दवाएँ हैं उसको नहीं खरीद पाते हैं, तब आप नीम की पत्तियों के रस अथवा नीम के जो बीज होते हैं, निबोरी होती है, उससे निकाला वाला तेल आदि का प्रयोग आप कीटनाशकों के रूप में कर सकते हैं। अब आइए बातें करते हैं ट्राइकोग्रामा के बारे में। ट्राइकोग्रामा जाति के कीट अंडा परजीवी होते हैं। ट्राइकोग्रामा एक कीट होता है जो कि हमारी मदद करता है हमें नुकसान पहुँचाने वाले कीड़ों पर नियंत्रण करने के लिए। ट्राइकोकार्ड का इस्तेमाल तो आप धान के खेत में करते ही हैं। इस कीट की मादा हानि पहुंचाने वाले कीटों के अंडों के भीतर अंडा दे देती है, जिसमें ट्राइकोग्रामा का लार्वा हानिकारक कीटों के भ्रूण को खाकर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं और इस प्रकार से हानिकारक कीट मर जाते हैं। ट्राइकोकार्ड में ट्राइकोग्रामा कीटों के अंडे चिपके होते हैं। एक ट्राइकोकार्ड पर लगभग 20,000 अंडे होते हैं और इन कार्ड्स का इस्तेमाल धान तथा अन्य फसलों में किया जाता है। ट्राइकोकार्ड 10 से 15 दिन के अंतराल पर 3 से 4 बार लगाया जाता है। सामान्यतः 5 कार्ड प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए, परंतु बड़ी फसलों जैसे गन्ना आदि में 10 कार्ड प्रति हेक्टेयर के हिसाब से

0: में लाया जाता है। जब इस काट को हम खेत में लगाते हैं तो इससे जो ट्राइकोग्रामा के जो अंडे होते हैं उससे कीट निकलते हैं और खेत में जो हानिकारक कीड़े होते हैं जिन पर कि जिनके जो अंडे होते हैं उन पर ये अपने अंडे दे देते हैं और इस तरह उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ये कीट नियंत्रण का सबसे सरल और सस्ता उपाय है और इससे फसल पर और पर्यावरण पर कोई बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ता।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एग्री टिप्स। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 138वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने ऊर्जा और व्यापार की आपूर्ति जारी रखने पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में डॉ जयशंकर ने कहा कि युद्ध का असर सिर्फ संबंधित देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और विकास प्रभावित होती है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बारे में उन्होंने कहा कि यह युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संघर्ष समाप्त करने का आह्वान दोहराया। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों के हमलों को भी अस्वीकार बताया। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया। उन्होंने कांग्रेस पर झूठे दावों के आधार पर देश की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। श्री नवीन ने कहा कि लोकतंत्र में जीत और हार स्वाभाविक है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत प्रचार का सहारा लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, उड़ीसा और तेलंगाना में भी आज बारिश की आशंका है। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा रुक दी गई है। तीर्थयात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। मौसम ठीक होने के बाद ही यात्रा फिर शुरू होगी। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर आज भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मैच 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीम के बीच

पांच मैचों की T20 श्रृंखला भी खेली जाएगी। एशियाई खेलों में स्क्वाश में अनाहत सिंह और अभय सिंह का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा। एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर, एनसी सोजन, पारुल चौधरी और शैली सिंह मुकाबला करेंगे। हॉकी में भारतीय महिला टीम सिंगापुर से खेलेगी। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और भारतीय मिक्स जोड़ी पदक से एक जीत दूर है। तीरंदाजी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और तलवारबाजी में भी आज भारत को पदक की उम्मीद है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100 हर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:10 हुए हैं। अब सुनिए जलियानों का यात्रा कार्यक्रम।

एमवी वंडूर महाबंदर होते हुए डिगलीबोर के लिए कल 28 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और परसों 29 तारीख को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से चलकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी कैंबल बे लिटिल अंडमान जाने के लिए आज सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और आज ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी कैंबल बे की अगली यात्रा होगी इसी मार्ग के लिए 4 अक्टूबर को सुबह 9 बजे।

नालंदा जहाज नानकौरी होते हुए कैंबल बे के लिए मंगलवार 29 सितंबर को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और 1 अक्टूबर को सुबह 8 बजे कैंबल बे से चलकर नानकौरी होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। नालंदा जहाज की अगली यात्रा होगी इसी मार्ग के लिए 20 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को सुबह 9 बजे।

एमवी रंगा शहीद द्वीप के लिए आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा व दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप जाने के लिए आज दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा। दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से वापस श्री विजयपुरम लौटेगा।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और एफ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, सवेरे के 6:15 हो चुके हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम इंद्रधनुष।

नमस्कार श्रोताओं, सुप्रभात। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का हमारा शीर्षक है सफ़र। सफ़र, श्रोताओं, ये शब्द सुनते ही हम बेहद खुश हो जाते हैं। श्रोताओं, चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे से नगमे के साथ।

दोस्तों, ज़िंदगी एक ऐसा सफ़र है जिसमें कभी खुशियों की बहार आती है तो कभी गम की घटाएं गिर जाती है। कभी रास्ते आसान लगते हैं तो कभी मंजिल तक पहुंचने के लिए कई मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यही उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी को खूबसूरत और यादगार बनाते हैं। तो चलिए, इन्हीं भावनाओं को बेहद खूबसूरती से बयां करता है हमारा ये अगला गीत।

दोस्तों, कभी-कभी जिंदगी का सफर इतना खूबसूरत होता है कि मन करता है बस चलते रहें और प्रकृति की सुंदरता को निहारते रहें। खुले आसमान के नीचे, ठंडी हवाओं के बीच और चारों ओर बिखरी प्राकृतिक सुंदरता के साथ सफर का आनंद और भी बढ़ जाता है।

दोस्तों, हर सफर की अपनी एक कहानी होती है। कुछ रास्ते हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं तो कुछ रास्ते खूबसूरत यादों से भर देते हैं। आज के इस संगीतमय सफर में भी हमने गीतों के साथ जीवन के कई रंगों को महसूस किया। उम्मीद है हमारे साथ बिताई ये सफर आपके दिल में भी कुछ मीठी यादें छोड़ गया होगा। इसी उम्मीद के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, नए गीतों और एक नई संगीतमय यात्रा के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम के कार्यक्रम और अपने जीवन के हर सफर को मुस्कुराते हुए यादगार बनाते रहिए। नमस्कार, सुप्रभात।

धनुष। श्रोताओं, इस समय सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान की 374वीं कड़ी। गायक कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल और

देवाधिदेव महादेव से राम अवतार की पूरी कथा सुनकर पार्वती के मन का संशय सर्वथा मिट गया, किंतु शिव की इस उक्ति ने कि यह अनुपम कथा काकभूषुंडी ने गरुड़ को सुनाई, उनके मन में सहज जिज्ञासा जगा दी। एक कौवा ऐसी भक्ति कैसे पा गया? देवाधिदेव ने तब वो कथा सुनाई कि पवित्र और पुण्य आत्मा काकभूषुंडी को यह सदगति और ऐसा दुर्लभ सुयोग और सुअवसर कैसे प्राप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान की 374वीं कड़ी। गायक कलाकार थे अनुराधा पौडवाल और हरिहरन, तथा संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। सवेरे के 6:40 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए वतन के गीत कार्यक्रम के तहत कुछ देश गान।

6:50 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं को मौसम के बारे में कहा जाता है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ एक क्षेत्रों में गरज के साथ वर्षा होगी। मछुआरों को कोई संबंधी चेतावनी नहीं दी जाती है। आज दोपहर तक के मौसम के बारे में अनुमान है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होगी। ये थी मौसम की जानकारी।

और अब एक नज़र आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। आज सवेरे 7:15 पर आप सुनेंगे देशरागनी कार्यक्रम। ठीक इसी समय सुनिए विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सवेरे 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान में विश्व पर्यटन दिवस पर अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सिम्पसन से ली गई विशेष भेंटवार्ता आप सुनेंगे। विषय रहेगा पर्यटन के रंग में अंडमान निकोबार। 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे कवल सिद्धू, सुधा सिंह और पंकज उदास। बाल जगत कार्यक्रम में सुबह 9:00 विश्व पर्यटन दिवस पर डॉक्टर राजाशेखरन की वार्ता होगी। भगत सिंह जी की जयंती पर चर्चा की जाएगी। सवेरे 9:30 पर आप सुनेंगे जापान में खेले जा रहे 20वें एशियाई खेलों की दैनिक रिपोर्ट की रिकॉर्डिंग। 9:40 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप अली अहमद हुसैन और साथियों से शहनाई वादन सुन पाएंगे। सुबह 10:00 सुनिए लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दिन के 11:00 आप सुनेंगे मन की बात के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों को संबोधन, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। दोपहर 12:00 तेलुगु कार्यक्रम में पुराने फिल्मी गाने सुनवाए जाएंगे। 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम में श्रुति मधुरम कार्यक्रम होगा। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में गायक होंगे विशु भटनागर। घर संसार कार्यक्रम में दोपहर 1:30 पर आप सुनेंगे परिसंवाद। प्रतिभागी होंगे सोनिया, चंद्रबाबू, मोना हसीजा और जतिन डैंग। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर सभा का समापन होगा, जबकि एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर हमारा स्थानीय सभा जारी रहेंगी गीत लहरी कार्यक्रम के साथ। दोपहर बाद 3:00 सुनिए एल्बम टाइम कार्यक्रम। 3:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सूचनाओं के अलावा विश्व पर्यटन दिवस पर चर्चा होगी और तेरेसा द्वीप के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत भक्ति गीत आप सुनेंगे। शाम 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे, 4:40 पर कार्यक्रमों का विवरण और शाम 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम में शाम 5:00 निंजम मरपदलई के तहत पुराने फिल्मी गाने सुनवाए जाएंगे। सुरक्षा बीमा योजना और विश्व पर्यटन दिवस पर चर्चाएं होंगी। शाम 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम में सुविचार के साथ विश्व पर्यटन दिवस, विश्व भद्र दिवस, विश्व नदी दिवस, राजा राम मोहन की जयंती व भगत सिंह की जन्म जयंती पर चर्चाएं होंगी। संध्या 6:00 संगीत संगनी कार्यक्रम। 6:30 पर आप सुनेंगे सेवा संकल्प अभियान के अवसर पर विशेष कार्यक्रम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट। 6:45 पर देशगान कार्यक्रम। 7:15 पर मौसम की जानकारी व जलियानों का यात्रा कार्यक्रम होगा और जन सूचनाएं। 7:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। संध्या 7:30 पर युवानी के तहत लाइव फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो म्यूजिक लवर्स, तथा विश्व पर्यटन दिवस पर चर्चा होगी। रात 10:00 विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:00 न्यूज एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम रेडियो स्कोप और रात 10:00 रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के कार्यक्रम में एस सुप्रदीप से कर्नाटक बांसुरी वादन होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं, अब सुनिए जन सूचनाएं।

आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 19.1 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 92% तथा न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 30.7 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय आज 5:08 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:12।

और अब सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान उड़ान संख्या 2937 आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और उड़ान संख्या 2936 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए अपनी वापसी उड़ान भरेगा आज दिन के 11:40 पर। तो ये थी एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी।

0: एक आवश्यक सूचना, आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक न हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगरपालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन इस ब्रेक के बाद।
1: धी धृदि स्मृदि विभ्रष्टम कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापरादम तव विद्यात् सर्वदोष प्रकोपनम। प्रज्ञा अर्थात ज्ञान, अपराध यानी गलत कार्य। जब मनुष्य की बुद्धि, स्मृति और धैर्य विचलित हो जाए, तब वह अनुचित कार्यों की ओर बढ़ता है। यही प्रज्ञापराध कहलाता है। यह शरीर और मन दोनों में असंतुलन पैदा करता है और शारीरिक एवं मानसिक दोषों को उत्तेजित कर रोगों का कारण बनता है। आयुर्वेद अपनाइए, जीवन स्वस्थ बनाए। आयुर्वेद दिवस 23 सितम्बर को द्वीपों में मनाया जा रहा है। अंडमान निकोबार प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के आयुष प्रकोष्ठ तथा अंडमान निकोबार स्टेट आयुष सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: बीड़ी, सिगरेट का धुआं धूम्रपान ना करने वालों के लिए भी हानिकारक है। ये गले से अंदर जाके ना सिर्फ फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि कुछ ही मिनटों में खून को गाढ़ा करके दिल तक जाने वाली मुख्य नसों को नष्ट कर देता है। इससे दिल में खून संचार कम होने लगता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। पैसिव स्मोकिंग जानलेवा है, इसे नकारें। तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पे कॉल करें।
3: घबराने की कोई बात नहीं, 70% सांप जहरीले नहीं होते।
4: फिर भी जहरीले सांप के घाव को ना धोएं, ना काटें, ना चूसें, ना हिलाएं, तुरंत
5: 102 या 112
4: नंबर पर एम्बुलेंस सहायता के लिए संपर्क करें।
6: सांप को ढूंढने या मारने में या तांत्रिक के पास जाने में समय ना गवाएं। अस्पताल पहुंचने में देरी जानलेवा हो सकती है। याद रखें, अगर सुबह

0: सोचते ही दिल मचले, उल्टी हो, पेट में दर्द हो, तो ये क्रेट सांप के काटने से हो सकता है, जिसके काटने के निशान कई बार दिखाई नहीं देते।
1: नेशनल हेल्थ मिशन अंडमान तथा निकोबार के द्वारा जारी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। विश्व पर्यटन दिवस पर उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने द्वीपवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि द्वीप समूह पर्यटन, पर्यावरण और संस्कृति का अनूठा संगम है। उपराज्यपाल ने जीबी पंत अस्पताल का निरीक्षण कर मरीजों की सुविधाओं और चिकित्सा सेवाओं में सुधार के निर्देश दिए और विश्व पर्यटन दिवस और स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज द्वीप समूह के विभिन्न समुद्री तटों पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा।

सुबह के समाचारों के साथ मैं ज्योति लकड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम का 138वां एपिसोड होगा। यह कार्यक्रम समूचे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, पीएमओ तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल डॉ दिनेश शर्मा ने द्वीपवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि यह द्वीप समूह भारत की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का एक अनमोल रत्न है। ऐतिहासिक सेलुलर जेल और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के स्मारकों से लेकर स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, कयाकिंग, द्वीप भ्रमण, पर्यावरण पर्यटन और प्रकृति पर आधारित विश्व स्तरीय अनुभवों तक हमारे द्वीप प्रकृति, साहसिक गतिविधियों, इतिहास, संस्कृति और शांति का एक अनूठा संगम प्रस्तुत करते हैं। इस वर्ष के विश्व पर्यटन दिवस का विषय डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पर्यटन का पुनः परिकल्पन है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन को बदलने में प्रौद्योगिकी की अपार संभावनाओं को रेखांकित करता है। सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय पर्यटन क्षेत्र से जुड़े संगठनों और विभागों के सहयोग से आज विश्व पर्यटन दिवस मना रहा है। इस वर्ष का विषय है पर्यटन को नए स्वरूप में ढालने के लिए डिजिटल एजेंडा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसके तहत द्वीपों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चिड़िया टापू में पक्षी पर्यटन कार्यशाला तथा उपराज्यपाल की भागीदारी में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया और विभिन्न तटीय क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। आज चयनित संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। प्रमुख प्रवेश स्थलों सेलुलर जेल, स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप में पर्यटकों का पारंपरिक स्वागत किया जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस का समापन समारोह आज शाम 4 बजे कार्बाइन स्कूप तट पर होगा, जिसमें बीच वॉलीबॉल और रस्साकस्सी के अंतिम मुकाबले, स्थानीय कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, निरीक्षण और स्वच्छता अभियान। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म एक्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। द्वीप समूह के उपराज्यपाल डॉ दिनेश शर्मा ने जीवी पंत अस्पताल का निरीक्षण कर अस्पताल की चिकित्सा सुविधाओं, व्यवस्थाओं तथा प्रबंधन की समीक्षा की। उन्होंने नेत्र रोग, अस्थि रोग, शल्य चिकित्सा

मेडिसिन और बाल रोग सहित विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया और मरीजों से बातचीत की। उन्होंने जारवा वार्ड में भर्ती जनजातीय समुदाय के मरीजों से भी मुलाकात की। डॉक्टरों के साथ अपनी बातचीत के दौरान उपराज्यपाल ने आवश्यक चिकित्सा सेवाओं को बहाल करने और जल्द से जल्द सभी सेवाओं को पूरी तरह चालू करने के लिए ठोस तथा समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने वेंटिलेटरों को भी तत्काल ठीक कराने का निर्देश दिया। अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के मुद्दे पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने को कहा गया। उपराज्यपाल ने द्वीपों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने और चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एनिम्स में MBBS और PG की सीटें बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने और आगे की कार्रवाई करने पर बल दिया। उन्होंने कैंसर और हृदय रोग सेवाओं को पूर्ण रूप से क्रियाशील और प्रभावी ढंग से संचालित करने का निर्देश भी दिया। उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित 14 विकास कार्यों की समीक्षा कर उन्हें सहमति दी है। इन कार्यों में सड़क निर्माण, नालियों का निर्माण, चेक डैम, सिंचाई तालाब, सामुदायिक भवन, बस स्टॉप और सार्वजनिक शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का विकास शामिल है। इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विकास कार्यों के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। विश्व पर्यटन दिवस और स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज द्वीप समूह के विभिन्न समुद्री तटों पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान मरीना पार्क, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, कार्बाइंस्कोप तट, बर्मा नाला, चिड़िया टापू तट, वंडूर तट, शोलबे 19, नॉर्थ बे, कोरल आइलैंड और कॉलिनपुर तट पर आयोजित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदार पर्यटन के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय की ओर से कार्बाइंस्कोप तट पर आयोजित बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन पुरुष और महिला वर्ग में 18 से अधिक लीग मुकाबले खेले गए। पुरुष वर्ग का फाइनल आज शाम 4 बजे SV ब्रदर्स और सेवा भारत के बीच खेला जाएगा। महिला वर्ग के फाइनल में कल TGSEA ने टू सिस्टर्स को हराया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नए विद्यालयों की मान्यता प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने महत्वपूर्ण प्रस्ताव को सहमति दे दी है। इसके तहत नए विद्यालयों की मान्यता अवधि, जिसे पहले 3 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष किया गया था, अब बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। इससे नए विद्यालयों को स्थिरता मिलेगी और वे शिक्षा की गुणवत्ता तथा विद्यार्थियों के बेहतर परिणामों पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। इसके साथ ही मान्यता के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या 19 से घटाकर केवल 5 कर दी गई है। इससे विद्यालय प्रबंधन पर कागजी कार्रवाई और अनुपालन का बोझ कम होगा। आंध्र एसोसिएशन श्री विजयपुरम की आम सभा की बैठक आज सुबह 10 बजे एसोसिएशन परिसर में आयोजित की जाएगी। बैठक में विभिन्न एजेंडों पर चर्चा कर उचित निर्णय लिए जाएंगे। एसोसिएशन के महासचिव ने सभी सदस्यों से इस बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज, कल और 29 सितंबर को तेज हवाओं के साथ गरज चमक और वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज रात 11:30 बजे तक समुद्र में ऊंची लहरें उठने का पूर्वानुमान जताया है। प्रशासन ने मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लोगों और पर्यटकों से आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। विश्व पर्यटन दिवस पर उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने द्वीपवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि द्वीप समूह पर्यटन, पर्यावरण और संस्कृति का अनूठा संगम है। उपराज्यपाल ने जीवी पंत अस्पताल का निरीक्षण कर मरीजों की सुविधाओं और चिकित्सा सेवाओं में सुधार के निर्देश दिए और विश्व पर्यटन दिवस और स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज द्वीप समूह के विभिन्न समुद्री तटों पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा।

0: इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:15 हुए हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम देश रागिनी।

दोस्तों, देशरागनी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये देश हमारी पहचान, हमारी संस्कृति का नाम है। इस मिट्टी से जुड़ी यादें, इसकी खुशबू और इसके लिए मन में बसा प्रेम हर एक के दिल में रहता है। तो आइए सुरों के साथ शुरू करते हैं देश प्रेम का यह खूबसूरत सफर। कहते हैं अपने देश से दूर जाने पर ही अपनी मिट्टी की याद बहुत आती है। अपने वतन की खुशबू, अपनी संस्कृति और अपने लोगों की याद हमेशा दिल में बसी रहती है।

दोस्तों, भारत की पहचान उसकी वीरता, उत्साह और रंग बिरंगी संस्कृति से है। यहाँ के वीर जवान देश की रक्षा में हमेशा तत्पर रहते हैं, तो वहीं इस देश की खुश मिजाजी और मस्ती भी इसकी खास पहचान है।

अपने देश से प्यार की भावना हर दिल में एक अलग ही एहसास जगाती है। देश की मिट्टी, उसकी खुशबू, उसकी संस्कृति और उसके लोगों से जुड़ी यादें हमेशा हमारे दिल के करीब रहती है। तो आइए अपने वतन के प्रति प्रेम और गर्व की भावना के साथ सुनते हैं ये गीत।

नमस्कार, सुप्रभात। सुबह की सुनहरी किरणों की दस्तक और प्रकृति की खूबसूरत मुस्कान के साथ गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। अंडमान की इन खूबसूरत फिजाओं में जहां हर लहर कोई कहानी कहती है और हर सुबह जिंदगी को एक नया एहसास देती है, तो चाय की प्याली हो या कॉफ़ी की खुशबू, घर का आंगन हो या सफ़र का रास्ता, जहाँ भी हैं आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ पल है संगीत और खास बातों के साथ। श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं विश्व पर्यटन दिवस। पर्यटन केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने का सफ़र नहीं, यह अलग अलग संस्कृतियों, परंपराओं, इतिहास और प्रकृति को करीब से जानने और महसूस करने का अवसर भी है। और जब बात पर्यटन की हो तो हमारे खूबसूरत अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जिक्र भला कैसे न हो। तो श्रोताओं, लीजिए सुनिए, विश्व पर्यटन दिवस पर अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सिम्पसन के साथ ली गई भेंटवार्ता। विषय है पर्यटन के रंग में अंडमान निकोबार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:30 हुए हैं और अब सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।

0: नमस्कार। अंडमान निकोबार अपनी प्राकृतिक सुंदरता, नीले समुद्र और खूबसूरत द्वीपों के लिए देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करता है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आज हम बात करेंगे पर्यटन के रंग में अंडमान निकोबार विषय पर और जानेंगे यहाँ के पर्यटन की संभावनाओं और बदलते पर्यटन अनुभवों के बारे में। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री सिम्पसन जी। सिम्पसन जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को और विश्व पर्यटन दिवस सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ।
0: तो सबसे पहले अंडमान निकोबार की खूबसूरती और यहाँ की पर्यटन संभावनाओं की बात करते हैं। सिम्पसन जी, आप हमारे श्रोताओं को बताइएगा कि अंडमान निकोबार को एक पर्यटन स्थल के रूप में आप किस तरह देखते हैं?
1: अंडमान निकोबार टूरिज्म जो है, इनको एक ब्रांड अंडमान के तहत हम इसको रूप दिया गया है। तो जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, जो एक सोच विचार और एक ड्रीम लेके आते हैं, तो उनका ड्रीम यहाँ पर अंडमान में पूरा होता है, जो पूरे भारत के एक मिनी इंडिया का कॉन्सेप्ट से सभी प्रकार के यहाँ पर टूरिज्म पाया जाता है। तो इस टूरिज्म का अनुभव पूरे देश में सबसे ज्यादा अंडमान में, हम इसको जैसे कि हम कश्मीर को जन्नत बोलते हैं, तो अंडमान को हम लोग स्वर्ग बोलते हैं। जब भी हम जो भी टूरिस्ट के साथ बात करते हैं, आप एक बार आइए, आप स्वर्ग आइए बोलेंगे, तो स्वर्ग का रूप हम लोग अंडमान को दिया हुआ है।
0: बिल्कुल। अब अगर यहाँ की खासियतों की बात करें तो अंडमान निकोबार की ऐसी कौन कौन सी खासियतें हैं जो देश विदेश के पर्यटकों को यहाँ आने के लिए प्रेरित करती है?
1: सबसे पहले अंडमान जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर जो समुद्र है, नीला कलर के जो आकर्षक करता है, जो समुद्र के पानी और आसमान का जो कलर, ये दोनों एक जैसे होते हैं, ये एक नजारा, ये टूरिस्ट को आकर्षित करता है कि इस तरह का जो स्काई देखा जाता है और वाटर कलर, और यहाँ का जो सबसे बड़ा क्रिस्टल वाटर है, और यहाँ का जो फ्लोरा फाना है, जो कोरल्स जो अंडमान निकोबार में जो पाया जाता है, दुनिया में सबसे ज्यादा जो डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज रीफ्स है अंडमान में, इसको ये देखने के लिए, और सबसे बड़े यहाँ का जो इकोलॉजी सिस्टम के साथ एनवायरनमेंट के साथ, ये बहुत सुंदरता का साथ इस आइलैंड को एक नेचर ने बनाया है, तो ये टूरिस्ट यहाँ पर आके इसको एंजॉय करता है।
0: समय के साथ लोगों के घूमने फिरने का तरीका और उनकी पसंद भी बदलती रहती है। इसी संदर्भ में जानना चाहेंगे कि यहाँ आने वाले पर्यटकों की पसंद में पिछले कुछ वर्षों में किस तरह का बदलाव देखने को मिला है?
1: सबसे पहले तो अंडमान में कुछ सालों पहले जो टूरिस्ट आते थे सिर्फ साउथ अंडमान तक रह जाते थे, अभी जो टूरिस्ट को जो चॉइस रहता है, अभी हमारे जो अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा हमारा जो फोकस है एडवेंचर्स एक्टिविटीज है, जो हमारे पूरे एशिया में सबसे ज्यादा जो हमारे जो अंडमान निकोबार में करीबन 40 का ऑफिस स्कूबा डाइव सेंटर है, जो पानी का दुनिया को देखने के लिए पूरे विश्व के लोग और भारत के सभी भिन्न क्षेत्र से सभी लोग ये जो स्कूबा डाइविंग जो पानी के अंदर देखने के लिए ये आकर्षण का केंद्र बना है। ये हमारे जो स्वराज द्वीप है, साई द्वीप है और चिड़िया टापू, तो लोग टूरिस्ट वहां पर ज्यादा उसको मनोरंजन करने और देखने जाते हैं। वाकई में लाइफ में एक बार हमको स्कूबा डाइव एक बार करना करके यहाँ पर टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं
0: जी, क्योंकि सागर के भीतर क्या छिपा है ये किसी को भी नहीं पता, इसलिए जब तक हम जो है उसकी खूबसूरती ना देख ले तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। सिम्पसन जी, आज

0: का पर्यटक केवल किसी जगह को देखना ही नहीं, उसे करीब से समझना भी चाहता है, तो क्या ऐसा बदलाव यहाँ भी देखने को मिल रहा है? क्या आज के पर्यटक केवल समुद्र तट और प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि स्थानीय संस्कृति और जीवन शैली को भी करीब से जानना चाहते हैं?
1: जरूर, मैं को मेरे जो संस्था के लोग एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जो टूरिस्ट आता है, सबसे पहले अंडमान निकोबार का लोग जो होते हैं सबसे ऑनेस्ट वो फील करते हैं, और यहाँ का जो कल्चर को उन लोग फील करते हैं, और यहाँ जो ट्रेडिशनली जैसे लोग एक दूसरे से हैं, जो कश्मीर से लेके अरे निकोबार तक का जो लोग यहाँ पर रहते हैं, तो वो एक कल्चर यहाँ पर मिल रहा है, एक मिनी इंडिया का कॉन्सेप्ट, और सभी प्रदेश के लोग को यहाँ देखने को उनको एक मौका मिला है, और विभिन्न प्रकार के कल्चर और बातचीत, खान पान यहाँ पर मिल रहा है, सभी टाइप का उसको टेस्ट का आनंद यहाँ पर मिल रहा है, और सबसे पहले यहाँ लोगों का जो बातचीत टूरिस्ट को ज्यादा आकर्षित करते हैं, प्रभावित करते हैं कि यहाँ लोग शांत स्वभाव के लोग हैं और ज्यादा सुनते हैं, लोग अपने विचारों को रखते हैं टूरिस्ट के साथ में, मिलनसार रहते हैं, ये सबसे पहले उनको पसंद करें। और जो अंडमान में जब जैसे टूरिस्ट आता है, जैसे एयरपोर्ट से जब आते हैं, आगमन होता है, तो उस टाइम में हम जो स्वागत करते हैं उन प्रश्न हो जाते हैं, जो यहाँ के जो ट्रेडिशनल से हम करते हैं, कभी नारियल पानी से उनको स्वागत करते हैं, यहाँ के जो हमारे जो लोकल प्रोडक्ट होते हैं, कभी उनको हम नारियल पत्ती का वो से वेलकम करते, कभी निकोबारी जो कल्चर हो जो केला के पत्ती से होते जो माला बना के से लग, या कभी लकड़ी के यहाँ के जो उससे फूल बनाते, ये लोग नए चीज देखते वेलकम करते, उनको बहुत
0: बहुत अच्छा
1: बहुत अच्छा लग रहा है
0: जी। तो पर्यटन की बदलती पसंद के बीच उनकी यात्रा को बेहतर बनाने में ट्रैवल ऑपरेटर्स की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे अंडमान एवं निकोबार पर्यटन को बढ़ावा देने में टूर ऑपरेटर्स की क्या भूमिका है?
1: टूर ऑपरेटर का बहुत बड़ा भूमिका है, क्योंकि जो अंडमान में जितने भी जो टूर ऑपरेटर काम करते हैं, मैक्सिमम B2B काम करते हैं, मेलिन के अदर स्टेट के टूर ऑपरेटर के साथ में, और हमारा जो वार्तालाप रहता है बहुत अच्छे रहते हैं, उससे क्या टूरिस्ट को हम इजिली उनको पैकेजेस सेल करने में और उनको गाइड करने में, उनको समझाने में, हमारे को सरल तरीका का जो हम यूज करके उनको समझाते, तो वो लोग अंडमान को ज़्यादा आकर्षित करते हैं और लोग यहाँ पर इजिली इस हमारे जो टूर ऑपरेटर का पैकेजेस को लेने में उन लोग सुविधा प्राप्त रहता है
0: जी। जब कोई पर्यटक किसी नए स्थान पर आता है तो वह चाहता है कि उसकी पूरी यात्रा आरामदायक और यादगार हो। ऐसे में पर्यटकों की यात्रा को सुविधाजनक और यादगार बनाने के लिए एक ट्रैवल ऑपरेटर किन किन बातों का विशेष ध्यान रखता है?
1: सबसे पहले हम लोग जो टूरिस्ट की जो बातचीत और उनकी स्वभाव कैसे एनालाइज कर लेते हैं, और हमारा जो जो हमारे साथ में जुड़े रहते हैं जो टूरिज्म सेक्टर में, जैसे हम शुरुआत से हमारे जो कोऑर्डिनेटर होता है, ड्राइवर होता है, हमारी जो गाड़ियां जो हम जहाँ जहाँ लिंक में रहते हैं, वो सभी का पहले हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, और उसी तरह का टूरिस्ट के साथ उनका सर्विस करते हैं, जैसे आते साथ में हमारा ड्राइवर के साथ उसका कैसा कोऑर्डिनेशन रहता है, कोऑर्डिनेटर कैसा, तो वो स्वभाव के साथ उनका जो जब फर्स्ट इम्प्रेशन अगर टूरिस्ट को अच्छा लगा तो लास्ट इम्प्रेशन तक का वो बहुत बेहतरीन चलेगा। कहीं पर अगर एक इधर उधर हो गया भी तो कोई ऐसा भी, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं हमारे पास में, कभी ना कभी 2-3 मिनट गाड़ियां लेट हो जाती है, वो आती है, लेकिन टूरिस्ट उसको इजिली, क्योंकि घूमने आते हैं हम, तो कहीं ना कहीं जैसे बारिश हो गया, कहीं सड़क जाम हो गया, तो वो सब
0: थोड़ी बहुत
1: टूरिस्ट भी मैनेज कर लेते हैं कि उनको घूमना है, इस जगह का आनंद लेना, इस सुंदरता को उसको अपने दिलों में रख के अपनी यादों को यहाँ से लेके जाना। अंडमान ऐसा एक डेस्टिनेशन है, आप उतरते साथ में सबसे पहले उनका स्वागत मिलता है उसको, क्योंकि ये स्वतंत्र सेनानियों का जगह है, वीरों का स्थल है, लेकिन हम भारत के सभी लोगों को वो बोलते हैं कि एक बार आप अंडमान निकोबार आइए और हमारे जो राष्ट्रीय स्मारक सिल्वर जेल का विजिट करेंगे,
0: और वहाँ की खास बात है तो लाइट एंड साउंड
1: जी प्रोग्राम है, वो एक लोगों को
0: अपनी ओर खींचती है जी। अब उन लोगों की बात करते हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से पहली बार अंडमान निकोबार आने की योजना बना रहे हैं। सिम्पसन जी, अब हमें ये बताइएगा कि देश के अलग अलग हिस्सों से अंडमान निकोबार आने वाले पर्यटकों के लिए यात्रा की योजना बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है?
1: और सबसे पहले हम की जो डिमांड क्या है देखते हैं, और हम अंडमान निकोबार में जैसे कि आते टूरिस्ट को पहले उनका सेफ्टी, कितने उम्र के हैं, के पास क्या हेल्थ इश्यू है, क्या है, वो सब देखते हैं कि अंडमान में एक हम एक स्ट्रैटेजी के तहत टूरिज्म का आगे लेंगे, क्योंकि यहाँ आने के बाद में टूरिस्ट को कोई ऐसा कोई बाधा ना हो कि उनके स्वास्थ्य का ऊपर में, बहुत रेयर केस हो रहा है, लेकिन हम उसके लिए पूरा उनको बकायदा बता देते हैं हर चीज़ को पॉलिसी के तहत में, उनके ऊपर सेफ्टी के ऊपर में हम ज़्यादा फोकस करते हैं टूरिस्ट को, और वो इजिली उसको कोऑपरेट भी करते हैं।
0: और यहाँ छोटा सा द्वीप है सर, तो वेदर भी अचानक चेंज हो जाता है, तो सभी कुछ को देखकर योजनाएं बनाना बहुत जरूरी है।

0: जैसे कि अंडमान निकोबार की पहचान सिर्फ खूबसूरत समुद्र तटों तक ही सीमित नहीं है, यहाँ रोमांच और समुद्री गतिविधियों की भी काफी संभावनाएं हैं। क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन के साथ साथ साहसिक गतिविधियों और समुद्री पर्यटन की संभावनाएं बढ़ रही है?
1: अभी हाल फिलहाल में हमने इसको एक नया रूपरेखा दिया, मेरिन टूरिज्म। जैसे कि अभी दो चार ऐसा जो चीजें हमारे आगे निकल के आया टूरिज्म के लिए, बहुत लंबे समय तक का अंडमान टूरिज्म स्टेबल रहेगा। जैसे लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान में वहाँ पर अभी सर्फिंग के लिए बहुत दुनिया भर में अभी फेमस होके जा रहा है। लास्ट हमने एक वहाँ पर बहुत बड़ा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के तहत वहाँ पर प्रोग्राम हुआ था और इंटरनेशनल प्लेयर तक सर्फिंग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, तो वो एक आइडियल प्लेस बन गया जो सर्फिंग जो बटर बे बीचेस है, तो लिटिल अंडमान को भी एक पहचान मिला है। और अभी एस्ट्रो टूरिज्म ये काफी अभी पूरा एशिया में सबसे ज्यादा आकर्षित एक केंद्र बन गया, जैसा चिड़िया टापू में है और आपके जो नील आइलैंड में, स्वराज द्वीप में और जैसे लॉन्ग आइलैंड, इस तरह विभिन्न क्षेत्र में अभी हम लोगों का विलेज टूरिज्म को डेवलप करना है, रूरल टूरिज्म को पर ज़्यादा फोकस करना है, वहाँ पर जो गांव की कल्चर है उसको लोगों को लाना है। कि बहुत सारे लोग अभी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनको फिशिंग का बहुत शौक रहता है।
0: अच्छा।
1: तो फिशिंग में अभी क्या हो गया, गेम फिशिंग बहुत चेंजेस आया है, तो गेम फिशिंग में भी काफ़ी लोग उसमें देखने के लिए आते हैं। बहुत एक रिप्यूटेड टूरिस्ट जो गेम फिशिंग के लिए एक प्लानिंग तहत आ रहे हैं, तो वो भी काफ़ी अंडमान में सक्सेस हो रहा है, तो गेम फिशिंग का भी काफ़ी स्कोप है। ये लंबे समय तक का चलने वाला टूरिज्म है
0: जी, इसको भी आगे बढ़ाने की जो है कोशिश की जा रही है। सिमसन जी, हम सभी चाहेंगे कि पर्यटन बढ़े लेकिन हमारी प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, यह बहुत जरूरी है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, द्वीपों की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देना कितना महत्वपूर्ण है?
1: पर्यटन को बढ़ावा देने साथ साथ हमारे जो एनवायरनमेंट को कोई बाधा नहीं होना, एनवायरनमेंट को देखते हुए यहाँ के जो इकोसिस्टम के साथ हम इनको जुड़ के टूरिज्म को लेके जाना, तभी हम एक सस्टेनेबल टूरिज्म दे पाएंगे यहाँ पर। और मैं चाहता हूँ कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह जितने भी टूरिज्म डेस्टिनेशन उभर के नया आएगा, वो सभी एक इको टूरिज्म तहत ही रहना, इसमें ज्यादा छेड़छाड़ ना हो और इसमें एक हर चीज का एक लिमिटेड दायरा बने कि लोगों को वहां पर लेके जाएगा सेफ्टी मेसर के साथ में, और उसके साथ में इको सिस्टम का भी खराब ना होए।
0: इसी क्रम में जिम्मेदार पर्यटन की बात भी सामने आती है, जिसमें पर्यटक और पर्यटन उद्योग दोनों की भूमिकाएं होती है। सतत और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने में पर्यटकों और पर्यटन उद्योग की क्या भूमिका हो सकती है?
1: जो है पर्यटन अंडमान निकोबार में आज सबसे ज्यादा जो पहला स्थान पर एक है टूरिज्म, उसके बाद फिशरीज, उसके एग्रीकल्चर। मैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन भारत सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि अंडमान टूरिज्म को एक इंडस्ट्री का एक स्टेटस का रूप में देना, एक फ्रेमवर्क, एक पॉलिसी बनाना। पॉलिसी बनने से क्या, यहाँ लोगों को इजिली काम कर सकता, तभी पॉलिसी के तहत ही लोग जुड़ेंगे तो टूरिज्म सेफ रहेगा।
0: सिमसन जी, पर्यटन का विकास केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे स्थानीय लोगों को भी अवसर मिलते हैं। ऐसे में हमें बताएं कि अंडमान निकोबार में पर्यटन क्षेत्र से स्थानीय लोगों और युवाओं के लिए किस तरह के रोजगार और व्यवसाय के अवसर पैदा हो सकते हैं?
1: सबसे पहले पर्यटन को अगर बढ़ावा देना है या अंडमान निकोबार में ज्यादा से ज्यादा पर्यटक लाना है, जितना ज्यादा आएगा उतना रोजगार बढ़ेगा। मेरे जो एक्सपीरियंस और टूरिज्म इंडस्ट्री का, अगर एक पर्यटक अंडमान आ रहा है, करीबन उससे 25 से 30 लोगों का रोजगार मिल रहा है। को और भी विश्व लेवल में लेके जाना, जितने भी इवेंट्स होते हैं, शोस होते हैं, फेयर्स होते हैं नेशनल लेवल के, जैसे साटे एवोटियम, तो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन इसमें भागीदारी करना और हमारे जितने भी हितधारक है जो अंडमान टूरिज्म के, उन सभी को लेके उसमें भागीदारी से लेके जाने से जरूर हम टूरिज्म का एक डेस्टिनेशन अंडमान को हम ज्यादा एक प्रोडक्ट के रूप में सेल कर सकते हैं।
0: कहा जाता है कि जहाँ संभावनाएं होती है वहाँ कुछ चुनौतियां भी सामने आती है। यदि हम पर्यटन क्षेत्र की बात करें तो पर्यटन उद्योग के सामने यहाँ इस समय कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं?
1: चैलेंजेस बहुत है। सबसे पहले तो चैलेंजेस ये है कि एयर कनेक्टिविटीज, उसके बाद यहाँ की जो वेदर कंडीशन, और जैसे कि ये आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि जितना डेस्टिनेशन विस्तार होगा, तो मैं बताता है कि पर्यटक को और आगे लेके जाना, तो नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान को बढ़ावा देना है, बाराटांग को बढ़ावा देना है, लिटिल अंडमान को बढ़ावा देना है, लॉन्ग आइलैंड को बढ़ावा देना, जैसा साउथ अंडमान में वंडूर को बढ़ावा देना, ये सारे जितने भी टूरिज्म के नए नए डेस्टिनेशन को हम लोग डेवलप करेंगे तो जरूर पर्यटक में विस्तार आएगा, रोजगार भी बढ़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आने वाले समय में पर्यटक ये व्यापार रूप नहीं है, ये एक विस्तार से ये अंडमान का एक बहुत बड़ा एसेट बन के निकल आएगा, लोगों को रोजगार देगा।
0: जी, अब अगर हम भविष्य की ओर देखें तो अंडमान निकोबार

0: के पर्यटन क्षेत्र में काफी संभावनाएं दिखाई दे रही है। आने वाले वर्षों में अंडमान निकोबार के पर्यटन को आप किस दिशा में आगे बढ़ते हुए देखते हैं?
1: मैं अंडमान निकोबार टूरिज्म को एक बड़ा एसेट के रूप से और आने वाले समय में इसको रोजगार का सबसे पहले स्थान देखना चाहता हूँ कि यहाँ का जो युवा पढ़ लिख कर यहीं पर अपने रोजगार, क्योंकि टूरिज्म एकमात्र जो इंडस्ट्री है वो इंडिपेंडेंट है। आप इसमें कोई भी जॉब सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी रूपरेखा। इसके लिए आपको सिर्फ नॉलेज की जरूरत है, प्रैक्टिकली आप कर लेंगे तो ये इंडस्ट्री आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको कहीं में भी रुकावट नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, आप एक छोटा वर्कर से लेकर आप एक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा मालिक भी बन सकते हैं, कई लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं।
0: सिमसन जी, और अंत में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आप उन लोगों को और पर्यटकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आने की योजना बना रहे हैं?
1: मैं सभी जितने भी टूर ऑपरेटर जो मेलैंड में आकाशवाणी के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ में इसको बचाना के लिए जो प्रयास कदम भारत सरकार या अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन उठा रहे, उसके साथ सहयोग सपोर्ट के साथ में इसको बचाए रखना। और मेरे जितने भी मेम्बरान जितने भी सभी लोग, हम लोग सहयोग और सपोर्ट करूँगा। अंत में मैं विश्व पर्यटन दिवस में आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ।
0: तो सिमसन जी, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और अंडमान निकोबार पर्यटन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। नमस्कार।
1: धन्यवाद।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विश्व पर्यटन दिवस पर अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सिम्पसन के साथ ली गई भेंटवार्ता। विषय था पर्यटन के रंग में अंडमान निकोबार। इनसे भेंट कर रही थी के अनीता व कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी जयशीला। श्रोताओं, एक अंतराल के बाद हम लौटेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: फसा। अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, अंतराल के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं गीतों के साथ। उदित नारायण के स्वर में आइए सुनते हैं वीर ज़ारा फिल्म का गाना बोल, जावेद अख्तर के।

0: एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएटेड उम्मीदवार जिन्होंने हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक न हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगरपालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की यह चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। सुबह के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त

0: पक्षों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पुरजोर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, खराब मौसम के बीच चार धाम यात्रा स्थगित और भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर तिरुवनंतपुरम में। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष समाप्त करने के आह्वान को दोहराया। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमलों को अस्वीकार्य बताया। आतंकवाद पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत को आतंकवाद से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बताया और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
2: आतंकवाद शांति के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। अगर इसे किसी देश का समर्थन हासिल हो और इसका मकसद सीमा पार हमले करना हो तो ये वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन जाता है। ऐसी गतिविधियों में शामिल सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आतंकवाद के प्रति कड़ी नीति में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए। खासकर इसके वित्तीय पहलुओं का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और उन्हें रोका जाना चाहिए।
1: श्री जयशंकर ने कहा कि ग्लोबल साउथ के सामने खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से संबंधित बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने बताया कि भारत 78 देशों में करीब 600 विकास परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हर देश को अपनी जरूरतों के अनुसार AI विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रूस सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के पक्ष में है। रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और NewsOn AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
3: तमिलनाडु देश के प्रमुख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME राज्यों में से एक है। राज्यों में कारोबारी एक ही पोर्टल से अलग अलग विभागों से जरूरी मंजूरियां ले सकते हैं। MSME के विकास के लिए राज्य में अलग मंत्रालय भी है। MSME क्षेत्र देश की GDP में करीब 31% का योगदान देता है और कृषि के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। कोयम्बटूर में विनिर्माण, कपड़ा और इंजीनियरिंग से जुड़े 80,000 से अधिक पंजीकृत MSME है। कोयम्बटूर के लीड बैंक के जिला प्रबंधक कार्तिकेन ने आकाशवाणी को बताया कि मुद्रा योजना शुरू होने के बाद जिले के उद्यमियों ने कारोबार और उत्पादन बढ़ाने में काफी रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना की 4 श्रेणियों में मिलने वाले

0: ऋण से उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने और वित्तीय जरूरतें पूरी करने में मदद मिली है। तमिलनाडु में कुल 7,59,847 सूक्ष्म, 1,01,861 लघु और 2,818 मध्यम उद्योग पंजीकृत हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
3: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। एक रिपोर्ट।
4: यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों तथा एटीएम के लिए नकदी हेतु करेंसी चेष्टों की पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। इस दौरान वे कोल्लम में अमृतानंदमयी मठ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति का दोपहर में बालारामपुरम में श्री उथराडोम थिरुनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये थीम पर्यटन के भविष्य को आकार देने में तकनीक की भूमिका पर जोर देती है। एक रिपोर्ट।
5: भारत का पर्यटन क्षेत्र देश की आर्थिक तरक्की, रोजगार और लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। देश की GDP में पर्यटन का 5% से अधिक योगदान है। साल 2025 में भारत में घरेलू पर्यटकों की संख्या 428 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 2,50,00,000 से अधिक हो गई है। भारत ने डिजिटल पर्यटन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ई वीजा और इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं शुरू की गई है। भारत ने 2014 में ई वीजा की शुरुआत की थी, जिससे विदेशी पर्यटकों के लिए भारत आना आसान हो गया है। इस समय 172 देशों के नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध है। नई दिल्ली में आज होने वाले मुख्य कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इन पहलों का उद्देश्य टिकाऊ और समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण आज चार धाम यात्रा स्थगित रहेगी। एक रिपोर्ट।
6: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के सभी जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवाओं की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पिछले 24 घंटों में उधम सिंह नगर और नैनीताल में सबसे अधिक वर्षा हुई। लगातार बारिश के बीच प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी भी हुई है। इस बीच मौसम की चेतावनी को देखते हुए राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र सतर्क है और संवेदनशील क्षेत्रों, नदी नालों तथा जल भराव वाले इलाकों पर निगरानी रखी जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी मूसलाधार

0: मूसलाधार वर्षा से कई जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 15 लोगों की मौत की खबर है।
1: गुरुवार से शुरू हुई मूसलाधार बारिश राजधानी लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, श्रावस्ती और इटावा समेत राज्य के कई हिस्सों में जारी है। 63 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे जगह जगह जलभराव हो गया है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में राज्य में सामान्य से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण तापमान में भी भारी गिरावट आई है और फसलों, विशेष तौर पर गन्ना, धान और सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उड़ीसा के कई हिस्सों में जारी मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है। नदियां उफान पर हैं और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: जी धन्यवाद जागृति। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मुकाबला 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला भी खेली जाएगी। और जागृति, अगर बात करें जापान में जारी एशियाई खेलों में, तो भारतीय पुरुष और महिला तीरंदाजी टीमों ने इस प्रतियोगिता में अपने अपने वर्गों के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों की तिकड़ी साहिल जाधव, गणेश मणिरत्नम और कुशल दलाल ने भूटान को करीबी अंतर से हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। महिलाओं की टीम चिकिता तनिपार्थी, ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रतिका प्रदीप ने कजाकिस्तान को हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में जगह पक्की की। महिलाओं के शॉर्टबोर्ड स्पर्धा में भी शुगर शांति गायन और कमाली प्रकाश दोनों तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। भारत ने अब तक एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य पदकों सहित कुल 30 पदक जीते हैं।
0: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में कल एक विस्फोट में लोगों की मौत हो गई और 35 घायल हो गए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने निर्वाचन आयोग की बैठक को प्रमुखता दी है। विशेष गहन पुनरीक्षण के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। दैनिक भास्कर ने डिफेंस रिफॉर्म शीर्षक से लिखा है, रक्षा सौदों की मंजूरी में लगने वाले समय को घटाने की तैयारी में सरकार, छोटे रक्षा सौदों को कैबिनेट से छूट पर विचार। दैनिक जागरण ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को प्रमुखता दी है। पाकिस्तान आतंकवाद का सीरियल प्रैक्टिशनर, कहा पश्चिम एशिया में व्यापारिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। जापान एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर हिंदुस्तान ने गर्व शीर्षक से शब्द दिए हैं। कबड्डी में भारत को दोहरा स्वर्ण, निशानेबाज और एथलीट भी चमके। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, कबड्डी में भारत का सोने पर सुहागा। राजस्थान पत्रिका ने विश्व पर्यटन दिवस पर विशेष खबर दी है, नींद, खामोशी, नो फोन और गांव की धीमी जिंदगी बनी लोगों की नई मंजिल। पहले दुनिया देखने निकले थे, अब दुनिया से दूर होने, मन की शांति के लिए करते हैं यात्रा। नवभारत टाइम्स ने स्वास्थ्य के नजरिए से एक शोध प्रकाशित किया है, चाय के साथ रोज 100 ग्राम नमकीन बना सकती है बीमार। पैकेज चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, मीठे फ्लेवर्ड ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड मीट में कैलोरी ज्यादा है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पुरजोर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, खराब मौसम के बीच चार धाम यात्रा स्थगित। और भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर तिरुवनंतपुरम में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines.

0: श्रोताओं, कंवल सिद्धू को सुनने के बाद अब सुनिए सुधा सिंह की आवाज में ये गजल।
1: इसके बाद ये एक गजल पेश कर रहे हैं दानिश बरेलवी की नज्म कि नींद आती है बुझा दो शमे, ख्वाब कच्चे हैं बिखर जाएंगे। ये नगमा सिर्फ सुधा पेश करेंगे।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कंवल सिद्धू, सुधा सिंह और पंकज उधास की आवाजों में चंद खूबसूरत गजलें।

और अब एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक न हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगरपालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है।
1: क्या आप जानते हैं कि एचआईवी पॉजिटिव लोगों के मानवाधिकारों और वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अब देश में एक नया कानून है, एचआईवी एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017। 10 सितंबर 2018 को लागू किए गए इस एक्ट में एचआईवी पॉजिटिव लोगों को उनका हक दिलाने और उनकी गरिमा व आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए कई सारे प्रावधान किए गए हैं। इस एक्ट के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न किया जाए। किसी भी इंसान को उसका एचआईवी स्टेटस बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। इस एक्ट की वजह से अब किसी को भी नौकरी पर रखने से पहले उसका एचआईवी टेस्ट कराना या एचआईवी स्टेटस पूछना और बताने के लिए दबाव बनाना दोनों कानूनन अपराध है। किसी भी इंसान की एचआईवी टेस्ट के समय प्री और पोस्ट एचआईवी काउंसलिंग करना जरूरी है और साथ ही उसकी सूचित सम्मति लेना भी जरूरी है।
0: श्रोताओं, इस समय सुबह के 9 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए बाल जगत कार्यक्रम।

हेलो मेरी प्यारी नन्ही दोस्तों, आप सभी का बाल जगत के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी प्यारी रीता दीदी और आज है बेहद खास क्योंकि आज है विश्व पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे। रेडियो के पास बैठे नन्हे मुन्हे दोस्तों अपने कानों के पर्दे जरा खोल लीजिए और तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर पर चलने के लिए जहां हम हवा में उड़े बिना दुनिया की सैर करने वाले हैं। बच्चों जरा आंखें बंद करके सोचिए, जब गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो आप कहाँ कहाँ जाते हैं? नानी के घर, किसी ठंडे पहाड़ पर या फिर समुद्र के किनारे रेत पर घर बनाने, बस घर से बाहर निकलकर किसी नई जगह को देखने, वहाँ मस्ती करने और नई चीजें सीखने की, इसी प्रक्रिया को पर्यटन या टूरिज्म कहते हैं। हर साल 27 सितंबर को पूरी दुनिया में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है ताकि हम समझ सकें कि घूमना फिरना हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि घूमने फिरने के लिए भी कोई अलग से दिन की जरूरत होती है क्या? जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन की शुरुआत इसीलिए की थी ताकि लोग सिर्फ घूमे ही नहीं बल्कि दुनिया को करीब से समझे। जब हम किसी दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ के लोगों से मिलते हैं, उनका पहनावा देखते हैं, उनका टेस्टी खाना खाते हैं और उनकी भाषा के कुछ प्यारे शब्द सीखते हैं। इससे हम एक दूसरे के करीब आते हैं और पूरी दुनिया एक बड़े परिवार जैसी लगने लगती है। और दोस्तों, अगर बात पर्यटन की हो तो हमारे देश भारत का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। हमारे इस महान देश में विविधता का ऐसा खजाना है जो दुनिया में कहीं और नहीं। उत्तर में हमारे पास बर्फ से ढके हिमालय के ऊंचे पहाड़ है जहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे छू लिया हो आसमान को। दक्षिण में नीले समुद्र के खूबसूरत समुद्र तट है, पश्चिम में राजस्थान की सुनहरी रेत और बड़े बड़े किले हैं और पूर्व में घने जंगल और सुंदर वादियां हैं। ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारतें, गुफाएं और हमारे राष्ट्रीय उद्यान जहां शेर, चीता और हाथी आजाद घूमते हैं, यह सब हमारे देश की शान है। जरा सोचिए दोस्तों, हमारे घूमने के लिए सात समुद्र पार जाने की भी जरूरत नहीं है हमें। हमारा भारत ही अपने आप में एक पूरी दुनिया है। लेकिन दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात, जब हम कहीं घूमने जाएं तो हमें एक पक्का वादा करना चाहिए प्रकृति से प्यार करने का। कई बार लोग घूमने जाते हैं और वहाँ प्लास्टिक के पैकेट्स, चिप्स के खाली डिब्बे और बोतल इधर उधर फेंक दिया करते हैं। इससे सुंदर नजारे गंदे हो जाते हैं और बेजुबान जानवरों को बहुत तकलीफ होती है। इसे कहते हैं गैर जिम्मेदार। हमें समझदार पर्यटक बनना है, यानी हम जहाँ भी जाएं वहाँ की सफाई का ध्यान रखें, पेड़ पौधे को नुकसान ना पहुँचाएं और कूड़ा हमेशा कूड़े दान में ही डालें। तभी तो हमारी धरती हमेशा साफ और सुंदर बनी रहेगी।

ही इस विषय पर और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं और जानते हैं कि विश्व पर्यटन दिवस का उद्देश्य क्या है और पर्यटन की आवश्यकता हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है।

नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर राजशेखर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बीबीए टूरिज्म जेएनआरएम महाविद्यालय श्री विजयपुरम से हूँ। बच्चों, आप जानते हो वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर क्यों मनाया जाता है, आप जानते हो? एक्चुअली टूरिज्म बोलने से क्या, पहले बात आपको बताना चाहता हूँ, टूरिज्म बोलने से एक मूवमेंट ऑफ पीपल, एक जगह से जो दूसरा जगह लोग जाते हैं, सिंगल भी जा सकते हो या ग्रुप ऑफ पीपल भी जा सकते हो। जब जाते हो आपका जो लोकेलिटी है उस प्लेस को छोड़ के दूसरा प्लेस में आप जाते हो, उसी को हम लोग टूरिज्म एक्टिविटी कहलाते हैं। एंड जो बंदे और बंदी जो ट्रैवल करते हैं उनको हम लोग टूरिस्ट कहते हैं। इसको और बढ़ोतरी देने के लिए हर साल UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसको एक डे के हिसाब से सेलिब्रेशन करने के लिए डिसाइड। पहला जब वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड 1980 को पहला सेलिब्रेट किया गया, एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व लाइक हर साल जो है ये वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है। ऑफिशियल थीम दिया जाता है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उस थीम के ऊपर टूरिज्म डे जो है मनाया जाता है। ऐसा देखा जैसे इस साल का जो 27 सितंबर 2026 में जो होने वाला है, इस साल का सेलिब्रेशन जो थीम है वो डिजिटल एजेंडा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टूरिज्म इंडस्ट्री, इसका ऊपर मनाया जाता है। तो डिजिटल एजेंडा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू रीडिजाइन द टूरिज्म, व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस एंड क्या रोल है टूरिज्म को बढ़ोतरी देने का। आप जानते हो द्वीप समूह में, हमारा आइलैंड्स में टूरिज्म जो है मेन सोर्स ऑफ इनकम कहलाता है एंड मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है। तो टूरिज्म इंडस्ट्री के अलावा और कोई इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं है। तो हमारा सरकार जो है, भारत सरकार एज पर अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जो है, टूरिज्म को बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंस दे रहा है टूरिज्म को बढ़ोतरी करने। नॉट ओनली सरकार, नॉट ओनली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर भी इसमें जो है, सारे जो है स्टेक होल्डर जो है भाग लेते हैं। तो इनका सबका जो एक ही उद्देश्य जो है टूरिज्म को कैसे बढ़ोतरी देना एंड राउंड द ईयर जो है टूरिज्म इंडस्ट्री को जो है प्रॉफिट अर्निंग इंडस्ट्री बनाना है। तो ये जो सेलिब्रेशन है, पहला जो वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेशन है, ये क्यों किया जाता है, सेलिब्रेशन करने के क्या जरूरी इन द सेंस, ये जो है लोगों में जागृति लाना, एक अवेयरनेस क्रिएट करना होता है। तो अवेयरनेस क्यों क्रिएट करना है, तो कि उसमें जो टूरिज्म इंडस्ट्री का इम्पैक्ट जो है, उसका जो असर बोलते हैं इम्पैक्ट, ये जो हम बच्चों, तो ये जो इम्पैक्ट जो है आपको सोशियो सोसाइटी में पड़ता है एंड इकोनॉमिक में है एंड कल्चरल एक्टिविटीज में है एंड एनवायरमेंट पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस हद तक ये नेगेटिव है, किस हद तक ये पॉजिटिव, ये समझाने के लिए जो है ये वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो सेलिब्रेशन है इसका जो मेन इंपॉर्टेंस क्या है, रोल क्या है इन द सेंस, ये सेलिब्रेशन तो करते हैं, इसका एम जो है टू प्रमोट टूरिज्म इनोवेशन आइडिया, इनोवेशन आइडिया प्रमोट देना एंड कुछ

टेक्नोलॉजिकल आइडियाज़ प्रोवाइड करना, उस वे से टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए टूरिज्म को कैसा प्रमोट किया जाए, यही है। वाई द वर्ल्ड टूरिज्म डे इज इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट क्यों है, कि उसको हम लोग क्यों इतना महत्व देते हैं। ये जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, स्कूल्स, स्पेशली स्कूल्स में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस में इसको सेलिब्रेट इसीलिए किया जाता है ताकि ये जो बच्चे हैं, आप लोग जो बच्चे हैं, फ्यूचर में टूरिज्म इंडस्ट्री में काम करना और प्रमोट करना आप लोग करने वाले हैं। इसीलिए इसके बारे में, इस इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में जानकारी देना एक सेलिब्रेशन का एक इंपॉर्टेंस होता है। एंड ये टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, नॉट ओनली इट्स लाइक अवेयरनेस क्रिएट करता है, इट इज क्रिएटिंग जॉब्स ऑल्सो। मेन स्ट्रीम जो है अभी टूरिज्म सब्जेक्ट जो है मेन स्ट्रीम आजकल बन गया है। लोग जो है स्कूल बच्चे से लेके कॉलेज बच्चे से सभी जो है टूरिज्म सब्जेक्ट को एक अपना करियर ऑप्शन बनाते हैं। क्यों? इन द सेंस, इन फ्यूचर स्पेशली इन अंडमान में जो है जॉब प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री बोलने से अभी टूरिज्म इंडस्ट्री का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आप जानते हो हर जगह में होटल, स्टार होटल देखते हो। लोगों का लाइफ स्टाइल जो अंडमान में 1990 में था, 1980 में जो था, 2000 में जो था, अभी 2026 में आप जाते हो, टोटली लाइफ स्टाइल हैज बीन चेंज। कैसे चेंज हुआ? लोगों में इतने सारे पैसे, इतना सारे फाइनेंशियल सपोर्ट कैसा मिला कि टूरिज्म इंडस्ट्रीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों को अच्छा एक लाइफ जीने का हेल्प करता है। बच्चे अब समझते होंगे। द नेक्स्ट इज नॉट ओनली टूरिज्म लिवलीहुड एंड जॉब प्रोवाइड करता है, ये एक कल्चरल एक्सचेंज भी देता है। कल्चरल एक्सचेंज बोलने से कि आपका कल्चर आप दूसरा स्टेट में जानते हो, फॉर एग्जाम्पल हिमाचल में जाते हो, केरला में जाते हो, तमिलनाडु में जाते हो, तो उस जगह का कल्चर को आप जानते हो, ड्रेसिंग सेंस के बारे में, उनका रहन सहन के बारे में आप जानते हो, तो एक जानकारी मिलता है, लैंग्वेज सीखने का मौका मिलता है। इसी तरह लोग जो वहां से जब यहाँ आते हैं अंडमान का कल्चर के बारे में, अंडमान आप जानते हो बच्चों मिनी इंडिया भी कहलाता है क्योंकि यहाँ में हर स्टेट का, हर लैंग्वेज का लोग यहाँ पे रहते हैं। इसी तरह यहाँ का कल्चर वहां दिखाना और वहां का कल्चर यहाँ जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट है। आप डिफरेंट स्टेट में जाओगे तो डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख पाओगे, जानकारी भी लेते हो। ये एक टूरिज्म इंडस्ट्री का एक मेन उद्देश्य होता है। हेरिटेज, आप जानते हो बच्चों जो टूरिज्म इंडस्ट्री में आपको मैन मेड अट्रैक्शन होता है, जो लाइक ह्यूमन बींग से बनाया वाला अट्रैक्शन होता है, देन जो नेचुरल अट्रैक्शन होता है। आप जानते हो बच्चे अंडमान किस चीज के लिए जाना जाता है? अंडमान जाना जाता है मैन मेड अट्रैक्शन के लिए नहीं, ओनली नेचुरल अट्रैक्शन में जाना जाता है, क्योंकि हमारे वहां में अट्रैक्शन क्या है, टूरिज्म प्रोडक्ट बोलने से क्या है, अंडमान में बीचेस हैं, ओके, एंड आपका वाटरफॉल्स हैं, तो ये सब नेचुरल बनाया वाला गिफ्ट ही हमारा जो है, सीनिक अट्रैक्शन है, ये सब हमारा चीज है। तो इसको जो है कुछ जो मैन मेड अट्रैक्शन लाइक आप जानते हो सेलोर जेल है, हिस्टोरिकल बंकर्स हैं, तो ये सब जो है आपको कल्चर बाहर से जो आते हैं लोग हैं जानने के लिए एक मौका मिलता है। उसी तरह वहां जब हम लोग जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु जाते हो, टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में आप जानते हो, आगरा जाते हो ताजमहल के बारे में आप जानते हो, दिल्ली जाते हो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के बारे में जानते हो, तो इस तरह का एक नॉलेज एक्सचेंज करने का भी एक टूरिज्म इंडस्ट्री के द्वारा मौका मिलता है। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये टूरिज्म इंडस्ट्री को हम लोग एनकरेज करना चाहिए, लाइक द होस्टर्स जो है, होस्ट इन द सेंस ट्रैवल एजेंट है, यहाँ का टूर ऑपरेटर्स जो है, होटल इंडस्ट्री चलाते हैं, इन लोग जो टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ोतरी इसीलिए करते हैं, उनका अपना फायदा के लिए नहीं, एक टूरिज्म इंडस्ट्री जो है एक लॉन्ग टर्म, दैट मींस टोटल ईयर लॉन्ग सर प्रॉफिट जो है हम लोगों को मिलता रहे, उससे जो है हम लोग अपना लिवलीहुड कर सकें। तो ये आजकल जो है स्कूल्स में एंड कॉलेजेस में टूरिज्म सब्जेक्ट को बहुत ही महत्व मिलता है। आप जानते हो बच्चों शायद स्कूल्स में आजकल 9th, 10th and 11th, 12th स्टैंडर्ड में भी टूरिज्म सब्जेक्ट जो है इंट्रोड्यूस कर लिया गया, दैट इज TT सब्जेक्ट, दैट इज टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। पहला जो है एक पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा चेक करने के लिए कैसा बच्चों में इम्पैक्ट पड़ता है, बच्चे इस सब्जेक्ट को लाइक करते हैं या नहीं करते हैं करके 9th and 10th में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। उसके बाद जो बच्चों को इंटरेस्ट जो देखा गया कि 9th and 10th बच्चे, काफी बच्चे जो है टूरिज्म सब्जेक्ट को ऑप्ट किए ऐसा मेन सब्जेक्ट CBSE बोर्ड में, उसके बाद सरकार देखते हुए उसको 11th and 12th में भी अभी TT सब्जेक्ट जो है इंट्रोड्यूस कर लिया गया। अभी जो है टीचर जो हमारे बच्चे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जब सभी स्कूल्स में यहाँ पे जितना भी साउथ अंडमान है, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में सारा स्कूल्स में जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ये टीटी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर गया है 11th and 12th में टूरिज्म। जो बच्चे 10th पास करके साइंस स्ट्रीम लेते हो या आर्ट्स स्ट्रीम लेते हो, जो भी स्ट्रीम लेते हो उसको आप टूरिज्म सब्जेक्ट एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के द्वारा आप ले सकते हो। उसके बाद स्कूल्स के बाद भी आप अगर आपका करियर जो है, आप सब्जेक्ट को लाइक करते हो, आपका करियर आप टूरिज्म इंडस्ट्री में ही बनाना चाहते हो, आप इतना आपको अच्छा लगा टूरिज्म इंडस्ट्री में, आप जानते हो कि इसमें कमाने का अच्छा सारा बहुत सारा ऑप्शन है, आप अच्छा लिवलीहुड बसा सकते हो, तो आप कॉलेज लेवल में भी आप टूरिज्म सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हो। कॉलेज में अगर देखा जाने से, जिस कॉलेज में मैं काम करता हूँ जैसा असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, उस कॉलेज में आपको BBA टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो है ऑप्ट किया जाता है। उस सब्जेक्ट के लिए आपको डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एनी 11th and 12th इधर कॉमर्स ले सकते हो या कॉमर्स भी हो सकते हो या आप साइंस स्ट्रीम भी ले सकते हो, आप BBA टूरिज्म सब्जेक्ट जो है आप अपना डिग्री कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और ले सकते हो। मिनिमम परसेंटेज हम लोग रखे हैं, दैट इज अबव 74-80% आपका कट ऑफ रहता है हर साल, उसमें आप ले सकते हैं। एंड हमारे सीट भी जो है लिमिटेड रखे हैं, 34 सीट्स खाली लिमिटेड सीट्स रखे हैं ताकि हर बच्चों को जो है चांस मिले। और इसमें

हम इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन के लिए भी हम लोग 4 सीट रिजर्व कर रहे हैं, 30 सीट्स, 17 सीट्स फॉर जनरल, 8 सीट फॉर ओबीसी एंड 2 सीट्स फॉर एसटी, 1 सीट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा के लिए हम लोग रिजर्वेशन भी दिया गया है। आपको जानकारी मैं बोल दूं, 3 साल का कोर्स जो है अभी आपको 4 साल हो गया है बिकॉज ऑफ एनईपी, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अभी 4 साल हो गया है। सारा कोर्स डिग्री कोर्स जो है अभी 4 साल का हो गया, दैट मीन बीबीए ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स या इंग्लिश ऑनर्स करके 4 साल हो गया, आपको 4 साल पढ़ना पड़ेगा। टूरिज्म इंडस्ट्री में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए जो है, लाइक फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम, जैसा फॉर एग्जाम्पल इग्नू होता है, अलकापा यूनिवर्सिटी होता है या दिल्ली यूनिवर्सिटी होता है, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी का जो डिस्टेंस एजुकेशन होता है, तो इन लोग जो है आपको डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम में सेम कोर्स जो है ऑफर करते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में क्या होता है, सेम बीबीए कोर्सेस एक डिफरेंट नाम से बीटीएस करके ऑफर करते हैं, बैचलर ऑफ टूरिज्म स्टडीज बोलते हैं उनको, या बीटीएस करते हैं, या बीटीटीएम बैचलर ऑफ टूरिज्म ट्रैवल मैनेजमेंट करते हैं, या बीएफटीएम करते हैं, या बीएफएचएम करते हैं। तो ये सारे कोर्स डिफरेंट जो है टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट के रिलेटेड कोर्स जो है इग्नू के द्वारा ऑफर किया जाता है। जो बच्चों को रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, आप टूरिज्म सब्जेक्ट ही ऑप्ट करना चाहते हो, अपना करियर उसमें बनाना चाहते हो, या अच्छा लिवलीहुड एक स्टैंडर्ड लाइफ जीना चाहते हो, आप जो है इग्नू में भी कोर्स, ये जो सेम कोर्सेस कर सकते। ये सभी जो है उद्देश्य वर्ल्ड टूरिज्म डे का बच्चों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना, ताकि उनका जो है इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट के ऊपर आए, जो सो दैट लाइफ में जो है उन लोग एक सस्टेनेबल इनकम, एक रेगुलर इनकम उनको मिले। आप अपना स्कूल में भी शायद सेलिब्रेट करते हो, 11th 12th में अगर हो आपको वर्ल्ड टूरिज्म डे, शायद आपका टीचर के द्वारा या प्रिंसिपल के द्वारा सेलिब्रेशन होता होगा। किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, इन द सेंस आप जो है स्टूडेंट्स जो है आप पोस्टर कॉम्पिटिशन फिक्स कर सकते हो टूरिज्म सब्जेक्ट के थीम के ऊपर, जैसे कि हमारा इस साल का थीम है डिजिटल एजेंडा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टूरिज्म, रीडिजाइनिंग टूरिज्म। लोग कितना भी गवर्नमेंट पॉलिसी बना ले, रूल्स बना ले, या जो भी चालान भी करें, इसमें क्या है, हम लोग अपना सोशल रेस्पॉन्सिबल, मॉरल रेस्पॉन्सिबल लेके हम लोग जो है खुद अवेयरनेस जो है क्रिएट करके हम लोगों को भी जागृति करना है, और हम लोग भी करें। आप स्कूल में हो या आपके फ्रेंड्स भी स्कूल में हैं, आप अगर फ्रूटी पे के अगर बाहर नहीं फेंकेंगे, ऑटोमेटिक आपको देखे आपको फ्रेंड भी ऐसी करेगा, या आप कोई टूरिस्ट स्पॉट में पेरेंट्स के साथ गए हो या रिलेटिव के साथ गए हो कि लोग आपको देखे आपको सीखेंगे। सो अदर टाइम फर्स्ट यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू फॉलो, देन यू कैन टीच अदर्स, इज इट नॉट। तो इसके बाद जब मैं कंक्लूड करूंगा, आई होप लाइक आप थोड़ा बहुत जानकारी टूरिज्म के बारे में ले चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम पहले से बोल चुका हूँ कि टूरिज्म पढ़ने से आपको एयरलाइंस में भी जॉब मिल सकता है, एयरपोर्ट हमारा काफी बच्चे यही वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हमारा जो लोकल एयरपोर्ट है उसमें काफी बच्चे हमारे काम कर रहे हैं। एयरलाइंस में आपको जॉब मिलेगा, दैट इज डिफरेंट एयरलाइंस, वेदर इंडिगो हो, आकाशा हो, एयर इंडिया हो, एयर इंडिया एक्सप्रेस हो, आपको जॉब मिलेगा। होटल्स में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, ट्रैवल एजेंसी टूर ऑपरेशन में, क्रूज होता है ना, जब जहाज होते हैं जो लग्जरियस क्रूज बोलते हैं, मैक क्रूज है, आईटीटी मेजेस्टिक है, या नॉटिका जहाज है, या एनडीएसएस जहाज, ये सारा जहाज में हमारा स्टूडेंट्स भी काम कर रहे हैं। ये सारा जो है टूरिज्म पढ़ने से आपको जॉब मिलने का अपॉर्चुनिटीज है। आप सी बच्चे टूरिज्म सब्जेक्ट जो है ना इतने से इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बोलते हैं, ये जो है एक क्लब ऑफ सब्जेक्ट, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट मिला के एक टूरिज्म सब्जेक्ट बनता है। दैट मीन्स हम लोग टूरिज्म सब्जेक्ट में ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, कॉन्स पढ़ते हैं, मार्केटिंग पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, एयरपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, एयरलाइंस के बारे में पढ़ते हैं, एयर होस्टेस के बारे में पढ़ते हैं, सारा सब्जेक्ट मिला के टूरिज्म सब्जेक्ट होता है। तो आप पढ़ने के बाद जो है आप कौन सा सब्जेक्ट में आपका पैशन है, किस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड है, उस सब्जेक्ट को आप ऑप्ट कर सकते हैं फर्दर। एट लास्ट मैं यही बोल के कंक्लूड करूंगा, टूरिज्म सब्जेक्ट जो है आप ये कॉमन मैन को स्टैंडर्ड लाइफ देने का और एक सस्टेनेबल लाइफ जीने का एक मौका जो है टूरिज्म देता है। उस मौका को हम लोग यूज करने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, वी शुड बी प्रमोट, हम लोग जो है एक रेस्पॉन्सिबल इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल टूरिज्म जो है हम लोग प्रमोट करना है। ओके, थैंक यू सो मच ये मौका देने के बच्चों, मैडम को एंड स्टूडियो मैनेजमेंट को थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू सो मच बच्चे।

जी दोस्तों, हमारे देश के इतिहास का एक बहुत ही खास और गौरवशाली दिन। हम याद कर रहे हैं एक ऐसे महानायक को जिनकी उम्र तो छोटी थी, लेकिन उनके विचार, उनका साहस और उनका देश प्रेम इतना बड़ा था कि आज भी पूरी दुनिया उन्हें सलाम करती है। हमारे महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह जी। हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण सा बालक देश की आजादी का परवाना बन गया। तो बच्चों, कान लगाकर सुनिए और हमारे साथ सफर पर चलिए। भगत सिंह जी का बचपन से जुड़ा एक मशहूर किस्सा आप सभी को सुनवाते हैं दोस्तों। जब भगत सिंह बहुत छोटे थे, तब वे अपने पिता के साथ खेतों में गए थे। वहाँ उनके पिताजी बीज बो रहे थे।

भगत सिंह ने पूछा, पिताजी आप जमीन में क्या बो रहे हैं? पिता ने कहा, बेटा मैं बंदूकें बो रहा हूँ ताकि अंग्रेजों से आजादी मिल सके। उस छोटे से बच्चे ने तुरंत पूछा, तो क्या इससे बंदूकें उगेंगी? यह छोटी सी बात दिखाती है कि उनके कोमल मन में देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना कितनी कम उम्र में ही घर कर गई है। जब वे थोड़े बड़े हुए तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके दिल पर गहरा असर डाला। उन्होंने वहां की खून से सनी मिट्टी को एक शीशे में भरकर अपने जेब में रख लिया और कसम खाई कि वे देश को आजाद करवा कर रहेंगे। भगत सिंह सिर्फ एक वीर योद्धा ही नहीं बल्कि वे एक बहुत बड़े विचारक और लेखक भी थे। जेल की कोठरी में भी उनका सबसे अच्छा दोस्त उनकी किताबें रहीं। वे हर समय पढ़ते और नोट्स बनाते थे। वे मानते थे कि किसी भी देश को गुलाम बनाने के लिए सिर्फ बंदूकों की जरूरत नहीं होती बल्कि लोगों के विचार को गुलाम बनाया जाता है। इसीलिए वे युवकों से हमेशा पढ़ने और सोचने की अपील करते थे। आज भी हमारे भीतर जोश भर देता है, इसका मतलब तोड़फोड़ नहीं बल्कि समाज में बदलाव लाना था। एक ऐसा समाज जहां किसी के साथ अन्याय ना हो। वह दिन कोई नहीं भूल सकता जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हंसते हंसते देश के लिए फांसी का फंदा चूम लिया। जब उन्हें फांसी दी जा रही थी तब भी उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था बल्कि भारत माता को आजाद देखने की खुशी थी। आज जब हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं तो उनके पीछे भगत सिंह जैसे अनगिनत वीरों का बलिदान है। उनका संदेश हम सबके लिए यही है कि हम अपने देश से प्यार करें और जिम्मेदार नागरिक बने और अपने समाज की भलाई के लिए हमेशा आगे आए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, शहीद भगत सिंह जी से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए और उनकी शिक्षाओं से हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके विचार को अपने जीवन में उतारेंगे, मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे।

0: में नहीं दोस्तों, भारत की स्वर कोकिला भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर जी। एक छोटी सी लड़की ने अपनी मेहनत और जादुई आवाज से पूरी दुनिया के दिलों पर राज किया और लता दीदी बन गई। लता दीदी के पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी खुद एक जाने माने शास्त्रीय गायक और संगीतकार थे। लता जी ने संगीत के शुरुआती पाठ अपने घर पर ही अपने पिता से सीखे। जब वे बहुत छोटी थी तब उनके घर में संगीत का माहौल हमेशा बना रहता था। लेकिन दोस्तों, हर महान इंसान की तरह लता दीदी के जीवन में भी कड़ा संघर्ष आया। जब वे सिर्फ 13 वर्ष की थी तब उनके पिता का निधन हो गया। घर में सबसे बड़ी होने के कारण पूरे परिवार की जिम्मेदारी लता दीदी के कंधों पर आ गई थी। परिवार चलाने के लिए उन्होंने छोटी उम्र में ही फिल्मों में छोटे मोटे अभिनय करना और गाने गाना शुरू कर दिए।
1: इंडियाज ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर नॉट जस्ट इट्स मॉन्यूमेंट्स, दे आर इट्स पीपल, कल्चर एंड अनटोल्ड स्टोरीज।

0: लो पर राज किया और लता दीदी बन गई। लता दीदी के पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी खुद एक जाने माने शास्त्रीय गायक और संगीतकार थे। लता जी ने संगीत के शुरुआती पाठ अपने घर पर ही अपने पिता से सीखे। जब वे बहुत छोटी थी तब उनके घर में संगीत का माहौल हमेशा बना रहता था। लेकिन दोस्तों, हर महान इंसान की तरह लता दीदी के जीवन में भी कड़ा संघर्ष आया। जब वे सिर्फ 13 वर्ष की थी तब उनके पिता का निधन हो गया। घर में सबसे बड़ी होने के कारण पूरे परिवार की जिम्मेदारी लता दीदी के कंधों पर आ गई थी। परिवार चलाने के लिए उन्होंने छोटी उम्र में ही फिल्मों में छोटे मोटे अभिनय करना और गाने गाना शुरू कर दिए।
1: इंडिया ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर नॉट जस्ट इट्स मॉन्यूमेंट्स, दे आर इट्स पीपल, कल्चर एंड अनटोल्ड स्टोरीज। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थ्रू प्रसार भारती प्राउडली प्रेजेंट्स जेम्स ऑफ इंडिया, अ नेशनल इनिशिएटिव inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1-to-3-minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
0: कभी कभी सुबह सुबह किसी पक्षी की मीठी आवाज सुनी है या बारिश की बूंदों का संगीत महसूस किया है? एक ऐसी शख्सियत के बारे में आप जान रहे हैं जिनकी आवाज खुद संगीत का दूसरा नाम बन गई है। लता दीदी ने अपने 7 दशकों से भी ज्यादा लंबे करियर में 36 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में हजारों गाने गाए। लग जा गले, अजीब दास्ता है से लेकर देशभक्ति के कई सारे ऐसे गाने जो दिल को छू लेते हैं, साथ ही आंखों को नम कर जाते हैं। दोस्तों, लता दीदी की सबसे बड़ी खूबी उनकी सादगी और संगीत के प्रति उनका समर्पण था। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाने से पहले वे हमेशा अपने जूते बाहर उतारती थी, जैसे कोई मंदिर में प्रवेश कर रही हो। वे अपनी कला का बहुत सम्मान करती थी और हमेशा नया सीखने के लिए तैयार रहती थी। लता दीदी का जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हम अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, कड़ी मेहनत करें और कभी हार न माने तो हम अपनी मंजिल पा सकते हैं। वे अनुशासन और विनम्रता की ऐसी मिसाल थी जो हम सबको हमेशा प्रेरणा देती रहेंगी। लता दीदी शारीरिक रूप से भले ही हमसे दूर हो गई, लेकिन उनके गाए हुए गीत हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे। उनकी सुरीली आवाज भारत की पहचान है और हमेशा रहेंगी। तो बच्चों, लता दीदी के जीवन से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि लगन और मेहनत से हर वो मुकाम हासिल किया जा सकता है जो आप सोचते हो। मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, इस सफर में हमने जाना कि घूमना सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि यह दुनिया को जानने और सीखने का सबसे बेहतरीन जरिया है। इसी के साथ आज के बाल जगत कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए।

0: नन्हे मुन्ने बच्चे अपना कार्यक्रम सुन रहे थे बाल जगत।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, इस समय सवेरे के 9:30 हो चुके हैं। अब सुनिए जापान में खेले जा रहे 20वें एशियाई खेलों की दैनिक रिपोर्ट की रिकॉर्डिंग।
4: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
5: Came from 19-year-old Unnati Huda after surviving a 3-game battle against Malaysia's Wong Ling Ching. Unnati stunned world number 6 Putri Kusuma Vardhani 21-19-21-13 to book her place in the quarterfinals, where she faces Japan's Akane Yamaguchi. PV Sindhu also began her individual campaign with a straight games win over Chinese Taipei's Chiu Pin Qian before overcoming Japan's Tomoka Miyazaki 21-9-21-13 in

0: the round of 16 to book a place in the women's singles quarterfinals.
1: कैनोवा में भारत की चुनौती का क्या रहा नतीजा, दर्पण टिकिया की ये रिपोर्ट।
2: शनिवार को भारत के लिए कनू स्प्रिंट की अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में हर्षवर्धन सिंह शेखावत, पार्वती गीता और प्रसन्ना कुमार सत्यप्रकाश की जोड़ी, तो वहीं राजू रावत और नेहा देवी लिचुनबाम की जोड़ी शिरकत कर रही थी। इनमें से कोई भी भारत के लिए पदक नहीं दिला सका।
1: स्क्वॉश में आज भारत के लिए कहानी सिर्फ एक पदक की नहीं रही। एक तरफ अनुभव ने पोडियम छुआ तो दूसरी तरफ नई पीढ़ी ने फाइनल में जगह बनाकर इतिहास के दरवाजे पर दस्तक दी। स्क्वॉश कोर्ट का पूरा रोमांच मेघा के साथ।
0: इंडियन स्क्वॉश एंजॉयड वन ऑफ इट्स बिगेस्ट डेज एट दीज एशियन गेम्स विद टू सिंगल्स फाइनलिस्ट एंड अ मिक्स्ड डबल्स ब्रॉन्ज। द परफॉर्मेंस ऑफ द डे केम फ्रॉम 18 ईयर ओल्ड अनाहत सिंह अप अगेंस्ट होम फेवरेट एंड वर्ल्ड नंबर 6 सतामी वतानबे। अनाहत फाउंड हरसेल्फ टू गेम्स डाउन एंड देन टू मैच points down in the third, but the Indian produced a remarkable turnaround, saving both match points and winning 4 consecutive points to take the third game. From there, the momentum completely shifted. Anahat registered a stunning comeback, winning 9-11, 11-13, 12-10, 11-6, 11-3 to reach the women's singles final. It was also the biggest win of a young career by ranking. Abhay Singh then ensured India would have representation in both singles finals. He beat Pakistan's Mohammad Irfan in straight games 11-3, 12-10, 11-6 to move within one victory of gold. Earlier, Joshna Chinnappa and B. Senthil Kumar had claimed bronze in the mixed doubles after an agonizing semi-final defeat to Hong Kong. The Indians had match points in the deciding game but eventually went down 10-11, 11-2, 10-11. For the veteran Joshna, it is a 6th Asian Games medal and there is history on offer on Sunday. India has never won an Asian Games singles gold in squash. Both Anahat and Abhay now have the opportunity to change that with Olympic qualification also at stake.
1: टेबल टेनिस में आज भारतीय खिलाड़ियों को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पॉइंट दर पॉइंट चली इस जंग में भारत का सफर कहां तक पहुंचा, बता रहे हैं शाहिद आजमी।
3: एशियन गेम्स में आज खेले गए महिला और पुरुष एकल मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों को हार का सामना करना पड़ा। महिला एकल के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में भारत की यशस्विनी घोरपड़े का सामना जापान की मीवा हरिमोटो से हुआ। यशस्विनी ने मुकाबले में अच्छा संघर्ष किया लेकिन जापानी खिलाड़ी ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय खिलाड़ी को 4-1 से शिकस्त दे दी। इस हार के साथ यशस्विनी घोरपड़े का महिला एकल में अभियान समाप्त हो गया है। मीवा हरिमोटो ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष एकल के राउंड ऑफ 32 में भारत के के सामने चीन के लिन शिनडोंग की चुनौती थी। लिन शिनडोंग ने शुरुआत से ही मुकाबले पर पकड़ बनाए रखी और मानुषा को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बना ली। इस हार के साथ मानुषा भी पुरुष एकल स्पर्धा से बाहर हो गए। इस तरह आज खेले गए टेबल टेनिस के दोनों मुकाबलों में भारत को निराशा हाथ लगी। हालांकि टेबल टेनिस में भारत के लिए इस एशियन गेम्स में पदक का खाता खुल चुका है। कल मिश्रित युगल में दिया चितले और मानुषा की भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक जीतकर भारत को टेबल टेनिस में इस बार का पहला और एकमात्र पदक दिलाया था।
1: फेंसिंग में मुकाबले पलक झपकते बदलते हैं, एक टच जीत और हार का फैसला कर सकता है। भारतीय फेंसर्स ने आज किस तरह पेश की अपनी चुनौती, मेघा बता रही है एरिना का हाल।
0: India's campaign in the team fencing events came to an end at the quarterfinal stage. The men's saber team of Karan Singh, Gisho Nidhi, Lakshya Batser and Vishal Thapar began strongly, beating Philippines 45-27 in the round of 16. That set up a much tougher quarterfinal against Asian powerhouse South Korea. India could not repeat their opening round performance and went down 25-45, ending their medal challenge. There was a similar story in the women's foil. Joyce Ashishta, Stalin Raj, Sonia Devi Baikom, Kanu Priya Chawla and Meena Devi Narim registered a convincing 45-24 victory over Indonesia to reach the last eight, but post Japan proved too strong in the quarterfinal, bringing India's campaign to an end.
1: एशियन गेम्स के 7वें दिन यानी आज 22 गोल्ड मेडल दांव पर थे। आइए मेघा से जानते हैं मेडल टैली का लेटेस्ट अपडेट।
0: With 2 gold medals in kabaddi, India have moved up to the 10th in the medal tally, ending the day with 30 medals, 4 gold, 12 silver and 14 bronze. China continue to lead the standings, followed by host Japan in 2nd and South Korea in 3rd.
1: कल का दिन आईची नागोया में भारत के लिए सिर्फ एक और दिन नहीं होगा, क्योंकि सुबह की पहली लहर से लेकर शाम के आखिरी ट्रैक तक भारत की उम्मीदें एक के बाद एक कई मैदानों पर उतरेंगी। सुबह करीब 4 बजे समंदर की लहरों के बीच कमा

0: थी और उसके कुछ देर बाद शुगर शांति बनार से सर्फिंग के विमेंस शॉर्ट बोर्ड में अपनी चुनौती पेश करेंगी। यानी भारत का दिन मैदान से नहीं लहरों से शुरू होगा। इसके साथ ही एथलेटिक्स में प्रियंका गोस्वामी और मंजू रानी महिला मैराथन रेस वॉक के फाइनल में उतरेंगी। तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और तनी पर्थी चिकिता की कंपाउंड टीम मंगोलिया के खिलाफ उतरेगी, जबकि पुरुष टीम का सामना यूएई से होगा। और अगर ये टीमें आगे बढ़ती हैं तो कुछ ही देर के बाद क्वार्टर फाइनल का रास्ता भी खुल सकता है। बैडमिंटन कोर्ट पर त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की महिला डबल्स जोड़ी क्वार्टर फाइनल में मलेशियाई जोड़ी का, जबकि मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा कास्त्रो की जोड़ी चीन की चुनौती का सामना करेगी। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में उन्नति हुडा के सामने जापान की अकाने यामागुची होंगी। शूटिंग रेंज में मनु भाकर, ईशा सिंह और राही सरनोबत 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पदक पर निशाना साधने उतरेंगी। वहीं ट्रैप में कायनन चुनाई, अहवर रिजवी और शपथ भारद्वाज पुरुष वर्ग में, जबकि नीरू, मनीषा कीर और आशिमा अहलावत महिला वर्ग में निशाना लगाएंगी। दोपहर तक एथलेटिक्स ट्रैक भी पूरी तरह भारतीय रंग में नजर आएगा। डिकैथलन में तेजस्विन शंकर और तौफीक नौशाद एक्शन में होंगे। 400 मीटर हर्डल्स में संतोष कुमार तमिलारासन, यहास पलाक्षा, विद्या रामराज और अनु राघवन चुनौती पेश करेंगे। लॉन्ग जंप में नजरें रहेंगे मुरली श्रीशंकर और डेविड सोलोमोन पट्टूराज पर। और फिर आएगा दिन का एक बड़ा पदक सत्र। वेटलिफ्टिंग में हरजिंदर कौर महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में उतरेंगी। कुराश में संगीता भारती, यश कुमार चौहान और विशाल पदक की दौड़ में होंगे। दोपहर बाद स्क्वॉश कोर्ट पर निगाहें टिकेंगी। महिला सिंगल्स में अनाहत सिंह और पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अभय सिंह शानदार प्रदर्शन कर इतिहास बनाने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। बॉक्सिंग रिंग में भी एक्शन होने वाला है। अंकुश 80 किलोग्राम, परवीन 65 किलोग्राम, सचिन 60 किलोग्राम और नरेंद्र 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल में विनिंग पंच जड़ने की कोशिश करेंगे। और फिर शाम ढलते ढलते नागोया का एथलेटिक्स स्टेडियम एक बार फिर भारतीय उम्मीदों का केंद्र होगा। एनसी सोजन और शैली सिंह लॉन्ग जंप के फाइनल में उतरेंगी। सर्वेश कुशारे और आदर्श राम हाई जंप के फाइनल में होंगे। नंदनी कोंगान 100 मीटर हर्डल्स के फाइनल में होंगी। अनिमेश कुजूर 200 मीटर में पदक जीतने का जोर लगाएंगे और 3000 मीटर स्टीपल चेज में पारुल चौधरी और अंकिता पदक के लिए दौड़ेंगी। और इसी बीच हॉकी के मैदान पर भारतीय महिला टीम के सामने होगी सिंगापुर की चुनौती। वॉलीबॉल में पुरुष टीम वियतनाम से भिड़ेगी। फेंसिंग में भवानी देवी और भारतीय महिला सेबर टीम की चुनौती जारी रहेगी। और दिन का अंत होगा एथलेटिक्स में महिला 4x100 मीटर रिले के साथ। एक दिन इतने सारे मैदान और ढेर सारी उम्मीदें। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इस कार्यक्रम के एडिटर थे विशाल कुमार और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शाहनवाज खान। आईजी नागोया से भारत की उम्मीदों और उपलब्धियों का ये सफर यहीं जारी रहेगा। कल फिर मिलेंगे खेल के नए रोमांच और तिरंगे की नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आनंद श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार। एशियन गेम्स 2026 आईजी नागोया।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जापान में खेले जा रहे 20वें एशियाई खेलों की दैनिक रिपोर्ट की रिकॉर्डिंग। सुबह के 9:40 हुए हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसके तहत आज आप सुनने जा रहे हैं अली अहमद हुसैन और साथियों से शहनाई पर बजाई राग तोड़ी।

0: मीडियम वेव 438.6 और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं, अब लीजिए सुनिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश,
2: हेलो फरमाइश,
3: हेलो फरमाइश,
4: हेलो फरमाइश,
5: हेलो फरमाइश।

फिजाओं में घुली है सुबह की ताजगी, हवाओं में बसी है गीतों की रागनी। आपकी पसंद, आपकी फरमाइशें और हमारा साथ, आइए मिलकर बनाएं हेलो फरमाइश कार्यक्रम को खास। दोस्तों, रविवार की प्यारी सी सुबह में स्वीकार करें सोनिया का प्यार भरा नमस्कार। आज फिर से हाजिर हूँ आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश के साथ। इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए नोट कीजिए हमारे टेलीफोन नंबर 2325 40 या 2325 58, एसटीडी कोड है 03192। श्रोताओं, आप हमें कॉल कर सकते हैं अब से लेकर 10:50 तक।

0: दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आज के इस गीतों भरे सुहाने सफर में होंगी कुछ नए दोस्तों से भी बात, शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और बातें करते हैं आज के हमारे पहले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं त्रिपुरा से आशुतोष जगन्नाथ बोल रहा हूँ।
0: जी जी, त्रिपुरा का मौसम कैसा है?
1: अभी तो बढ़िया मौसम है, धूप खिल रहा है, बारिश का मौसम लगभग खत्म होने वाला है।
0: जी जी, तो इस सुहाने से मौसम में कौन सा सुहाना गीत आपने सोच रखा है आज सबको सुनाने के लिए?
1: मैम जी, आज मुझे याद आया 1975 में रिलीज हुआ फिल्म का नाम है आक्रमण।
0: जी।
1: और गाने का बोल है, ये मौसम आया है कितने सालों की बात, किशोरदा और सीता जी ने गाया इस गाने को।
0: जी जी, बहुत ही बेहतरीन पसंद है आपकी।
1: और इस गाने को लिखा है मशहूर लिरिक्स आनंद बख्शी जी ने और मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारीलाल जी ने सुर से साजा इस गाने को।
0: जी जी, बहुत ही बेहतरीन आपकी ये पसंद है और ज्ञान भी आपकी बहुत ही अच्छी है। क्या करते हैं आप?
1: मैम जी, मैं तो बिजनेस करता हूँ। आज संडे है, आज तो दुकान बंद है, घर में हूँ और हेलो फरमाइश प्रयास किया। आपने मेरे को शामिल किया प्रोग्राम में, बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी आपको।
0: जी जी, आप सभी इतने दूर से कॉल करते हैं, इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, इसके लिए आप सभी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आपके सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।
1: मैम जी, मैं आपका इजाजत हो तो मैं दो चार दोस्तों को याद करता हूँ।
0: जी जरूर।
1: विजयपुरम से सुनेंगे सप्तमी दीदी, पूर्णिमा दीदी, मोनिका दीदी। और असम से सुनेंगे प्रेमजीत भैया, अमल विमल बसमसारी, भाईकर मुंडा। और मध्य

0: भगवान सिंह परमार, केसरी सिंह राजपूत, राम बाबू शर्मा और प्रेम सिंह और रमेश प्रजापति और नेटवर्क का सारे श्रोताओं को लेकर।
1: चलिए हम सब मिलकर सुनते हैं ये गीत आपकी पसंद पर।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं रमेश प्रजापति, ग्राम माया, तहसील रहटी, जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ मैं।
0: जी जी रमेश जी, कैसे हैं आप?
1: हम तो स्वस्थ है, मस्त है, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं। और बताइएगा, कौन सा गीत है जो आपने पसंद किया है आज के प्रोग्राम में?
1: आज फिल्म का नाम है बगावत।
0: जी
1: मेरे महबूब तुझे सलाम सलाम सलाम सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम। और कुछ मित्रों को याद कर लूं क्या?
0: जी जरूर याद कर लीजिए अपने मित्रों को।
1: ये पूर्णमा जी है विजयपुरम से, धर्मवीर है दिल्ली से, भगवान सिंह परमार है एमपी से, और माईलाल चंदेल, प्रेम सिंह सिसोदिया और शिवा लोहट है एमपी से, और असम से भाई बिमल भस्माकारी, अमल भस्माकारी, रमेश पात्रे, गोल्डी जी, रेकुविले मेहता, तनुश्री बिटिया है महाराष्ट्र से, अविनाश जी है, राकेश जी है, आशुतोष जी है, संगीता जी है, और पूरन वर्मा जी।
0: जी जी और अपने दोस्तों को भी ज़रूर कहिएगा कि इस कार्यक्रम में ज़रूर फ़ोन करें और अपनी पसंद का गाना ज़रूर हम उनको सुनवाएंगे। और
1: जी
0: आप सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का ये गाना।
1: जी जी धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: गुड मॉर्निंग।
0: वेरी गुड मॉर्निंग
1: जी। जी मैं अनूप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ। मेरा गांव का नाम है राम कृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट है श्री भूमि, आश्रम से तालुकात है ना?
0: जी जी, अनूप जी का कॉल आया है और शेरो शायरी तो होनी ही चाहिए।
1: क्या बात, जब कभी हो जाती है रात बिन आपके, जब कभी हो जाती है रात बिन आपके, तब सितारों से दिल की बात होती है। वक्त जब पूछता है हाल दिल का, तो आपके नाम से शुरुआत होती है ना?
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: और पहले आज तो अव्वल नंबर था, लेकिन क्या हुआ, मैकेनिकल कोई ड्रॉबैक है तो लाइन कट गया था। लेकिन इतना मतलब मेरा भाग्य इतना सुप्रसन्न है, फिर भी मेरा कॉल लग गया है
0: जी,
1: ना?
0: अब कॉल लग गया है तो जल्दी से गाना बता दीजिए सबसे
1: जी,
0: पहले,
1: जी, जी, जी,
0: कहीं लाइन डिस्कनेक्ट ना हो
1: आज
0: जाए।
1: फिल्म, जी जी जी फिल्म का नाम है प्रेम गीत और गाने का बोले

0: से होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ये गाने डेडिकेट कर रहा हूँ पहले हमारे बहुत अच्छे आरजे है सोनिया जी के लिए, अविनाश जी और है प्रेम जी चक्रवर्ती जी है, और बसंती लाल सूर्यवंशी जी, अमर सिंह साहू जी, कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार जी, लोकेंद्र वर्मा जी, श्रीकांत जोशी जी और विजय सिंह लखेरा जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और सप्तमी कुंडू जी हमारे सिस्टर और सीता जी के लिए। तो चलिए बातचीत को यही पे विराम देता हूँ, आप अच्छे रहिए
1: और सुनाते हैं आपको आपकी पसंद का ये बेहतरीन गीत।
0: जी जी थैंक यू थैंक यू।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं टोगापुर से राजेश बोल रहा हूँ
0: जी। टोगापुर यानी कि माया बंदर से
1: जी।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। और टोगापुर का मौसम कैसा है?
1: अभी तो कुछ दिन पहले बहुत बारिश हुई थी मैडम, अभी बारिश थोड़ी बहुत कम हुई है, अभी भी बारिश रुक रुक कर आ रही है।
0: अच्छा, तो बहुत दिनों बाद आपका कॉल लगा है। अंडमान से कॉल आने थोड़े कम हो गए हैं, है ना?
1: जी,
0: तो बताइए, आज आपकी पसंद का वो गाना कौन सा रहेगा?
1: रंग फिल्म का गाना हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता।
0: जी, बहुत ही प्यारा गीत है ये। और क्या कर रहे थे इस समय?

0: अभी भी बारिश रुक रुक कर आ रही है।
1: अच्छा, तो बहुत दिनों बाद आपका कॉल लगा है। अंडमान से कॉल आने थोड़े कम हो गए हैं, है ना? तो बताइए, आज आपकी पसंद का वो गाना कौन सा रहेगा?
0: रंग फिल्म का गाना हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता।
1: जी, बहुत ही प्यारा गीत है ये। और क्या कर रहे थे इस समय आप?
0: मैं तो मैडम खेती बाड़ी का काम करता हूँ। अभी खेती बाड़ी का काम तो पूरी हो चुकी है, अब घर पे आराम कर रहा हूँ।
1: जी, तो चलिए, हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार।
1: ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: धन्यवाद दीदी। और कार्यक्रम आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी लग रही है दीदी, बहुत अच्छी प्रस्तुति कर रही हैं आप।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपका कॉल भी लग चुका है, बताइएगा कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप।
1: दीदी फिल्म का नाम है जमाना दीवाना, और गाने के बोले तो इससे पूछूं एक सवाल अलका याग्निक जी और विनोद राठौड़ जी की आवाज में, कुछ दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे दीदी।
0: जी जी जरूर।
1: पहले पहले तो हमारी बहन है पूर्णिमा दीदी, सप्तमी विष्णु कुंडू दीदी हैं, और गजराज लोधी जी हैं, स्वाति जी हैं, दीपाली जी हैं, तनुश्री बिटिया हैं, अमल भस्मतारी, विमल भस्मतारी, और रमेश प्रजापति जी, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, केसे सिंह राजपूत जी, रामबाबू शर्मा जी, मांगीलाल चंदेल जी, गंगाधर सावनकर जी, पूरन वर्मा जी, राकेश जी हैं, पूनम दीदी कानपुर से, पेन संगीता देवना जी, आशुतोष देवना जी, अविनाश तेली जी, इन सबके साथ सुनना चाहेंगे दीदी।
0: जी जी।
1: और हेलो फरमाइश एकता रेडियो ग्रुप के सभी साथी हैं दीदी।
0: चलिए, बहुत ही लंबी लिस्ट है आपकी आपके दोस्तों की।
1: जी दीदी, मेरे दोस्त आकाशवाणी परिवार से ही मिले हैं, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त पूरे भारत से मिले हैं दीदी।
0: चलिए, हम भी यही आशा करते हैं कि आगे भी नए नए दोस्त इस कार्यक्रम से जरूर जुड़ेंगे और आपको सुनवा रहे हैं ये गीत आपके पसंद पर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।

0: दोस्तों, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा एक छोटी संतराल के बाद। बने रहिएगा हमारे साथ।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

0: दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र और कार्यक्रम चल रहा है हेलो फरमाइश। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं अगला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार बहन जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मध्य प्रदेश से, जिला गुना से आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ बहन जी।
0: जी मांगीलाल जी, कैसे हैं आप?
1: बस बहन जी, आपकी दुआ और भगवान की कृपा से मैं बढ़िया हूँ, और मैं इस वर्ष से आशा करता हूँ कि आप भी बढ़िया हों।
0: जी जी हम भी अच्छे हैं। और गाना बता दीजिए, कौन सा होगा आज सुनने के लिए?
1: फिल्म का नाम है गूंज उठी सहनाई। गाने के बोल हैं, दिल का खिलौना हाय टूट गया, कोई लुटेरा आके लूट गया।
0: चलिए सुनते हैं।
1: तो कुछ मित्रों को याद कर सकता हूँ,
0: जल्दी से याद कर लीजिए।
1: नरेश प्रजापति जी हैं, गजराज लोधी जी हैं, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, कैलाश राजपूत जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, रामबाबू शर्मा जी हैं, अमर सिंह साहू जी हैं, राकेश जी हैं शिमला से, लोकिन वर्मा जी हैं उज्जैन से, इन सभी को ये सॉन्ग डेडिकेट रहेगा।
0: चलिए सुनते हैं ये गीत आपकी पसंद पर।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्ते। प्रेम
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बच्चों का तहसील नागपुर जिला उज्जैन से। जी
0: उज्जैन से फोन आया है। जी
1: बिल्कुल।
0: जी जी तो जल्दी से गाना बता दीजिए, कौन सा है आपकी पसंद का?
1: फिल्म का नाम है हमको तुमसे प्यार है,
0: हाँ जी
1: और गाने के बोले तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे।
0: जी जरूर सुनवाएंगे ये गाना। और उज्जैन के बारे में कुछ बताइएगा हमारे सुनने वाले श्रोताओं को।
1: जी उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर का मंदिर प्रसिद्ध है,
0: हाँ जी
1: जहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। चित्रा नदी के किनारे मंदिर बना हुआ है और दक्षिण मुखी महाकाल बाबा पर यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, जो सबकी मुरादें पूरी करते हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा ये
1: और हर
0: जानकर।
1: 12 साल में यहाँ पर सिंहस्थ का मेला भी लगता है।
0: अच्छा, तो
1: जी
0: बहुत ही अच्छी
1: और कुछ
0: जानकारी।
1: दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे?
0: अच्छा जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। और जल्दी से याद कर लीजिए अपने दोस्तों को।
1: जी भगवान सिंह परमार, केसे सिंह राजपूत, सुनील झा, रमेश टेलर, लोकेंद्र वर्मा और आशुतोष संगीता जी।
0: चलिए सुनते हैं गीत आपकी पसंद पर।

आपकी फरमाइशों ने इस कार्यक्रम को खास बनाया और आपके पसंदीदा गीतों ने इस सुबह में संगीत के रंग भर दिए। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहे, आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। सुबह के 10:55 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी दिन में 11 बजे सुनिएगा अति विशिष्ट कार्यक्रम, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना।

0: 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
7: अरे कॉलेज की यादें छोड़ यार, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
6: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
7: कहाँ से पता चलेगा?
6: उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
4: आज ही सर्च करूंगा।
6: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
8: RBI कहता है।
9: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
10: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात के सितंबर माह में फिर से एक बार आपको मिलने का अवसर मिल रहा है। मैं देश के सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मन की बात में हम देशवासियों के सकारात्मक प्रयासों को मंच देते हैं, देश की उपलब्धियों की बात करते हैं। भारत की ऐसी ही एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि को एक दिन बाद 10 साल होने जा रहे हैं। ये उपलब्धि है सर्जिकल स्ट्राइक की। 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। LOC के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल

ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। सितंबर के इस महीने में यानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में अनेक निर्दोष लोग मारे गए थे। इसके कुछ सप्ताह बाद ही मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था। साथियों, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, इस साल 9/11 के आतंकी हमले को भी 25 वर्ष हुए हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया था, उनमें अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत के थे। मुझे याद है 2014 में पीएम बनने के बाद जब मैं अमेरिका गया था तो न्यूयॉर्क में मैं इन निर्दोष नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंच गया था, और आज फिर एक बार मैं भारत के करोड़ों नागरिकों की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों देश की एक बहुत बड़ी तस्वीर तैयार हो रही है। इस तस्वीर में आप भी हैं, आपका परिवार भी है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत की जनगणना की। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। इन दिनों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दुर्गम और बर्फीले इलाकों में भी ये काम चल रहा है। वहां से कई प्रेरक अनुभव हमारे सामने आए हैं। उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत चमोली के माणा गांव से हुई। माणा को देश का पहला गांव कहा जाता है। माणा में सबसे पहले 83 साल की पूर्णिमा रावत जी से इसकी शुरुआत हुई। उत्तरकाशी के बगोरी गांव में होमस्टे चलाने वाले हरदेव सिंह राणा जी ने डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज की। साथियों, जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है। साथियों, इसके लिए आपको जनगणना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होता है। ये पोर्टल है se.census.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, अपना स्थान दर्ज कीजिए, अपने परिवार से जुड़ी जानकारी भरिए और उसे सबमिट कर दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। जानकारी सबमिट करने के बाद आपको एक विशेष आईडी मिलेगी। जब गणना कर्मी आपके घर आए तो आप उन्हें ये आईडी बता सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होने के बाद वो जनगणना का हिस्सा बन जाएगी। साथियों, अब तक मोबाइल से 2,60,00,000 से ज्यादा लोग जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर चुके हैं, स्वगणना कर चुके हैं। आपका भी इसमें थोड़ा सा समय खर्च होगा, लेकिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सही जानकारी, आपके परिवार की सही जानकारी देश के भविष्य की सही तस्वीर तैयार करने में मदद करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 27 सितंबर की यह तारीख एक विशेष कारण से और भी विशेष हो गई है। आज एक ऐसे महानुभाव की 100वीं जन्म जयंती है जिन्होंने संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंहल जी की। 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में

उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, जो ऊर्जा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला। जब मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल हो रहा था तब भी मुझे बार बार अशोक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक था। साथियों, अशोक जी के बारे में ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनकी उतनी चर्चा नहीं होती। राम मंदिर आंदोलन के साथ ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव और विषमता के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म एक बेहद समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सिविल सेवा अधिकारी थे। उनके भाई बहनों में भी अधिकांश लोग बड़े बड़े पदों पर रहे। वे खुद भी IIT BHU से ग्रेजुएट थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने समाज और संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यही महान लोगों की पहचान होती है। आज मैं उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके करोड़ों प्रशंसकों की ओर से उन्हें नमन करता हूं, मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत हमने स्वाभिमान के एक महापर्व के साथ की थी। ये पर्व था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। आज से 1000 साल पहले 1026 में मोहम्मद गजनी ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया था। लेकिन जो लोग सोमनाथ को तोड़कर भारत की पहचान मिटाने आए थे, आज उनका कोई वजूद भी नहीं है और सोमनाथ मंदिर पूरी भव्यता के साथ विशाल समुद्र के किनारे भारत को अमरता का आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए हमने पूरे गर्व के साथ इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। साथियों, ये चर्चा में आज मन की बात में फिर से क्यों कर रहा हूं, इसकी भी एक खास वजह है। 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था, उसे तोड़ा गया था। यानी मोढेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। 1025 में इस मंदिर का निर्माण राजा भीमदेव ने कराया था। साथियों, आप उस कालखंड के बारे में सोचिए जब इतना बड़ा आक्रमण हुआ हो, सोमनाथ मंदिर जैसा आस्था का इतना बड़ा केंद्र खंडित किया गया हो और कई जगहों पर भी हमले हुए हो, तो किसी भी समाज या शासन का मनोबल टूट सकता था। लेकिन राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवड़ता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा। साथियों, मोढेरा सूर्य मंदिर पर भी बाद के कालखंड में हमले रुके नहीं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर वास्तुकला के इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया था। लेकिन साथियों, हम भारत के लोग सूर्य की उपासना केवल वास्तु और मंदिरों के जरिए ही नहीं करते। हमारी सूर्य उपासना उसका एक अर्थ ये भी होता है, प्रकाश, ऊर्जा, विज्ञान और निरंतरता की प्रेरणा। इसलिए मोढेरा भी आज न केवल सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है बल्कि गुजरात का ये गांव देश का प्रथम सूर्य ग्राम सोलर विलेज बन चुका है। मोढेरा आज पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है और उसने देश के सामने सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोढेरा में पर्यटकों के लिए कई आकर्षण और सुविधाओं की शुरुआत भी हुई है। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद वहां मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन भी होता है। इसमें भारत के सांस्कृतिक और शास्त्रीय नृत्यों की अद्भुत प्रस्तुति होती है। मैं चाहूंगा आप सब भी एक बार मोढेरा अवश्य जाएं और भारत की इस गौरवशाली विरासत के दर्शन करें। साथियों, अतीत से हमारा जुड़ाव आज भी बहुत जीवंत है। इसके पीछे

उन लोगों का समर्पण और परिश्रम है जो इसे और गहरा बना रहे हैं। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मनप्पारई में ऐसा ही एक अनूठा प्रयास हो रहा है। एक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज से जुड़े ए सेल्वा राजू जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेक्चर के दौरान उन्हें अपने एक स्टूडेंट से कुछ प्राचीन प्रतिमाओं की जानकारी मिली थी। इस विषय पर चर्चा के बाद उन्होंने फील्ड विजिट का प्लान बनाया। इस विजिट के दौरान उन्हें अलग अलग जगहों पर कई प्रतिमाएं मिली और प्राचीन मंदिर मिले। अतीत से जुड़ने का एक रोचक प्रयास है। इस प्रकार हम अपनी विरासत को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। ये हमें अपने इतिहास को करीब से देखने और समझने का अवसर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है। कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया। यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम केवल पेड़ पौधों या जीव जंतु को ही नहीं बचाते, हम उस पूरी जीवन व्यवस्था को मजबूत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कुछ प्रयास इस भावना को बहुत सुंदर तरीके से सामने ला रहे हैं। साथियों, असम में सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक समय था जब यहाँ हाथियों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगल की जमीन पर इंसानी दखल बढ़ता गया, जिसे हाथियों ने इस इलाके से दूरी बना ली। 3 साल पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और अब इसके अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। हाथी यहाँ फिर लौट आए हैं। जिस इलाके में बरसों से उनकी चहल पहल नहीं थी, आज वहां फिर हाथियों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। साथियों, असम में ही एक और सुंदर प्रयास हुआ है। ये प्रयास एक बहुत छोटे से जीव पिग्मी हॉक को बचाने का है। एक समय इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था। तब केवल 6 पिग्मी हॉक के साथ एक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्हें फिर जंगलों में बसाया गया, उनके रहने के लिए ग्रासलैंड्स को भी संवारा गया। आज इस प्रोग्राम की वजह से पिग्मी हॉक की संख्या 190 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ उसे सहेजने तक सीमित नहीं है। कई बार हम प्रकृति को संभालते हैं तो वही प्रकृति हमारे जीवन का सहारा बन जाती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ महिलाएं इसी रिश्ते की प्रेरक मिसाल पेश कर रही हैं। जारखाली की ये महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं

जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। पति को खोने के बाद उन्हें सुंदरबन से ही आजीविका का सहारा मिला। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है। साथियों, हम पर्यावरण को सहेजें, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करें और उसकी विविधता को सुरक्षित रखें। हमारा हर ऐसा प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध, ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल है। एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माई भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं। यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, लाल किले से मैंने इस बार स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे, इसके लिए गांवों और कस्बों तक पहुंचकर स्पोर्टिंग टैलेंट को खोजना जरूरी है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उनका एक ही पैशन होता है, टैलेंट को खोजना और उन्हें तराशना। हमारे पंजाब में यही काम राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके नाम में सीनियर भी जुड़ा हुआ है। वे 1980 के ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 1982 के वर्ल्ड कप में छाए रहे थे। 2001 में भारत ने पहली बार मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। वहीं 2003 में देश ने सीनियर एशिया कप टाइटल पर कब्जा किया था। इन दोनों ही टूर्नामेंट में वे कोच की भूमिका में थे। अब वे राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी के जरिए अपने पैशन को आगे ले जा रहे हैं। उनके प्रयासों से गांवों में नई हॉकी एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही है। राजेंद्र जी का फोकस एकदम क्लियर है, ऐसे गांवों में बच्चों की पहचान करना जहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधाएं कम है। ऐसे प्रयासों से कई खिलाड़ी भारत के जूनियर और सीनियर लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी के इस समर्पण की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मेरे प्यारे देशवासियों, आंवला हम सभी के लिए बहुत जाना पहचाना है।

ज्यादातर घरों में इससे बने अचार और मुरब्बे का प्रयोग होता है। बहुत से लोग आंवले का जूस पसंद करते हैं और सर्दियों में च्यवनप्राश हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो पीढ़ियों से आंवले के गुणों के बारे में बताते आए हैं। साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं। आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है। ऐसा ही एक समूह है देवगढ़ कमासी गांव का सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप। इससे जुड़ी महिलाएं आंवले से कैंडी मुरब्बा और जूस बना रही हैं। ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह एक गांव में विंध्यवासिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इस ग्रुप की महिलाएं आंवले का अचार डाइजेस्टिव पाउडर ऐसी कई चीजें तैयार कर रही हैं। इन महिलाओं को प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी मिली, लोन की सुविधा मिली, स्थानीय व्यापार मेले से जुड़ने का अवसर भी मिला और देखते ही देखते उनकी आय काफी बढ़ गई। साथियों, हमारे देश के हर क्षेत्र में ऐसी कोई न कोई विशेषता जरूर है। कहीं कोई खास फल है, कहीं कोई पारंपरिक कला है, तो कहीं कोई अनोखा हुनर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाने का अभियान है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गांव और छोटे शहरों की ये पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित ना रहे, वे देश और दूसरे हिस्सों तक पहुंचे और दुनिया के बाजारों तक भी पहुंचे। इससे वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बल मिलता है। ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी प्रेरणा देता है। आने वाले त्योहारों में भी हमें वोकल फॉर लोकल वाले मंत्र को तो कभी भी भूलना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सितंबर का ये महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक कार्य के लिए एक साथ आती हैं। कुपोषण से मुकाबला करने के लिए इस साल कई सराहनीय पहल की गई है। छत्तीसगढ़ ने हर घर मुनगा घर घर मुनगा ये अभियान शुरू किया है। इसमें लोगों को पौष्टिक मुनगा यानी मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात ने भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजनों का कंपटीशन शुरू किया है। इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। वहां टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों के माता पिता जागरूकता अभियान से जुड़ रहे हैं। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है। मुझे आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े उन सभी लोगों पर भी गर्व है जो इस तरह की पहल का हिस्सा रहे हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर से डिजिटली जुड़ गए हैं। करीब 9 करोड़ लाभार्थी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली

माताओं की बेहतर देखभाल संभव हुई है। हमें कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को इसी तरह आगे लेकर जाना है। हमें हमारे समाज को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करना है। साथियों, हम सब ने इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया है। देश भर में पूरे भक्तिभाव से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। यह पावन अवसर पूरे वातावरण को उमंग और उल्लास से भर देता है। साथियों,

0: देश भर में पूरे भक्ति भाव से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। यह पावन अवसर पूरे वातावरण को उमंग और उल्लास से भर देता है। साथियों, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ज्ञान, बुद्धि और शुभ कार्यों के आरंभ के प्रतीक है। उनके प्रति अगाध श्रद्धा सिर्फ भारत में ही नहीं है। जैसे श्रीमान पंथोन थिरखानोन जी, उन्हीं की बात ले लीजिए, वे वैसे तो थाईलैंड के हैं। यहां भगवान श्री गणेश की पूजा फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है, और जब वे 19 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें भगवान श्री गणेश की एक फोटो भेंट की थी। यहीं से उनमें अद्भुत भक्ति जागृत हुई। वे भगवान श्री गणेश से जुड़ी परंपराओं के अध्ययन में 4 दशक से भी अधिक समय बिता चुके हैं। उन्होंने भारत और नेपाल सहित एशिया के कई देशों की यात्रा की है। महाराष्ट्र से उनका विशेष लगाव रहा है। अष्ट विनायक परंपरा के बारे में जानने के बाद वे कई बार यहां आ चुके हैं। उनके प्रयासों से थाईलैंड के श्रद्धालुओं के बीच भी अष्ट विनायक यात्रा लोकप्रिय हो चुकी है। वर्ष 2002 में उन्होंने उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई में गणेश हिमाल म्यूजियम की स्थापना की। आज इसमें 10,000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं हैं। म्यूजियम में उन भक्तों के लिए अष्ट विनायक की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं जो भारत नहीं आ सकते। यहां हर रविवार सुबह करीब 10 बजे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति से जुड़े विशेष अवसरों पर भी अनुष्ठान होते हैं। यह बताता है कि भारत की आस्था, कला और सांस्कृतिक परंपराएं दूसरे देशों में भी कैसे लोकप्रिय हो रही है। मेरी कामना है गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। साथियों, मन की बात के हर एपिसोड के बाद मुझे अनेक विषयों पर आपके संदेश मिलते रहते हैं। आप इसी तरह प्रेरणा से भरी गाथाएं भेजते रहिए। जब आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों की सराहना करते हैं तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मन की बात के माध्यम से उनके बारे में जानकर देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी प्रेरित होते हैं। ये यात्रा इसी तरह आपके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ती रहे। आने वाले त्योहारों को आप अपने परिजनों और दोस्तों के साथ पूरे आनंद और उल्लास से मनाएं। मैं आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
4: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात कार्यक्रमस्य सेप्टेम्बर मासे पुनरेकवारं भवद्भिः सह मेलनस्य अवसरः प्राप्यते। अहं देशस्य सर्वेषां जनानां स्वागतं करोमि। मन की बात इत्यस्मिन् अहं देशवासिभ्यः सकारात्मक प्रयासाय मंचं प्रददामि। देशस्य उपलब्धीनां चर्चां करोमि। भारतस्य तादृशैव एका महत्वपूर्णा ऐतिहासिकी उपलब्धिः एकदिवसानन्तरं 10 वर्षाणि प्राप्स्यन्ति।

മലയാളം പ്രക്ഷേപണം വീണ്ടും നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30. നമസ്കാരം. श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मलयालम कार्यक्रम. आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है. इस समय दोपहर के 1 बजने वाले हैं. अब समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं. कृपया प्रतीक्षा कीजिए.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी। उन्होंने कहा कि अब भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और उसका नतीजा सामने है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया।
1: 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश के लाखों युवाओं ने हाल ही में नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा की है और इसकी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा।

0: उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक काम के लिए एक साथ आते हैं।
1: इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडियाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत भविष्य में युद्ध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपनी क्षमता विकसित कर रहा है ताकि आत्मनिर्भर और भविष्योन्मुखी रक्षा प्रणाली का निर्माण किया जा सके। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश को केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का प्रयास भी कर रहा है। जापान एशियाई खेलों में आज अंकुश ने मुक्केबाजी के 80 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया। तीरंदाजी में भारतीय पुरुष रिकर्व टीम और महिला टीम ने भी सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की ऊंची कूद में श्रीशंकर मुरली और डेविड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज और अनु राघवन ने फाइनल में प्रवेश किया। वहीं पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार भी फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदकों के साथ 11वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi stated that the surgical strike by the Indian Army on the terrorist hideouts in Pakistan demonstrated a new example of India's counter-terrorism policy to the world. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani today, Mr. Modi said that India is set to mark the 10th anniversary of the surgical strike tomorrow. He said the world was astonished to see the manner in which brave Indian soldiers crossed the line of control LOC to take action against terrorism. Prime Minister Modi said the surgical strike was India's decisive response to the long-standing pain the nation had endured due to terrorist attacks. He stated that over the past decade, from the Balakot airstrike to Operation Sindoor, India has repeatedly sent the message that terrorist strikes will be met with a befitting response.
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: On the ongoing census, Mr. Modi said the first phase of this exercise is nearly complete across all states and UTs. Data from over 32 crore families has already been recorded. Mr. Modi emphasized that the census is a national responsibility for all. He added that the facility to self-register census details is very convenient and people can register information about themselves and their families directly from their mobile phones. Along with Hindi, this facility is available in 16 languages. The Prime Minister said the entire process takes about 15 to 20 minutes. Prime Minister Modi noted that India began the year celebrating national pride through the Somnath Swabhiman Parv. He highlighted that despite Mahmud of Ghazni first demolishing the coastal Somnath temple a millennium ago in 1026 AD, it still stands grandly symbolizing India's immortality. Mr. Modi linked this to the Modera Sun Temple in Gujarat, which Ghazni also attacked and destroyed in 1026 AD, just a year after King Bhimdev I built it in 1025 AD. However, King Bhimdev I confronted Ghazni's forces and swiftly rebuilt the Modera Temple. Mr. Modi opined that it is because of this very resilience that the Somnath Temple too was repeatedly rebuilt after multiple destructions, including later devastation.

0: विशु भटनागर की आवाज में अभी आप बशीर बद्र की लिखी ये गजल सुन रहे थे।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया

0: राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: श्रोताओं, इस समय आप सुगम संगीत के कार्यक्रम में विशु भटनागर की आवाज में चंद गजलों का आनंद ले रहे हैं।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 MHz पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम घर संसार।

बहनों, हमेशा उड़ने की कोशिश करें। उड़ नहीं सकते तो भागने की कोशिश करें। भागना संभव ना हो तो चलने की कोशिश करें, और अगर चलना भी संभव ना हो तो रेंगने की कोशिश करें। क्योंकि सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी है आगे बढ़ते रहना, प्रयास करते रहना। नमस्कार बहनों, इस सुविचार के साथ आपकी सखी, आपकी दोस्त रीमा अरोड़ा फिर आपके समक्ष हाजिर है। घर संसार के इस अंक के साथ जहाँ होती हैं कुछ बातें, कुछ मुलाकातें और गीतों की बहार। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत से गीत के साथ।

0: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: बहनों, आज है विश्व पर्यटन दिवस, जिसे हर वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का अहम उद्देश्य दुनिया भर में पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। ये दिन हमें यात्रा

0: के जरिए होने वाले सांस्कृतिक और वैश्विक जुड़ाव के बारे में भी बताता है और साथ ही हमें एक दूसरे के और भी करीब लेकर आता है। बहनों, इस खास दिवस के उपलक्ष्य में हमने द्वीपों में आने वाले कुछ यात्रियों से लघु संवाद किए। आइए मिलकर वो संवाद सुनते हैं।
1: नमस्कार, आपका नाम क्या है?
2: सोनिया डैंग।
1: आप कहाँ से आई हैं?
2: मैं कोलकाता से आई हूँ।
1: और आपको कैसा लग रहा है इन द्वीपों में?
2: इन द्वीपों में आके ना बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली कलकत्ता की इतनी हेक्टिक लाइफ देख के 2 दिन के रिलैक्स करने आई हूँ, पर जैसे उतरी फ्लाइट से ऐसा लगा कि मैं कौन से जगह में आ गई। इतनी शांति, बस थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा था, बाकी बहुत ही सुंदर जगह है। नीट एंड क्लीनलीनेस बहुत अच्छा मेंटेन किया गया है यहाँ पे।
1: अभी तक आप कौन कौन सी जगह पे घूमी है यहाँ पे?
2: मैं यहाँ पे सेल्यूलर जेल, रॉस आइलैंड, माउंट मणिपुर, नॉर्थ बे जैसी अनेक जगहें घूमी हूँ। वाया रोड मैं गई हूँ बम्बू फ्लैट से, मतलब पोर्ट ब्लेयर से लेके नॉर्थ बे वाया रोड गई हूँ। बीच में बम्बू फ्लैट भी आया था। वहाँ यहाँ का नारियल पानी इज ऑसम।
1: और आपको क्या लगता है कि यहाँ के जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो आपको कैसी लगी? उसके लिए क्या स्कोप है?
2: स्पोर्ट्स एक्टिविटी तो अभी बहुत सारी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस भी हुई है। कार्बिन स्कोप जैसी जगह में पहले कुछ नहीं था, तो अब बहुत कुछ होने लग गया है। अब तो म्यूजियम भी सुनने में आया खुल रहा है। और नॉर्थ बे जैसी जगह में पहले छोटी मोटी एक्टिविटी होती थी, अब सबमरीन जैसी नई नई एक्टिविटी इंट्रोड्यूस हो रही हैं। आगे भी होती रहेंगी ताकि और बेहतर हुए और बेहतर टूरिज्म डेवलप हुए। बस थोड़ा सा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बाकी सब इस यहाँ तो इंटैक्ट है, वेरी नाइस। ये मेरा दूसरा विजिट है पोर्ट ब्लेयर के लिए।
1: धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू बताया अपना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: बस थैंक यू, आपने हमें इस लाइक समझा इंटरव्यू देने के लिए।
0: बिल्कुल सही कहा उन्होंने, यहाँ के नारियल पानी का तो स्वाद ही अलग है ना बहनों? और अगर उसके फायदे देखने जाएं तो अनगिनत। चलिए अब एक और पर्यटक के विचार सुनते हैं।
1: सर, आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम चंद्र बाबू है।
1: आप कहाँ से आए हैं?
3: बेंगलुरु से आया हूँ।
1: आपको ये जगह कैसी लगी?
3: ये बहुत बढ़िया है। बेंगलुरु इज नोन फॉर ट्रैफिक, यहाँ देखने से इतना ट्रैफिक नहीं है, हरियाली है, बहुत सुंदर जगह है।
1: और यहाँ का जो टूरिज्म है उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जगह कैसी लगी?
3: बहुत बढ़िया लगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का फ्रीडम फाइटर्स यहाँ सेलुलर जेल में रहा, वो लोग का सेलुलर जेल देखने से वो लोग कितना कष्ट उठाया वो सभी याद करते हैं अभी। उसका बाद हम लोग ये बीचेस है, समुंदर है, बहुत सुंदर जगह है।
1: और यहाँ की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बारे में आपका क्या कहना है?
3: यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का, वाटर स्पोर्ट्स का बहुत स्कोप है कंपेयर टू फॉरिन, थाईलैंड, बैंकॉक, अदर आइलैंड्स आल्सो हैव वेरी ब्यूटीफुल आइलैंड्स। बहुत वाटर स्कीइंग मान लीजिए, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग और ट्रैकिंग का भी बहुत स्कोप है। इधर फॉरेस्ट है, वर्जिन फॉरेस्ट है, इस तरह स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए भी बहुत स्कोप है।
1: इसका मतलब हमारे द्वीप जो है आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से।
3: टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्कोप है, अभी अभी इम्प्रूव हो रहा है और आगे भी इम्प्रूव होगा करके मैं सोचता हूँ।
1: धन्यवाद सर।
3: थैंक यू।
0: बहनों, आने वाला समय पर्यटन के नज़रिए से हमारे द्वीपों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है और इस चीज़ का हमें भी यकीन है ना? तो चलिए यहाँ अपनी बातों को छोटा सा विराम देते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: मैनो, चलिए अब आपको कुछ और पर्यटकों के विचार भी सुनवाते हैं।
1: नमस्कार मैम, आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम मोना हसीजा है।
1: आप कहाँ से आई हैं?
2: मैं गुड़गांव से आई हूँ।
1: और आपको ये द्वीप कैसे लगे?
2: बहुत सुंदर, इतनी ग्रीनरी है कि मैं बता नहीं सकती। ऐसा लगता है कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ गुड़गांव में रह के।
1: और आप अभी तक यहाँ पे कहाँ कहाँ घूमी हैं?
2: मैं नॉर्थ बे, मैं और कहाँ, बाजार, मरीना पार्क, माउंट हैरियट, और मैंने शिवजी भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति देखी जो मुझे इतने मिसमराइज कर गई कि मैं बता नहीं सकती कि मैं अपने आप को खो बैठी उसमें। और सेलुलर जेल मैंने

0: आपको ये जगह कैसी लगी? आपको क्या लगता है कि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे धीरे धीरे डेवलप होगा?
1: हाँ जी, क्योंकि इतनी ग्रीनरी, इतना पॉजिटिव है इस धरती में कि मैं बता नहीं सकती कि कोई भी टूरिस्ट यहाँ आकर अपने आप को भूल जाएगा कि वो कहाँ से आया है। उसे ऐसा लगेगा कि ये पल और ये धरती उसे यहीं पर रुकने के लिए मजबूर कर रही है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हमारे द्वीप के बारे में।
1: हाँ जी, थैंक यू, मुझे आपने अवसर दिया कि मैं इस इंटरव्यू में आ सकी। थैंक यू सो मच।
2: बहनों, सच में हमारे द्वीपों की खूबसूरती देखते ही बनती है।
0: नमस्कार सर, आपका क्या नाम है?
3: मेरा नाम जितिन डेंग है और मैं कोलकाता से आया हूँ।
0: तो आप जरा बताएंगे कि आपको ये द्वीप कैसे लगे?
3: ये अभी तक मैं जहाँ भी गया हूँ सब में बेस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है। बहुत ही अच्छे, यहाँ लाइवली लाइफ है और ग्रीनरी बहुत है। बहुत ही अच्छा सुंदर जगह है ये।
0: और आपने कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करी यहाँ पे समुद्र से जुड़ी?
3: हाँ, यहाँ स्पीड बोट है, मोटर बोट है एंड स्नॉर्कलिंग, ये सब बहुत फैसिलिटीज अवेलेबल है जो इंडिया में कई जगह नहीं है, बट यहाँ अवेलेबल है। बहुत इंजॉय कर सकता है जो भी आए। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये।
0: आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में हम जो है और आगे बढ़ सकते हैं?
3: इस आइलैंड्स का तो स्कोप बहुत ज़्यादा है, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छा स्कोप बन सकता है इसका। एंड होप कि और आगे बढ़ेगा ये सब एक्टिविटीज़, और आने वाले जितने भी टूरिस्ट हैं वो एंजॉय करेंगे।
0: धन्यवाद।
3: थैंक यू वेरी मच।
2: और अब इस खूबसूरत से द्वीपों की बातचीत के बाद अब यहाँ एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं।

0: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture, and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati, proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
1: बहनों चलिए अब थोड़ा सेहत की बात करते हैं, क्योंकि आने वाली 29 तारीख को विश्व हृदय दिवस मनाया जाने वाला है, जिसका मुख्य उद्देश्य है लोगों में दिल की बीमारियों और उसके खतरों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। स्वस्थ आहार, जिसमें फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज और फाइबर भरपूर हो, दिल के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही नियमित व्यायाम और वजन नियंत्रण भी दिल की सेहत को दुरुस्त रखने में मददगार साबित होता है। धूम्रपान और तंबाकू के सेवन हो या फिर तनाव, सभी दिल की सेहत के लिए घातक हैं। इन सभी बातों का ध्यान रखने के साथ साथ स्वस्थ जीवन शैली अपनाना और नियमित जांच करना ही हृदय की बीमारियों से बचने का सही तरीका है। बहनों स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आपका दिल खुद ब खुद आपको धन्यवाद करेगा। तो चलिए इसी के साथ आज का हमारा घर संसार का अंक यहीं समाप्त होता है। तो अब आप अपनी सखी

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर संसार। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। समय 2 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: title with a commanding straight games victory. In women's singles squash, Anahat Singh also bagged silver as she played the final against Malaysian Sivashankari Subramaniam. Earlier, Ankush Fangal assured India of his first boxing medal at the Games after defeating Tajikistan's Nekruz Salimov 5-0 in the men's 80-kilogram quarterfinal today. India is now on the 11th position in the medals tally with a total of 32 medals, including 4 gold, 14 silver and 14 bronze medals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says surgical strike and Operation Sindhu demonstrated new example of India's counter-terrorism policy to the world, sending message that terrorist attacks will be met with befitting response. Prime Minister Modi in his Mann Ki Baat program on Akashvani urges people to work together for Nasha Mukti Yuva. Prime Minister urges people to participate in census and use self-enumeration facility, says first phase of census nearly complete. Union Home Minister Amit Shah and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel flag off country's first LNG powered train at Sabarmati. Anahat Singh red alert for heavy to very heavy rainfall issued over Uttarakhand and West Uttar Pradesh for today. And in Asian Games, Anahat Singh bagged a silver. Abhay Singh wins silver in men's singles squash. Boxer Ankush Fangal assures medal. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashvani se dopahar samachar ke saath main Farhat Naz. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंधु ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। आगे भी आतंकवादी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त युवा अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली एलएनजी चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना के सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
2: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया।
2: 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा

0: आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने इस साल की शुरुआत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ की। श्री मोदी ने बताया कि सोमनाथ मंदिर के साथ गुजरात के मोढ़ेरा में सूर्य मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया गया था।
0: 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ, यानी मोढ़ेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढ़ेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा।
1: श्री मोदी ने लोगों से मोढ़ेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती की चर्चा करते हुए कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
0: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान हाल ही में शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।
0: युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माय भारत के वॉलंटियर शामिल हैं और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है।
0: इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। ये मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह से गणेश उत्सव मनाया गया। थाईलैंड के पंथोन थीरखानोन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान गणेश के लिए अपार श्रद्धा विदेश में भी है। वहां भगवान गणेश की पूजा का फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उन्होंने 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेलवे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं।
2: नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने अनेक प्रकार की नई सुविधाएं रेलवे में लाए, रेलवे को आधुनिक किया और अब JNPT मुंबई से वडोदरा तक पहली लॉन्ग होल डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा हो गया है। देश में माल की आवाजाही के लिए ट्रैक्स कम है, मगर उस वक्त डबल डेकर मालगाड़ी की कल्पना सफल हो जाए तो हमारी वहन क्षमता 2 गुनी हो जाएगी।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत भविष्य के लिए अपनी युद्ध क्षमता विकसित कर रहा है। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश को केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का भी प्रयास कर रहा है।
3: पिछले 12 वर्षों में हमारे डिफेंस सेक्टर की न केवल क्षमता बढ़ी है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर हमारे अप्रोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब हमारा ध्यान वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि आज हम आत्मनिर्भर और फ्यूचर ओरिएंटेड डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में भी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं।
1: थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि देश की रक्षा तैयारियों के लिए उत्पादन में आत्मनिर्भरता काफी नहीं होगी, बल्कि लंबे संघर्ष की स्थिति में अपनी सैन्य क्षमता बनाए रखना और अनुकूलन क्षमता भी महत्वपूर्ण है। एक रक्षा सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि युद्ध का स्वरूप, तकनीक और अवधि तेजी से बदल रही है, जिसके लिए क्षमता विकास और आत्मनिर्भरता भी तेजी से विकसित करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे सरकार का स्टार्टअप अभियान रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहा है और प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों के लिए काम कर रहा है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्टार्टअप इंडिया का आह्वान किया, जिसने एक जीवंत उद्यमिता संस्कृति की नींव रखी और रणनीतिक क्षेत्रों में निजी भागीदारी के लिए नए रास्ते खोले। पिछले दशक में स्टार्टअप्स की संख्या 350 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है, जिससे 25 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। बेंगलुरु को भी इस स्टार्टअप इकोसिस्टम से फायदा पहुंचा है। यहां 17,000 से अधिक स्टार्टअप्स का केंद्र है, जो वैश्विक बाजार के लिए उत्पादों का डिजाइन और इंजीनियरिंग कर रहा है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म या सी कैंप भारत का प्रमुख रिसर्च और इनोवेशन हब है और सबसे बड़े लाइफ साइंसेस इंक्यूबेशन में से एक है। इनएक्सेल के सह संस्थापक और निदेशक नीतीश कुमार जहांगीर आकाशवाणी से बात करते हुए सी कैंप और भारत सरकार से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए बताया है।
5: इनएक्सेल में हमारा जो विजन है इस टू मेक श्योर की जो नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करके कि आप जो पीएचसीज हैं और जो लास्ट माइल हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे हम नवजात शिशु की जो डेथ रेट है उसको रिड्यूस करें, एआई के थ्रू, अदर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कैसे ये गैप को कम से कम करें, मैटरनल मोर्टेलिटी है जो मदर्स की डेथ रेट है और उसको हम कैसे कम करें, आईसीयू में हम और कैसे इम्प्रूवमेंट लाएं। इनएक्सेल को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत सपोर्ट मिला है।
4: स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न एक सहायक इकोसिस्टम बनाने में मदद कर रहे हैं, जिससे स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न देश अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठा सके और एक वैश्विक इनोवेशन हब के रूप में उभर सके। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अब पर्यटन रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और विकास का एक सशक्त आधार भी रहा है। श्री शेखावत ने कहा कि देश की समृद्ध विरासत, संस्कृति और प्राकृतिक विविधता देश के लाखों युवाओं के लिए नए अवसरों का स्रोत बननी चाहिए। एशियाई खेलों में आज अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। दोनों खिलाड़ी अपने अपने फाइनल मुकाबले में मलेशियाई खिलाड़ी से हार गए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। वहीं तीरंदाजी में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने रिकर्व और कंपाउंड दोनों स्पर्धाओं के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की ऊंची कूद में श्रीशंकर मुरली और डेविड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज और अनुराघवन ने फाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार भी फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य सहित 32 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। तिरुवनंतपुरम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने ताजा समाचार मिलने तक 4 ओवर में किसी नुकसान के 38 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। कृषि विभाग आगामी रबी मौसम के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और तैयारियों पर विचार विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में केंद्र और राज्य समन्वय को मजबूत करने और कृषि उत्पादन, उत्पादकता, स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करने पर भी वे विचार विमर्श करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज एक दिन के आधिकारिक दौरे पर केरल पहुंचे। वे कोल्लम के अमृतापुरी में माता अमृता

आनंदमयी के 73वें जन्मदिन समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि माता अमृतानंदमयी का पूरा जीवन मानवता के प्रति प्रेम और सेवा के संदेश से परिपूर्ण रहा है। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के साथ मिलकर नेपाल में बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए माता अमृतानंदमयी मठ की ओर से भारत में नेपाल के राजदूत सुरेंद्र थापा को 2 करोड़ रूपये का चेक सौंपा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में श्री लावरोव ने कहा कि रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमलों का वह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात

0: विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमलों का वह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार जनसेवाओं तथा मछुआरों के लिए कोई चेतावनी नहीं है। कल सुबह तक के मौसम के बारे में अनुमान है कि द्वीपों के एकाध स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी और गरज के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। श्रोताओं, इस समय 2:31 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में 4:00 हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर 4:00 तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 MHz FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे हैं। अपनी

0: Tiga nya me koyers ail ngam Saint James the Great imin yuk nan tahi mane ha ang hit hetin ke ke ingi program. Hoi hang ngat ha angin nga sinta ngamu hik in hurit e hang rongi ta kasata ita fan kan ro ta la harap nga in.
1: श्रोताओं अभी आप निकोबारी कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं।

Hello dear friends, welcome to Lamhe program with me your RJ Chetan. माता पिता और बच्चों का रिश्ता जब पारिवारिक जीवन की बात आती है तो हर कोई ये जानने का प्रयास करता है कि माता पिता और बच्चों के बीच का संबंध कैसे आदर्श बन सकता है। पॉजिटिव सकारात्मक पेरेंटिंग तकनीक बच्चों को अच्छे नैतिक मूल्य और नीति नियम के साथ उनका विकास हो सकता है, इस तरह से काम करती है और हर माता पिता का भी यही सपना रहता है। हालांकि ये उपलब्धि इतनी आसान नहीं है और ये जानना महत्वपूर्ण है कि माता पिता के उनके बच्चों के बीच का संबंध दो तरफा सड़क की तरह है। दूसरे शब्दों में ये वास्तव में एक माता पिता और उनके बच्चों के बीच एक साझेदारी है, जैसे विविध रंगों वाले फूलों से एक बगी

हर माता पिता का भी यही सपना रहता है। हालांकि ये उपलब्धि इतनी आसान नहीं है और यह जानना महत्वपूर्ण है कि माता पिता के उनके बच्चों के बीच का संबंध दो तरफा सड़क की तरह है। दूसरे शब्दों में यह वास्तव में एक माता पिता और उनके बच्चों के बीच एक साझेदारी है। जैसे विविध रंगों वाले फूलों से एक बगीचा सुंदर दिखाई देता है, इसी तरह अगर माता पिता सिखाते हैं कि कैसे एक मालिक की तरह अपने बच्चे के व्यक्तित्व को पहचाने और उसे पोषण देने में सक्षम बने, तो उनका गार्डन सुगंधित हो जाएगा। ये सभी पॉजिटिव पेरेंटिंग की ओर निर्देश करते हैं। जब माता पिता प्रभावी पेरेंटिंग का कौशल विकसित करते हैं, तो वे पीढ़ी अंतराल यानी जेनरेशन गैप को मिटाने के सक्षम होते हैं। जब पेरेंट्स इस बात को समझने लगते हैं किन चीजों में मर्यादा रखी जाए, कहां प्रोत्साहित किया जाए और कहां अंकुश रखा जाए, तो उनके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। इस तरह वे अच्छे माता पिता बन सकते हैं। जब लोग ये नहीं जानते कि एक अच्छे पेरेंट्स कैसे बने, तो दोनों के बीच दूरियां विकसित होती है। सच्ची समझ के साथ युवा वर्ग भी अपने माता पिता के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। आज के युवाओं को संपूर्ण समझ प्रदान करने के उद्देश्य के साथ बाल्य और किशोर अवस्था के दोनों वर्गों अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति कर सकते हैं। इस हेतु से शुद्ध प्रेम और समता के साथ उनका कैसे विकास किया जाए, ये मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। नैतिक मूल्यों, अच्छे शिष्टाचार और पॉजिटिव पेरेंटिंग संबंधित उन्होंने उत्कृष्ट समाधान दिए हैं, जो युवावस्था के दौरान भी काम आते हैं। सभी पेरेंट्स के लिए आज के समय अनुसार गाइडेंस, अपने बच्चों की संभाल कैसे करें, माता पिता और बच्चों का संबंध कैसा होना चाहिए, आज इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि बच्चे और माता पिता के बीच रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं, तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम आरजे चेतन के साथ। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। हेल्थी रिलेशनशिप से बनेंगे बच्चों का हेल्थ। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। बच्चा अच्छे से पढ़ लिख जाए, इसीलिए सबसे अच्छा स्कूल में भेजने की कोशिश करते हैं। वह ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा स्कूल से ज्ञान के साथ साथ अच्छा व्यवहार भी सीखेंगे। तो हाल ही में हुई एक रिसर्च की मानो तो बच्चों का अच्छी तरह से पालन पोषण उसे अच्छे स्कूल में भेजने से ज्यादा जरूरी है। आमतौर पर सभी स्कूल एक जैसे होते हैं और अपने हर छात्र पर बराबर ध्यान देते हैं, लेकिन जिन बच्चों के माता पिता उनका होमवर्क करने में मदद करते हैं, पढ़ाई की अहमियत समझते हैं और बच्चों के सभी स्कूल इवेंट्स अटेंड करते हैं, उनके बच्चे दूसरों बच्चों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। बच्चे और उनके पेरेंट्स के बीच का रिश्ता सबसे अच्छा और जरूरी बंधन है। ये रिश्ता बच्चों की पर्सनैलिटी, उसका व्यवहार और पसंद की नींव डालती है। यही से उसका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का विकास होता है। जीवन में दूसरे लोगों से भी अपना रिश्ता अच्छा बनता है। मुश्किल परिस्थितियों में अपनी भावनाओं पर काबू रखना, बच्चे के मानसिक, भावनात्मक और भाषा का विकास होना, बच्चे का आशावादी और आत्मविश्वास से पूर्ण होना, बेहतर सोशल और एकेडमिक परफॉर्मेंस रहना। आप चाहे कितना भी बिजी हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए समय जरूर निकालें। जैसे जैसे आपके बच्चे की उम्र बढ़े, तो आप अपने पेरेंटिंग स्टाइल को भी बदल दें। बच्चे की उम्र कुछ भी हो, उससे हमेशा प्यार से बात करें और गर्मजोशी दिखाएं। उनको बातों बातों में प्यार से ये समझाएं कि आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं और उन्हें आगे का रास्ता दिखाएं। बच्चा जो कुछ भी कहे, उसे ध्यान से सुने और उसके प्रति हर परिस्थिति में हमदर्दी दिखाएं। कोई भी समस्या हो, उसे हल करने में उसकी मदद करें। जब आप अपने बच्चों के साथ कोई भी समस्या को हल करेंगे, तो वह आपको देखकर सीखेंगे कि किसी भी मुश्किल हालात में कैसे व्यवहार करना चाहिए। अपने बच्चों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर आप उसके करीब आ सकते हैं और उसके जीवन का सबसे अच्छा दोस्त बन सकते हैं।

दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com।

पेरेंट्स और बच्चों के बीच का रिश्ता सबसे जरूरी है और अच्छा बंधन होता है। यह रिश्ता बच्चों के व्यवहार का पसंद और बच्चों की पर्सनैलिटी पर असर डालता है। यही से बच्चों का भावनात्मक स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। माँ बाप और बच्चों के बीच में अगर रिश्ते अच्छे हो तो इसके बहुत फायदे हो सकते हैं। अपने जीवन में दूसरे लोगों के साथ भी एक अच्छा रिश्ता बनाना, बच्चों का भावनात्मक, मानसिक और भाषा का विकास होना, बच्चों का आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना और आशावादी होना, मुश्किल वक्त में और परिस्थिति में अपनी भावनाओं पर काबू रख पाना, बेहतर एकेडमिक और सोशल स्किल्स होना। तो दोस्तों, यह थी बेस्ट पेरेंटिंग के कुछ असर अपने बच्चों पर। होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज वेरी यूजफुल टू ऑल दोस पेरेंट्स। विद दिस वी कंक्लूड टुडेज प्रोग्राम ऑफ लम्हे। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी आरजे चेतन से। तब तक आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाई एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

आवश्यक सूचना: आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगरपालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:40 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ देर बाद यानी 4:45 पर सुनिए कार्यक्रम बहारों की शाम। पुराने फिल्मी गीतों का लुत्फ लीजिए शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम में। बांग्ला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30। संगीत संगीनी कार्यक्रम का आनंद लीजिए संध्या 6 बजे। सेवा संकल्प अभियान के अवसर पर विशेष कार्यक्रम ऑन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आप सुनेंगे 6:30 पर।

तत्पश्चात सुनिए कार्यक्रम देशगान। मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम एवं जन सूचनाएं दी जाएंगी 7:15 पर। दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:20 पर। 7:30 पर युवाणी में होगा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर्स। चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 8:00। रोजगार समाचार सुनिए 8:30 पर। तत्पश्चात होगा कार्यक्रम गौरव गान। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम रेडियोस्कोप और रात 10:00 रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के कार्यक्रम में एस सुप्रदीप का कर्नाटक शैली में बांसुरी वादन प्रसारित किया जाएगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। जबकि रात्रि 10:00 FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे विद भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल हमारी पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5:23 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात होगा कार्यक्रम प्रभाती वंदना। एग्री टिप्स कार्यक्रम में 5:55 पर जानकारी का विषय रहेगा सीढ़ीनुमा खेत के फायदे। जलयानों की यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत कराएंगे सवेरे 6:10 पर। 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम वतन शीर्षक पर केंद्रित होगा। रामचरित मानस गान की 375वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी 6:30 पर। समाचार वार्ता आप सुनेंगे 6:40 पर। वतन के गीत कार्यक्रम सुनिए 6:45 पर। 6:50 पर बताया जाएगा मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण। सवेरे 7:00 सुनिए जन सूचनाएं। 7:15 पर प्राइमरी चैनल पर आप सुनेंगे कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर आप सुन पाएंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर आनंद लीजिए गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर फनकारा होंगी शारदा। 8:40 पर आप सुन पाएंगे जापान में खेले जा रहे 20वें एशियाई खेलों की दैनिक रिपोर्ट की रिकॉर्डिंग। फिल्मी गीतों का लुत्फ लीजिए सुबह 9:00। 9:10 पर आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तत्पश्चात 9:45 पर सुनिए कार्यक्रम फिल्मी गीत। गीत गाता चल कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 10:00। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1381वीं कड़ी आप सुन पाएंगे दिन के 11:00। 11:30 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम में लता मंगेशकर के गाए गीत आप सुन सकेंगे। दोपहर 12:00 तेलुगु कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर अश्विनी कुमार की वार्ता। मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा 12:30। दोपहर 1:10 पर सुनिए समूहगान शिक्षा का कार्यक्रम आओ हिलमिल गाएं। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर पब्लिक स्पीक और रात 10:00 जापान में खेले जा रहे 20वें एशियाई खेलों की दैनिक रिपोर्ट हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। जबकि रात्रि 10:00 आप सुनेंगे FM 100.9 MHz पर विद भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। ये थे हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4:45 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम बहारों की शाम। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं जानम समझा करो फिल्म के इस गीत से, जिसे आवाज दी है जसपिंदर नरूला और साथियों ने।

आदेश श्रीवास्तव के संगीत निर्देशन में तैयार, अब लीजिए सुनिए कुंवारा फिल्म का गीत। आवाजें हैं सोनू निगम, अलका याग्निक और साथियों की, गीत रचना समीर की।

समीर का लिखा एवं नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत था उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में फिल्म से हाँ मैंने भी प्यार किया है फिल्म से। इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम बहारों की शाम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 5 बजे है। अब लीजिए सुनिए तमिल कार्यक्रम।

श्रोताओं, अभी आप तमिल कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है बांग्ला कार्यक्रम।

शुके छोटी रानी छुपी छुपी हारी सरा आनी चटपट पुते दाए छेले मेये दे छायेर गदाय साक्षी भगवान सबार उपरे आछेन जिनि धरा सोनार शिकल बड़ रानी दा।

अभी आप बांग्ला कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के ठीक 6 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत संगिनी। संगीत संगिनी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में अपने पसंदीदा गीत सुनने के लिए आप अपना नाम व पता, फिल्म का नाम, गीत के बोल टाइप करके व्हाट्सएप कीजिए हमें इस नंबर पर 9474234000। नंबर एक बार पुनः नोट करें 9474234000। करते हैं कार्यक्रम का आगाज और लेते हैं प्रोग्राम का पहला व्हाट्सएप मैसेज, जिसे भेजा है डिगलीपुर से प्रीति शर्मा ने। हमारी श्रोता सुनना चाहती हैं खट्टा मीठा फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं के और सुनिधि चौहान की, बोल इरशाद कामिल के, धुन बनाई प्रीतम ने।

अमित मिश्रा के संगीत निर्देशन में तैयार ये गीत था हमारी अधूरी कहानी फिल्म से। स्वर था श्रेया घोषाल का। इस गीत को लिखा कुणाल वर्मा ने। इस गीत को सुनना चाहा था हडबे से संगीता विश्वास और उनके परिवार सदस्यों ने।

हीरो फिल्म का ये गीत था मोहित चौहान और प्रिया पंचल की आवाज़ों में। इस गीत को सुनने के इच्छुक श्रोता थी अंकिता सिंह और स्मृति सिंह कलिकट से। सिंघम रिटर्न्स, आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत अंकित तिवारी, तुलसी कुमार और साथियों की आवाज़ों में। गीतकार हैं संदीप नाथ तथा संगीतकार हैं जीत गांगुली। इस गीत को सुनना चाहा है शहीद द्वीप से प्रतिमा लकरा और सौम्या लकरा ने।

राहुल मिश्रा का लिखा एवं राजू सिंह का संगीत पद किया हुआ ये गीत था हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म से। आवाज़ें थी फरहान सईद और श्रेया घोषाल की। इस गीत को सुनने के इच्छुक श्रोता थे रंगत से सुमित्रा और सुचित्रा। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही संगीत संगीनी कार्यक्रम से चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए सेवा संकल्प अभियान के अवसर पर विशेष कार्यक्रम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट।
1: नमस्कार, सेवा संकल्प अभियान की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में। नारियल हमारे द्वीप समूह के जीवन, संस्कृति और अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों से लेकर तेल, हस्तशिल्प और विभिन्न घरेलू उत्पादों तक किया जाता है। नारियल से जुड़े रोजगार, मूल्य संवर्धन और स्थानीय उद्यमिता की संभावनाओं को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नारियल विकास बोर्ड के विकास अधिकारी रविदास नारायणी। नारायणी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में।
2: नमस्कार।
1: तो रविदास जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे नारियल विकास बोर्ड क्या है और इसमें जो हम बात कर रहे हैं आज एक जिला एक उत्पाद की, वो क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, द्वीप समूह जैसे द्वीपीय क्षेत्र में इस पहल

0: का क्या महत्व होता है?
1: बार नमस्ते। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला का एक उत्पाद। इस योजना का तहत नारियल और नारियल आधारित उत्पाद का कोई प्रमुख जिला में विशेष उत्पाद के रूप में चुना गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निकोबार जिले को नारियल की ODOP माने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पाद घोषित किया गया है। इसके अलावा देश के अन्य प्रमुख नारियल उत्पादक क्षेत्र जैसे आंध्र प्रदेश, केरला में के कुछ क्षेत्र में भी शामिल है। योजना के मुख्य बिंदु, योजना किस लिए लागू किया गया, योजना के मुख्य बिंदु और इसका लाभ क्या है, वैल्यू एडिशन मूल्य समर्थन। जैसे कि आप खाली नारियल बेचते हैं तो नारियल से कुछ अगर हम वैल्यू एडिशन, जैसे नारियल का चिप्स बनाते हैं, नारियल का तेल बनाते हैं, नारियल का दूध बनाते हैं, नारियल का चूरा डेजिकेटेड कोकोनट बा DC पाउडर बोला जाता है, और उसका रस्सी जो कॉयर है वो सबसे महंगा भी होता है, ये सब तैयार करके जब बेचा जाता है तो उसमें मूल्य इसका समर्थन में वैल्यू एडिशन करके इसमें ज़्यादा पैसा किसानों को मिलता है
0: जी।
1: फिर दूसरा हो गया आपका रोजगार।

0: का तेल बनाते हैं, नारियल का दूध बनाते हैं, नारियल का चूरा डेजिकेटेड कोकोनट बट डीसी पाउडर बोला जाता है, और उसका रस्सी जो कॉयर है वो सबसे महंगा भी होता है। ये सब तैयार करके जब बेचा जाता है तो उसमें मूल्य इसका संवर्धन में वैल्यू एडिशन करके इसमें ज़्यादा पैसा किसानों को मिलता है
1: जी।
0: फिर दूसरा हो गया आपका रोजगार। तो ये सब बनाने के लिए तो आपको कारीगर का जरूरत पड़ेगा, आपका श्रमिक का जरूरत पड़ेगा, तो वो सब के लिए आपको रोजगार भी बढ़ावा मिलता है
1: जी।
0: फिर आपको सबसे बड़ी चीज है कि वैश्विक पहचान। वैश्विक पहचान क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड इसको पहचान लाना है कि ये जिला में ये सबसे अच्छा तरह से होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं मूल्य संवर्धन व वैल्यू एडिशन पर। निकोबर द्वीप समूह को जो हमारा अंडमान एंड निकोबर में निकोबर द्वीप समूह को जो नारियल के लिए चुना गया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसका मुख्य कारण है कि हमारा अंडमान निकोबर में निकोबर द्वीप समूह का जो नारियल होता है वो स्वत प्रवत आपका ऑर्गेनिक है, स्वत प्रवत ऑर्गेनिक। उसका कारण है कि यहाँ कोई खाद पानी दिया नहीं जा रहा है, और जो बारिश का चलते इसका कीड़ा प्रबंधन व पेस्ट कंट्रोल के लिए भी कुछ स्प्रे या कुछ नहीं किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो आपका और ऑर्गेनिक का नारियल है। तो ऑर्गेनिक नारियल हमारा देश में सिर्फ अंडमान निकोबर में मिलता है, जिससे अच्छा से अच्छा नारियल का उत्पादन हमारा निकोबर जिला में हो रहा है। तो निकोबर जिला में एक तो और एक परेशानी है हमारा, वहाँ से नारियल का हमारा ट्रांसपोर्टेशन। तो भारत सरकार का जो अंडमान निकोबर में निकोबर को दिया गया ऑर्गेनिक के लिए, तो उसी में उसका वहीं पर ही उसका वैल्यू एडिशन करके हमारा ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमको बहुत सुविधा होगा। तो इसीलिए वैल्यू एडिशन जैसे नारियल का दूध वहाँ निकालिए, नारियल का दूध का साथ साथ आप नारियल का चूरा व डेसिकेटेड कोकोनट वहाँ पर बनाइए, तो हमको लाने के लिए ये सुविधा हो जाएगा। और कॉयर रस्सी, नारियल का छिलका नहीं ला के हमारा जो छिलका को फेंक दिया जाता है कि वेस्ट कर दिया जाता है, उसमें रस्सी भी बनाएंगे। तो ये सब के लिए आपको जिस तरह का श्रमिक व लेबर का यूज करना पड़ेगा आपको, तो उनको यहाँ रोजगार भी आपको मिल रहा है। तो इसीलिए आपको वैल्यू एडिशन बनाने के लिए नारियल का ऑर्गेनिक नारियल से आपको ये जो सामान मिल रहा है इसको बाहर में ले जाने के लिए स्थानीय स्तर पर युवा और महिला के लिए बहुत बड़ा रोजगार का अवसर पैदा करता है ये सब चीज़। इसके बाद आपको आ जाइए वैश्विक पहचान। तो ये जब ऑर्गेनिक नारियल का बात उठता है तो आजकल देश में पूरा ऑर्गेनिक का बात चल रहा है, तो इसमें नारियल का ऑर्गेनिक होना भी बहुत बड़ी बात है। तो निकोबर से जब ये ऑर्गेनिक आपको वैल्यू एडिशन नारियल का दूध डीसी पाउडर और नारियल का तेल ये सब चीज जब ऑर्गेनिक मिलता है तो इसको वैश्विक बाजार माने वर्ल्ड मार्केट में इसका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ा बाजार है हमारा पास। तो ये सब बाजार के लिए हम लोग का कोकोनट बोर्ड इसमें आपको हर तरह का सहायता करता है। जैसे आपको वैल्यू एडिशन के लिए कुछ यहाँ पर कुछ फैक्ट्री बनाना पड़ता है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम देना पड़ेगा, या फॉरेन एक्सपोर्ट के लिए उसका आपका रजिस्ट्रेशन करना, उसमें क्या किस तरह का सुविधा मुहैया करना, ये सब में नारियल विकास बोर्ड भारत सरकार का अधीन जो अंडमान निकोबर में भी हमारा जो ऑफिस है, हम लोग इसमें किसानों को, एंटरप्रेन्योर को और आपका एसएचजी ग्रुप को, महिलाओं को, युवा गोष्ठी को हर तरह से हम ट्रेनिंग भी प्रदान करते हैं और उनका हर तरह का सुविधा देते हैं।
1: तो जैसे भी आपने बताया कि निकोबर जिले को नारियल के लिए चुना गया है, तो थोड़ा बताएं जो इसकी वर्तमान स्थिति है, अभी का जो उत्पादन है वो कैसा चल रहा है, और जो यहाँ के किसान हैं उन्हें इस उत्पादन के लिए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
0: एक तो हमारा अभी का उत्पादन का स्थिति यहाँ थोड़ा कम हुआ है, जैसे कि आपका ऑर्गेनिक में ऑटोमेटिक नारियल का खेती ऑर्गेनिक जब होता है तो ये सब कुछ तो अपना मुद्रा व मट्टी से ही इसको लेना पड़ता है, तो उसी हिसाब से इनको उत्पादन में गिरावट आया है। ऐसे नहीं कि बहुत गिरावट आया है, गिरावट आया है। इसका एक मुख्य कारण है, नारियल का एक अपना एक उम्र होता है, एज होता है नारियल का। जब भी अंडमान में लगा हुआ है नारियल, अंडमान टॉल या अंडमान जॉइंट का जो सब चीज़ लगा हुआ है, यह बहुत सारा नारियल ऐसे ब्रिटिश समय का लगा हुआ है, मतलब इसका उम्र ऑलरेडी 70 से 80 साल हो चुका है।
1: ठीक है।
0: तो उसके लिए नारियल विकास बोर्ड अपना एक नया स्कीम भी चल रहा है, आरआर स्कीम, जिसमें आप पुराना गाछ को उखाड़ दीजिए, उसका जगह पर नया गाछ लगाइए, वृद्धि हो जाएगी।
1: तो नारियल की खेती से जो जुड़े किसानों की जो आय है उसको बढ़ाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

0: या पारंपरिक खेती के साथ जो आधुनिक तकनीकों को अपनाना क्या इसमें मददगार साबित हो सकता है? जैसे अभी आपने एक चीज़ बताई कि जो पुराने पेड़ हैं, काफ़ी पुराने पेड़ लगाए गए हैं, तो उनको हटाकर वापस एक नया पेड़ लगाया जाए। इसके अलावा और कौन क्या उसमें इम्प्लीमेंट किया जा सकता है?
1: जैसे पुराना पेड़ को हटाने का बात हम बोल रहे हैं, पुराना पेड़ को हटा के नया पेड़ लगाने के लिए जो हमको नया पेड़ का आवश्यकता है, तो नया पेड़ को आवश्यकता को भर्ती करने के लिए हमको नर्सरी स्कीम पर आना है, हमको नया नर्सरी बनाना पड़ेगा। जो सबसे अच्छा उत्पादक है, जो अंडमान निकोबार में सबसे अच्छा प्रोडक्शन देता है, जो फलता है, उसी वेराइटी को हम यहाँ पर नर्सरी बनाएंगे। यही नर्सरी से हम पौधा उगाएंगे, तो वो एक और एक रोजगार हो गया आपको। नया पौधा तैयार होगा, नया पौधा का बिक्री होगा, नया पौधा लगाया जाएगा, तो वो भी रोजगार का एक सृजन हो गया। तो हम नर्सरी का स्कीम भी कर रहे हैं। इसका साथ साथ आप जब नर्सरी स्कीम के लिए भी हमको आपको अनुदान या सब्सिडी का पैसा है, उसका बाद जब पौधा ले जाके आप लगाएंगे, क्षेत्र विस्तार योजना एरिया एक्सपेंशन प्रोग्राम है, एरिया एक्सपेंशन प्रोग्राम के लिए भी नारियल विकास बोर्ड 350 रुपया प्रति पौधा के हिसाब से सब्सिडी आपको देता है। तो हर चीज़ में आपको रोजगार के लिए, और जब हम पुराना पौधा को काटेंगे तो उसका जो लकड़ी है उसमें भी हम लोग हैंडीक्राफ्ट्स बना सकते हैं, उसमें भी हम लोग फर्नीचर बना सकते हैं। देश में धीरे धीरे लकड़ी का कमी हो रहा है, जब हमारा पास इतना नारियल का लकड़ी मिल जाएगा, उसमें हम लोग फर्नीचर और अपना तरह तरह का डेली यूज का चीज़ भी बना सकते हैं।
0: बहुत से जो किसान हैं जो आपको सुन रहे हैं, अगर इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, तो उन्हें कहाँ संपर्क करना चाहिए?
1: उन्हें हमारा यहाँ अंडमान एंड निकोबार का एक हमारा यूनिट ऑफिस है, स्टेट ऑफिस है, जो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड आपका साउथ अंडमान स्थित हमारा ये ऑफिस है गुरुद्वारा लेन में। तो ये गुरुद्वारा लेन में अपना ऑफिस, नारियल विकास बोर्ड गुरुद्वारा लेन साउथ अंडमान में, कभी भी वर्किंग आवर्स में 9 से 5:30 बजे तक हमारा ऑफिस खुला रहता है, उसमें आके वो जोगाजोग कर सकते हैं।
0: आज के युवा हैं वो नए व्यवसाय और स्टार्टअप की ओर आकर्षित होते हैं, तो नारियल से जुड़े उत्पादों की पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ऑनलाइन बिक्री और प्रसंस्करण के क्षेत्र में युवा किस तरह अपना व्यवसाय शुरू कर सकते
1: युवा
0: हैं?
1: ऑलरेडी मैं इसमें वो लोग प्रवेश कर चुके हैं, बहुत युवा ऐसे स्थानीय युवा है जो ऑलरेडी हमारा यहाँ मीठाकेरी में कुछ प्रोडक्ट यूनिट बनाए हुए हैं। तो उसमें से वो लोग आइसक्रीम का और डीसी पाउडर, नारियल तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, VCO, वर्जिन कोकोनट ऑयल और नारियल तेल का उत्पादन ऑलरेडी यहाँ हो रहा है। तो मुख्य मुद्दा है मार्केटिंग, तो हमको इसको व्यवसायीकरण कैसे किया जाएगा। जैसे कि आपको अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा समस्या है कि यहाँ से उत्पाद को बाहर भेजना, तो यहाँ दो जगह है, जैसे पश्चिम बंगाल का कलकत्ता और तमिलनाडु का चेन्नई है, ये दो जगह में ही शिप में जब ये जा सकता है। एक तो यहाँ से एक कच्चा नारियल का भी बाहर शुरू हो गया है, जो नया युवा यहाँ से कच्चा नारियल को भी भेजते हैं, लेकिन उसमें एक समस्या होता है, जब कच्चा नारियल यहाँ से चेन्नई भेजा जाता है तो रास्ता में ही उसको 15 से 20% नारियल फूट जाता है, टूट जाने से वहाँ उनको नुकसान होता है। तो उसके लिए हम लोग युवाओं को कुछ ट्रेनिंग देते हैं कि यहाँ पर कोपरा यूनिट, कोपरा मीन से नारियल तेल, नारियल का बात का जो उत्पाद आपको तैयार करना है उसके लिए कोपरा बनाना पड़ेगा। कोपरा बनाने से आपको कोपरा, उसमें डीसी पाउडर, उसमें तेल, वेनीगर और नाटाडी कोको, बहुत तरह का प्रोडक्ट यहाँ हम बना सकते हैं। उसके लिए हम लोग अंडमान सरकार का कृषि विभाग का साथ मिलकर कुछ उद्यम कर रहे हैं। दूसरा है आपका जो युवा और युवती जो भी है, जो पढ़े लिखे हैं, उनका पास रोजगार का कमी है, तो उनको भी हम लोग नारियल पर चढ़ने के लिए एक हम लोग को पाम क्लाइंबिंग मशीन है, तो वो पाम क्लाइंबिंग मशीन का जरिए हम लोग उनका एक ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो जो बेकार युवक युवती बैठे हुए हैं, उनको रोजगार का तलाश है, तो वो लोग अपना रोजगार इसमें कर सकते हैं। जिस
0: तो ये तो आपने युवाओं की बात की, आपने कहा जो युवतियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी इसमें आ सकती हैं। तो नारियल आधारित लघु उद्योगों और स्वयं सहायता समूहों, जो हम SHG ग्रुप की बात करते हैं, उनके माध्यम से महिलाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध कराए जा सकते हैं, और क्या इस क्षेत्र में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की विशेष आवश्यकता है?
1: या विशेष आवश्यकता है, देखिए जिस तरह का हमारा हैंडीक्राफ्ट का एक प्रोग्राम है, तो नारियल से विभिन्न तरह का उत्पाद बनाया जाता है।

0: जैसे आजकल डेली यूज में आदमी धीरे धीरे लोहा, स्टील ये सब को छोड़ते जा रहा है और लकड़ी का ऊपर ध्यान दे रहा है। तो उसमें नारियल से बना हुआ बहुत सारा चीज़ आपको आज डेली यूज में यूज किया जाता है। तो उसमें महिला का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे महिलाएं अपने व्यस्त रहते हैं, अपना घर में रहते हैं, तो अपना गांव का एक छोटा मोटा समूह बना के हम लोग उसमें भी ट्रेनिंग देते हैं। इसका साथ साथ जो हमारा कॉयर बोर्ड है, जो कॉयर बोर्ड है, वो भी महिला को ये कॉयर का संबंधित ट्रेनिंग देते हैं, जो नारियल का छिलका से कॉयर कैसे निकालना है, कॉयर से तरह तरह का मैट बनाना है, जो आपका लोकल जगह में ही बिक्री हो जाएगा।
1: जहाँ उत्पादन की बात होती है वहाँ पर्यावरण को ध्यान में रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो द्वीप समूह पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है, तो नारियल उत्पादन को बढ़ावा देते समय पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और टिकाऊ कृषि को किस प्रकार ध्यान में रखा जाना चाहिए?
0: जैसे नारियल का खेती यहाँ पर बहुल मात्रा में होता है। नारियल का खेती में एक सबसे बड़ी बात है आपका सॉइल कंजर्वेशन। तो हमारा ये जो पहाड़ी इलाका है, ये भगवान का एक अलग तरह का द्वीप है, जहाँ पर समुद्र के अंदर एक पहाड़ है, तो यहाँ पर लैंडस्लाइड का बहुत खतरा भी रहता है। लेकिन जैसे कि नारियल को यहाँ पर खेती किया जाता है, नारियल का जो जड़ होता है वो जस्ट लाइक आपको मच्छर का दानी होता है, आप देखे होंगे, उस तरह का वो बुना हुआ रहता है नीचे माटी में। तो उसमें आपका मृदा संरक्षण बस सॉइल कंजर्वेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। एक दूसरा है नारियल का, जहाँ पर नारियल का पौधा रहेगा वहाँ पर आपको गर्मी बहुत कम होगा। जैसे जनरल जगह में जहाँ भी जो भी टेम्परेचर रहेगा आपको आएगा, तो ये जलवायु में आपको वातावरण और जलवायु संरक्षण में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है नारियल खेती में।
1: अंत में इस विषय पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: संदेश ये देता हूँ कि हम हर किसान भाइयों को और नया उद्योग को ये सब संदेश देते हैं, आप लोग आगे आइए। हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नारियल एक प्रमुख खेती है, जो धीरे धीरे ये खेती का इंटरेस्ट आदमी से कम होते जा रहा है। हमको इसको और वैश्विक पहचान बनाना है। ये सब मेरा सबसे निवेदन है कि आइए, आगे आइए, खेती कीजिए और हमारे साथ जुड़िए।
1: तो एक जिला एक उत्पाद पर रविदास जी, जो आपने इतनी अच्छी जानकारी हमसे साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। श्रोताओं, द्वीप समूह की स्थानीय अर्थव्यवस्था रोजगार और उद्यमिता के लिए महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है। एक जिला एक उत्पाद जैसी पहल के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने, किसानों की आय बढ़ाने और छोटे उद्यमों को प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं। सेवा संकल्प अभियान की आज की श्रृंखला में बस इतना ही, चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सेवा संकल्प अभियान के अवसर पर विशेष कार्यक्रम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 6:45 हुए हैं। गौरवगान कार्यक्रम के तहत आइए सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026

तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजे हैं।

आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो, जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगरपालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है।

रात 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात होगा कार्यक्रम गौरव गान। रात्रि 10:00 FM 100.9 MHz पर आप सुन पाएंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन इस अंतराल के बाद।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: ओके सैलरी। नहीं झुमके
3: ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त युवा अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अंडमान निकोबार में स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से हो रहा डिजिटलीकरण।

0: सांध्य समाचारों के साथ मैं जीनत बीबी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल sec.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने इस साल की शुरुआत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ की। श्री मोदी ने बताया कि सोमनाथ मंदिर के साथ गुजरात के मोढ़ेरा में सूर्य मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया गया।

0: आया था। श्री मोदी ने लोगों से मोढ़ेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती की चर्चा करते हुए कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। श्री मोदी ने कहा कि इन सभी प्रयासों की शुरुआत एक व्यक्ति से होती है और दूसरे लोगों के जुड़ने से आंदोलन बढ़ता जाता है, यही जन भागीदारी का सार है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान हाल ही में शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।
1: युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माय भारत के वॉलंटियर शामिल हैं और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के हर क्षेत्र में कोई न कोई विशेषता जरूर है। कहीं कोई खास फल है तो कहीं कोई पारंपरिक कला और कहीं कोई खास हुनर। श्री मोदी ने अपील की कि हमारे गांव और छोटे शहरों की यह पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित ना रहे और ये उत्पाद दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचे। उन्होंने त्योहारों के दौरान वोकल फॉर लोकल मंत्र को याद रखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार अब आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है SIR और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म X, YouTube, Facebook और Instagram पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से ही आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECINET प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। यह निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने स्पष्ट किया कि ऐसे व्यक्तियों को मतदाता पंजीकरण अधिकारी सुनवाई के लिए नहीं बुलाएंगे। सुनवाई केवल असाधारण परिस्थितियों में ही होगी और ऑनलाइन की जाएगी। पिछले कुछ महीनों में राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी से प्राप्त सुझावों के आधार पर पोर्टल में कई अपडेट किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश सर्वसम्मति से लिया गया था। लिटिल अंडमान के हडबे स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कल अल्ट्रासोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध कराई गई। यह सेवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अंतर्गत अनिम्स की रेडियोलॉजिस्ट एवं वरिष्ठ रेजिडेंट चिकित्सक डॉ. सिमी सुरेंद्रन द्वारा प्रदान की गई। इस पहल का उद्देश्य लिटिल अंडमान के लोगों को समय पर विशेषज्ञ जांच की सुविधा उपलब्ध कराना था। पेट संबंधी शिकायतों, किडनी या लिवर से जुड़ी समस्याओं तथा गर्भावस्था के दौरान प्रसव पूर्व जांच मामलों के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी की गई। मरीजों की सुविधा के लिए मौके पर ही पंजीकरण की व्यवस्था की गई थी। इस सेवा से कुल 63 मरीज लाभान्वित हुए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आज अपनी राष्ट्रीय लॉन्चिंग के 5 वर्ष पूरे कर रहा है। इसका उद्देश्य देश में एक डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, जिससे रोगियों के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड सुरक्षित और निर्बाध रूप से साझा किए जा सके। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस डिजिटल परिवर्तन का शुरुआती दौर से ही हिस्सा रहा है। अगस्त 2020 में शुरू हुए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के पायलट

प्रोजेक्ट के लिए चुने गए 6 केंद्रशासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार भी शामिल था। द्वीपों में सरकारी और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के पंजीकरण, आभा आईडी निर्माण और अस्पतालों में डिजिटल प्रणालियों के उपयोग को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत दक्षिण अंडमान को ABDM मॉडल जिला के रूप में चुना गया है। द्वीपों के अस्पतालों में स्कैन एंड शेयर और आभा आधारित पंजीकरण जैसी सुविधाओं से अब नागरिकों को लंबी कतारों से मुक्ति मिल रही है और पर्ची रहित चिकित्सा सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य इन डिजिटल सुविधाओं को द्वीपों के दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाकर स्वास्थ्य प्रणाली को अधिक कुशल, सुलभ और सशक्त बनाना है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस फेडरेशन द्वारा रांची एसोसिएशन सभागार में राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर INTUC के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल और राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. राजेश गढ़िया के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने द्वीप समूह के कई प्रशासनिक और विभागीय प्रमुखों से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने विभिन्न विभागों के श्रमिकों की समस्याओं को उठाते हुए प्रशासन के समक्ष अपनी प्रमुख मांगें रखी। विभागों के प्रमुखों ने जल्द से जल्द उचित कार्रवाई कर ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया। स्टॉक और परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के कार्य किए जाने के चलते एनिटको के सभी पेट्रोलियम और IMFL इकाइयां 30 सितंबर को दोपहर 1 बजे से बंद रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्ति युवा अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अंडमान निकोबार में स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से हो रहा डिजिटलीकरण। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया, जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7:15 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जन सेवाओं तथा मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कल शाम तक के मौसम संबंधित पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कई भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार MV कैम्बल बे लिटिल अंडमान के लिए मंगलवार 29 तारीख को सुबह 9 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान 29 तारीख को ही रात 9 लिटिल अंडमान से छूटकर श्री विजयपुरम के लिए यात्रा करेगा। MV वंडूर मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल सुबह 7 श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान मंगलवार 29 तारीख को सुबह 7 डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सुबह 6 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल ही दोपहर 12 रंगत से छूटकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप के लिए कल प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से। MV रंगत स्वराज द्वीप के

कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से। एमवी बम्बुका शहीद द्वीप के लिए कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा। ये जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी रानी चंगा स्वराज द्वीप के लिए कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से छूटकर श्री विजयपुरम के लिए यात्रा करेगा। एमवी रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप के लिए कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप के लिए कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान परसों मंगलवार 29 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा।

जन सूचनाएं। गैर कानूनी कृत्यों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहता है। ऐसी किसी भी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने आम जनता से सहयोग की अपील की है। आम जनता द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कार्यों की गुप्त सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है। 112-03192-233-0, 03-1-03-0-33-0-77 और 03-1-02-232-400। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7:20 हुए हैं। अब आरंभ होता है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं साया फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों ने। बोल आनंद बख्शी के, धुन बनाई MM करीम ने।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में तैयार, अब लीजिए सुनिए नरसिम्हा फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं अमित कुमार, अलका याग्निक और साथियों की। गीत रचना जावेद अख्तर की।

अमित कुमार और अलका याग्निक के गाए नरसिम्हा फिल्म के इस गीत के साथ ही दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है युवाणी कार्यक्रम।

युवावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को आपकी रेडियो दोस्त लता राज नांदिनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 27 सितंबर है और आज हम मना रहे हैं विश्व पर्यटन दिवस। दोस्तों, इस दिवस का उद्देश्य पर्यटन के महत्व और उसके सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक योगदान के प्रति लोगों को जागरूक करना है। पर्यटन हमें नए स्थानों, संस्कृतियों, परंपराओं और इतिहास को जानने का अवसर देता है। इससे विभिन्न देशों और समुदायों के बीच आपसी समझ और सद्भाव बढ़ता है। पर्यटन रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ साथ स्थानीय कला, हस्तशिल्प और संस्कृति को भी बढ़ावा देता है। भारत अपनी विविध संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहरों, प्राकृतिक

दोस्तों, इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में हमसे जुड़ने और अपने मनपसंद गाने सुनने के लिए कॉल करें इन नंबरों पर 2325400

0: दोस्तों, इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में हमसे जुड़ने और अपने मनपसंद गाने सुनने के लिए कॉल करें इन नंबरों पर 2325 40 और 2325 58। हमारा STD कोड है 03192। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और जुड़ते हैं हमारे पहले श्रोता से। हेलो म्यूजिक लवर्स।
1: हेलो म्यूजिक लवर, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, मेरी किन से बात हो रही है?
1: जी मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से बोल रहा हूँ, अविनाश सली।
0: जी अविनाश जी, सबसे पहले जानते हैं कैसे हैं आप?
1: जी मैं बहुत अच्छा हूँ और जी। आज श्री विजयपुरम पे कॉल लग गई है, आपसे बात हो रहा है तो और भी बहुत अच्छा लग रहा है।
0: जी जी जी, हमें भी खुशी है कि आप हमसे जुड़े। वैसे जैसे कि आप जानते ही होंगे कि आज हम विश्व पर्यटन दिवस मना रहे हैं, तो अविनाश जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके राज्य या शहर में पर्यटन की कौन कौन सी प्रसिद्ध जगहें हैं?
1: जी जी, त्रिपुरा में देखिए बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर घूमने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जैसे कि 51 शक्तिपीठों में से एक जो त्रिपुरा से टेम्पल्स के नाम से जाने जाते हैं पूरे विश्व में।
0: जी जी,
1: बहुत जी जी, तो बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर आते रहते हैं। और एक पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर 19 करोड़ देव देवी का पत्थर से खुदाई करके मूर्तियाँ हैं, वो भी बहुत ही खूबसूरत जगह है और हमारे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही है वो।
0: अरे वाह, अरे वाह।
1: जी जी, और राजा प्रसाद जो हमारे त्रिपुरा में देखे राजा महाराजा जब रहा करते थे तो वहाँ का राजा प्रसाद भी बहुत ही खूबसूरत सा बना हुआ है, वो भी घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है।
0: जी जी जी जी जी
1: जी जी, ये सब है। और देखिए पर्यटन जब भी मतलब कहीं भी हो तो इससे क्या होता है कि देश विदेश के या फिर दूसरे राज्य के जब आते हैं पर्यटक तो हम सबको भी अच्छा लगता है कि देखिए हमारे त्रिपुरा इतने प्रसिद्ध है कि आते हैं पर्यटक देखने के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल अविनाश जी, तो बहुत ही सही बात कही आपने कि जब हमारे शहर में कोई पर्यटक आते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होती है। तो जी जी जी, तो आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमें बताई और अच्छी अच्छी जगहों से वाकिफ कराया हमें और हमारे श्रोताओं को। और अब वक्त हो चला है कि हम आपसे जानें कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे।
1: जी जी जी, तो आज मुझे गीत सुना दीजिए, मूवी का नाम है रोग, गाने का बोले खूबसूरत है उतना उदित नारायण जी की आवाज में, और कुछ दोस्तों की याद करना चाह रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी जी, अनु कुमार जी हैं, आशुतोष जी हैं, संगीता जी हैं, प्रेमजी चक्रवर्ती जी हैं, राकेश जी हैं, पूरन वर्मा जी हैं, उसका नाथ शर्मा जी हैं, पंचीराम शर्मा जी हैं, रेणुको देवी जी हैं और शिवा लोहर जी हैं और अनुसूर जी हैं और गोल्डी भाई हैं और सबके लिए जितने भी श्रोता सुन रहे हैं भगवान सिंह वर्मा, केसर सिंह, राम बाबू शर्मा और रमेश प्रजापति सबके साथ इस गीत को देखने का मौका मिला।
0: जी जी जी, ठीक है। तो ठीक है अविनाश जी, आप हमसे जुड़े हमें काफी अच्छा लगा और अब हम आपका ये मन चाहा गीत भिजवा रहे हैं त्रिपुरा, सुनिए।
1: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी।

0: हेलो म्यूजिक लवर्स
1: जय माता दी।
0: जी, नमस्कार। मेरी किन से बात हो रही है?
1: मेरा नाम है पूरण वर्मा और मैं आपसे जुड़ गया हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर, गांव का नाम अंशमहल बुगला से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: जी, सबसे पहले जानते हैं कैसे हैं आप?
1: बस मैडम बढ़िया हूँ। और हमारे यहाँ तो आज बारिश भी हो रही है और अंदर चल रहा है मैडम बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ।
0: अच्छा, जी। तो आपसे जानते हैं कि आपके राज्य में कौन कौन सी घूमने की जगहें हैं?
1: जी मैडम हमारे यहाँ काफ़ी घूमने की जगह है। अब जैसे गणेश उत्सव आया था तो उसमें भी काफ़ी हमारे मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है काफ़ी बड़ा, तो वहाँ भी दूर दूर से श्रद्धालु आए थे मैडम
0: जी।
1: जी। और भी बहुत सारी जगह है जैसे रामनाथ बाग आ गया, आमेर किला हो गई,
0: अच्छा,
1: और बहुत सारी ऐसी जगह है जयपुर में घूमने के लिए मैडम।
0: अरे वाह, अरे वाह।
1: आइए
0: जी
1: कभी आप
0: जी
1: स्वागत है मेरा, आए हैं आप।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मौका मिला तो हम ज़रूर आना चाहेंगे इतनी खूबसूरत जगह पर। तो वैसे आपका दिन कैसा बीत रहा है? आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, तो क्या क्या किया आपने? कहीं घूमने गए या फिर घर पे ही थे? अच्छा
1: जी मैडम हम घर पर थे क्योंकि हम खेती बाड़ी करते हैं ना, तो उसमें खेती है तो घर पे रहते हैं अपना, तो घूमना खेती में हो जाता है मैडम।
0: अरे वाह, अरे वाह। जी। तो वैसे खेती आप करते हैं, तो खेतों में आपने कौन सी फसल लगा रखी है अभी?
1: जी मैडम अभी खेतों में बाजरा की फसल लगी हुई है मैडम, और बाजरा की कटाई आज शाम को गई मैडम।
0: अच्छा, चलिए, बहुत खूब, बहुत खूब। तो इस शाम आप हमारे साथ कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? अब हम आपसे जानते हैं।
1: जी मैडम फिल्म का नाम रहेगा अंश,
0: जी
1: और उसमें गाने के बोल है, हम अपनी तरफ से तुम्हें चाहते हैं मगर आपका भरोसा नहीं है।
0: अरे वाह, बहुत ही सुंदर गीत आपने चुना। और आप ये गीत किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: जी मैडम सबसे पहले तो आप हैं
0: जी धन्यवाद।
1: और लता राज मैडम जी है। अच्छा
0: जी मैं लता राज मैम ही हूँ।
1: मैडम
0: जी
1: आपके लिए
0: जी
1: रहेगा मैडम,
0: जी
1: और आपके साथ सर भी है उनका नाम याद नहीं, तो उनके लिए
0: हाँ
1: रहेगा,
0: जी, पूरे आकाशवाणी परिवार के लिए।
1: और मैं दोस्तों
0: जी
1: को अपना डेडिकेट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको सुनाई दिया, और मेरा दोस्त है राकेश है,
0: जी
1: छोटी भाई है अविनाश जी है, दूजे परम से पूर्णिमा मैडम जी है,
0: जी
1: महाराष्ट्र से देपाली जी है, स्वाति जी है, और
0: जी
1: जितने भी आपके कार्यक्रम में चाहने वाले श्रोता
0: जी
1: उन श्रोताओं के लिए रहेगा मैडम ये गाना।
0: जी जी तो हाँ, हमें आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। और अब वक्त हो चला है कि हम आपका ये मनचाहा गीत साथ मिलकर सुने, तो आइए सुनते हैं।
1: जी मैडम थैंक यू मैडम,
0: जी
1: और सी वालों आर भी है मैडम।
0: जी

0: वर्स
1: नमस्कार मैम,
0: जी। नमस्कार, मेरी किन से बात हो रही है?
1: मैं सेवन सिस्टर त्रिपुरा से आशुतोष जगन्नाथ बोल रहा हूँ।
0: जी आशुतोष जी, सबसे पहले जानते हैं कैसे हैं आप?
1: मैं तो बिजनेस करता हूँ मैम जी। आज संडे है, दुकान
0: अच्छा
1: बंद है, घर
0: जी
1: पे
0: जी
1: हूँ
0: अच्छा
1: और प्रोग्राम का मजा ले रहा हूँ।
0: अरे वाह, तो आपके इस मज़े को और भी दुगना करते हैं। और जानते हैं जल्दी से कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: 1978 का एक फिल्म आया है घर,
0: जी
1: और गाने का बोल है आपों की आंखों में कुछ, लता जी और किशोर दा ने गाया है,
0: जी
1: गुलजार जी ने लिखा है और राहुल देवबर्मन जी ने सुर से सजा इस गाने को।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी
1: और आपको सुनाना चाहता हूँ, बहुत
0: जी
1: एंजॉय
0: धन्यवाद
1: करते बच्ची की।
0: जी।
1: और सुनेंगे रेम सिंह भैया, रमेश प्रजापति, भगवान सिंह परमार
0: जी
1: और नेटवर्क के सारे श्रोताओं को लेकर सुनना।
0: जी तो ठीक है, कुछ ही देर में हम आपको सुनवाते हैं आपका ये मन चाहा गीत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।

0: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: हेलो म्यूजिक लवर्स।
2: हेलो हेलो, गुड इवनिंग
1: जी। नमस्कार, मेरी किन से बात हो रही है?
2: जी, आकाशवाणी श्री विजयपुरम के सब दीवाने और दीवानियों को, यानी कि अनूप कुमार भट्टाचार्य का सब प्रेम नमस्कार, सत्यकाल, सलाम अलैकुम।
1: जी आपको भी नमस्कार। सबसे पहले
2: बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपने मेरे को शामिल किया
1: जी।
2: तो बहुत अच्छी अनाउंसर है आप
1: जी। धन्यवाद धन्यवाद।
2: और एक बात कहूँ, जीवन का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा मित्र है, है ना?
1: जी बिल्कुल।
2: जीवन का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा मित्र है जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है।
1: अरे वाह, अरे वाह, बहुत खूब बहुत खूब अनुप जी।
2: जी, जी, जी,
1: जी।
2: क्या बात।
1: चलिए
2: आज इसे प्लेटफॉर्म में एक गाने का लुत्फ उठाना चाहता हूँ।
1: बिल्कुल।
2: गाने का बोल ऐसे है, फिल्म का नाम है लव स्टोरी और गाने का बोल ऐसे, देखा मैंने देखा एक नई सप एक सपना, फूलों के शहर में घर अपना, तू कहा है मैं यहाँ है, तू आई आई आई आई आ जा, ऐसे करके गाने हैं।
1: अरे वाह,
2: और
1: बहुत
2: कुछ
1: अच्छा
2: दोस्तों को
1: जी जी
2: क्या बात। तो कुछ दोस्तों को मैं डेडिकेट कर
1: जी,
2: रहा हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: पहले है आप जैसे दोस्त, पहले है हमारे अविनाश जी है, प्रेमजीत चक्रवर्ती जी है, अमर सिंह साहू जी है
1: जी।
2: और पुरुषोत्तम कुमार जी काश्मीर से, लोकेंद्र वर्मा जी है और है श्रीकांत जोशी जी और विजय सिंह लखेरा जी, अमर सिंह साहू जी, बसंतीलाल सूर्यवंशी जी के लिए और आपके लिए
1: जी। तो बिल्कुल हम देर नहीं करते हैं क्योंकि कार्यक्रम का जो वक्त है समाप्त होने का है, तो चलिए जल्दी से आपको सुनवाते हैं आपका ये मनचाहा गीत।
2: थैंक यू।

दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा यह लाइव फोन इन कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त लता राज नंदिनी को अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं चोरी चोरी फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है मन्ना डे और लता मंगेशकर ने, बोल हसरत जयपुरी के, धुन बनाई शंकर जयकिशन ने।

मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत था धरती कहे पुकार के फिल्म से। आवाजें थी मुकेश और लता मंगेशकर की, संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब कार्यक्रम में सुनते हैं। लता मंगेशकर को फिल्म मुगले आजम।

0: लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में ये गीत था मुगले आजम फिल्म से। शकील बदायूनी के लिखे गीत को संगीत से सजाया था नौशाद ने। श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरी

0: देश को गर्व हो, अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: चित्रपट संगीत कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं हसरत जयपुरी का लिखा एवं शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ गीत उजाला फिल्म से। गायक कलाकार हैं मन्ना डे और लता मंगेशकर।

मुकेश और कंचन की आवाजों में ये गीत था धर्मात्मा फिल्म से। आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है।

रवि के संगीत निर्देशन में तैयार ये गीत था चौदहवीं का चांद फिल्म से। स्वर दिया मोहम्मद रफ़ी ने, इस गीत को लिखा शकील बदायूनी ने। इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। रोजगार समाचार। भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्ति अर्थात डेप्यूटेशन के आधार पर योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती के अंतर्गत ग्रुप ए के 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी और सहायक सलाहकार संचार के 1-1 पद रिक्त है। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी तथा सहायक सलाहकार संचार पदों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर 11 के अनुसार होगा। नियुक्ति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली में की जाएगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, रक्षा बल अथवा अन्य सरकारी विभाग में समकक्ष पद पर नियमित रूप से कार्यरत हो अथवा वेतन स्तर 9 में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी अथवा दूरसंचार में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता तथा सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क में संचालन में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। वहीं सहायक सलाहकार संचार के पद के लिए उपरोक्त विषयों में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता के साथ रक्षा बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, पुलिस, पुलिस वायरलेस एवं संचार अथवा दूरसंचार परियोजनाओं के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव अपेक्षित है। दोनों पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष निर्धारित की गई है। पार्थ अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर उचित माध्यम से अवर सचिव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण A1 सफरदरजंग एनक्लेव नई दिल्ली

11 0029 के पते पर भेज सकते हैं, जिन अभ्यर्थियों ने इसी विज्ञापन के संदर्भ में पूर्व में आवेदन किया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन भेजना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी 1 अगस्त 2026 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देख सकते हैं। रोजगार समाचार समाप्त हुए। गौरवगान कार्यक्रम के तहत आइए सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देख सकते हैं। रोजगार समाचार समाप्त हुए। गौरवगान कार्यक्रम के तहत आइए सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

गौरवगान कार्यक्रम के तहत अभी आप कुछ देशभक्ति गीतों का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। अब कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। कहा, ये आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। उन्होंने महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौते किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के साबरमती से देश की पहली LNG चालित रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए रेलवे का महत्वपूर्ण कदम बताया। एशियाई खेलों में भारत ने विमेंस लॉन्ग जंप, मेंस हाई जंप और स्क्वाश सिंगल्स स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। डेकाथनॉल, विमेंस स्टेपल चेज और 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैम्पेडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की ये कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस

0: की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: श्री मोदी ने लोगों से मेढोरा की गौरवशाली विरासत को देखने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद के संबंध में कहा कि आंवला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। यहां के किसान पीढ़ियों से आंवले की खेती करते आ रहे हैं। विंध्यवासिनी स्व सहायता समूह की महिलाएं आंवले से अचार और पाचक चूर्ण बना रही हैं। इन महिलाओं को प्रसंस्करण और ऋण की सुविधा मिली है। श्री मोदी ने त्योहारों के दौरान वोकल फॉर लोकल मंत्र को याद रखने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में राष्ट्रीय एकता पर बल देते हुए श्री सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। श्री सिंह ने कहा कि भारत को उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ साथ साइबर, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना युद्ध जैसे क्षेत्रों से परे भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान।

0: नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृह मंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। श्री शाह ने कहा कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं।
2: विद्युतीकरण 2010-11 में 75 किलोमीटर होता था और 23-24 में 7188 किलोमीटर विद्युतीकरण, 75 से 7000 किलोमीटर की छलांग, 99.6% रेलवे का विद्युतीकरण हो गया है, 0.3% जो बाकी है वो भी हम पूरा कर लेंगे।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल ने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व, राष्ट्र और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। दिवंगत अशोक सिंघल के जन्म शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि उनका जीवन हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
2: अशोक जी का जीवन कई सारे किशोरों के लिए, युवाओं के लिए एक इंस्टीट्यूशन है। उनके जीवन का सत्व, उनका तप, उनकी सादगी और उनका पुरुषार्थ हर युवा के लिए अनुकरण करने योग्य गुण है और स्वाभाविक रूप से उनका स्मरण हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि तकनीक किसी चिकित्सक के मानवीय स्पर्श और नैतिक जिम्मेदारी का स्थान नहीं ले सकती। श्री राधाकृष्णन आज तिरुवनंतपुरम में SUT अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।
3: As we embrace technology, we must remember that one fundamental truth: technology can assist a doctor, but it cannot replace the human touch of a doctor. A machine can analyze, a robot can assist, but there is no comparison that human touch by a doctor to the patient. An algorithm can identify patterns, but patient still needs a doctor who can listen, understand, reassure and take the responsibility.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं नमो भारत रैपिड रेल की, कि कैसे इस संकल्प को वास्तविकता में बदला गया।
4: नमो भारत भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। यह 82.15 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है। 30,274 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस कॉरिडोर पर ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। यह सेवा इस साल फरवरी से शुरू हुई और इसके कारण दिल्ली से मेरठ के सफर का समय घटकर 1 घंटे से भी कम हो गया है। रैपिड रेल के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नमो भारत ट्रेन आधुनिकता, तेजी और शानदार रफ्तार को दर्शाती है।
5: नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है।
4: नमो भारत में यात्रा करने वाले एक यात्री ने बताया,
6: जो लोग पहले गाड़ी से जाते थे या फिर कार बस से जाते थे, उनको ना कार में जाने की झंझट है कि ट्रैफिक जाम आपको पीक टाइम में मिलता ही मिलता है। किसी भी एम्प्लॉय से आप पूछोगे कि जो काम करता है बाहर, आई डोंट थिंक कि वो डिसएग्री करेगा इस चीज से कि नमो भारत रैपिड रेल की चेंजर है, एक डेवलपमेंट है मेरठ और UP के इतिहास।
4: नमो भारत का अलग अलग परिवहन साधनों के साथ सहज जुड़ाव भारत में तेज इंटरसिटी यात्रा को सुनिश्चित करता है और एकीकृत शहरी तथा क्षेत्रीय

0: परिवहन के लिए एक मिसाल कायम करता है। यह परियोजना प्रधानमंत्री के उस विजन को और गति देती है जिसमें शहरी परिवहन को बदलने और नागरिकों के लिए सुगम, कुशल, आधुनिक और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है। भानु प्रताप के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अब रुख खेल खबरों का। एशियाई खेलों के हलचल के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
2: एशियाई खेलों के आज आठवें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्विन ने डेकोथलॉन में 7,934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता भद्रा ने महिला 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक देश के नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण 16 रजत और 17 कांस्य सहित 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। उधर भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नौना ग्रैमपेंडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी है। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर कांस्य पदक देश को दिलाया। तिरुवनंतपुरम में 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के लिए 296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 34 ओवर में 2 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नौना ग्रैमपेंडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says surgical strikes, Balakot airstrike and Operation Sindoor are bold examples of India's zero tolerance policy towards terrorism. In Mann Ki Baat program, Prime Minister highlights progress of Census 2027, saying data of over 32 crore families recorded so far. Also calls for greater public participation in cleanliness drives ahead of Mahatma Gandhi's birth anniversary. Defence Minister Rajnath Singh asserts India seeks global stability without compromising strategic autonomy. Union Minister Amit Shah flags off country's first LNG-powered train from Sabarmati in Gujarat, marking railway shift towards cleaner energy. At Asian Games, India clinched silver medals in women's long jump, men's high jump and both squash singles, bags bronze in decathlon, women's steeplechase and 200-meter events, and India retained Nona Gaprina Dashavili trophy at Chess Olympiad in Uzbekistan, wins silver in open section and bronze in the women's event. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said 2016 surgical strikes, 2019 Balakot airstrike and Operation Sindoor in 2025 are bold examples of India's zero-tolerance policy towards terrorism. The Prime Minister was addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani today. He said the surgical strikes carried out by the Indian Army on terrorist hideouts in Pakistan in 2016 demonstrated to the world a new approach to India's counter-terrorism policy. Mr. Modi said India will mark

0: the 10th anniversary of the cross-border surgical strike tomorrow.
1: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी. सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था. बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा. अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है.
0: Speaking about Census 2027, Mr. Modi said the first phase of the ongoing exercise is nearing completion across all states and union territories. He said data from more than 32 crore families has already been recorded so far. He urged people to participate in the drive and use self-enumeration facility.
1: देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है. 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है. जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है. जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है. मोबाइल से ही जानकारी दर्ज करा सकते हैं. ये सुविधा 16 भाषाओं में उपलब्ध है.
0: Mr. Modi also called for greater public participation in cleanliness drives ahead of the birth anniversary of Father of the Nation Mahatma Gandhi on the 2nd of October. He cited examples of cleanliness initiatives from across the country.
1: Kuch hi dino baad 2 October hai. Pujya Bapu ki jayanti ka din. Bapu ne hame jeevan ke bahut se mantra diye hain. Swachhata bhi unme se ek hai. Haal ke dino mein maine kahin Madhya Pradesh mein kuch naujawan nadi ki safai ka kaam kar rahe hain. Unke chote se prayas mein pura samaj jud raha hai. Aise hi Andhra Pradesh mein yuva purani bavdiyon aur kuon ki safai kar rahe hain. Isse hamari purani dharoharon use phir se sanwarne ka kaam ho raha hai. Swachhata se seva kar rahe hain.
0: Prime Minister Modi said millions of young people have pledged to stay away from drugs under the Nasha Mukt Yuva Abhiyan. He called for collective efforts to build a drug-free youth while announcing health checkups and meditation camps as part of 100-week campaign. Speaking about One District, One Product initiative, Prime Minister Modi said it is creating new opportunities for amla growers and entrepreneurs at Pratapgarh in Uttar Pradesh, with around 100 processing units now operational and women's self-help groups playing an important role. He said the initiative aims to take local products to national and global markets and urge people to promote the vocal for local message during the upcoming festive season. Defence Minister Rajnath Singh has said India seeks global stability but not at the cost of its strategic autonomy. Mr. Singh was addressing a defence conclave in New Delhi today. He said India does not seek to occupy the territory of any country but will take all necessary measures to protect its security and strategic autonomy if threatened. He said as long as a neighbouring country continues to support terrorism, India is entitled to take all necessary measures against it.
2: भारत शांति चाहता है.
3: इंडिया वांट्स पीस बट इट विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट्स सिक्योरिटी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. इंडिया बिलीव्स इन डायलॉग बट इफ एनी कंट्री प्रमोट्स टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया देयर इज नो स्कोप फॉर डायलॉग विद दैट कंट्री. कंट्रीज दैट यूज टेररिज्म एज अ टूल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड प्रोवाइड शेल्टर एंड सपोर्ट टू टेररिस्ट्स मस्ट बी सेंट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट टेररिज्म कैन नेवर बी अ स्ट्रेटेजिक एसेट फॉर एनीवन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस.
2: एसेट किसी भी सूरत में नहीं होता.
0: This is Akashwani giving you the news.
4: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
0: Welcome back to the news at 9. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah flagged off the country's first LNG-powered train from Sabarmati Station in Gujarat today, marking railway's shift towards cleaner energy. The train uses a dual-fuel system powered by diesel and liquefied natural gas. The initiative is being seen as a step towards greener rail transport and India's net-zero carbon goals. Mr. Shah also launched a series of railway development projects worth more than 1,500 crore rupees. Addressing the gathering on the occasion, Mr. Shah said, Indian Railways has undergone major transformation over the past 12 years.

0: ये परीक्षाएं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की हैं और दोनों में रैंक प्राप्त की है। आपकी संगीत प्रतिभा और संभावनाओं सेंटर फॉर कल्चरल तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई प्रतिष्ठित छात्रवृत्तियों के माध्यम से भी मान्यता मिली है। आप आकाशवाणी बेंगलुरु के ए ग्रेड कलाकार हैं। आपकी कला प्रस्तुति के माध्यम से आपने विविध श्रोताओं तक शास्त्रीय संगीत पहुंचाने तथा उसके प्रचार प्रसार दिया है। आपकी कला यात्रा भारत तक ही सीमित नहीं है, आपने अपने पिता के साथ विदेशों की संगीत यात्राओं में भाग लिया है, जहां आपने बांसुरी की युगल प्रस्तुति दी। प्रसारण और डिजिटल माध्यमों में भी सुप्रदीप ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू फ्लूट रिसाइटल बाय यस सुप्रदीप। यस सुप्रदीप इज अ टैलेंटेड एंड एकम्प्लिश्ड फ्लूटिस्ट हु बिलोंग्स टू अ डिस्टिंग्विश्ड फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस। He is the son and disciple of renowned flautist S. A. Shashidhar and has imbibed the nuances of classical music through the rich tradition and guidance of his father. Supradeep has demonstrated his dedication and commitment to music from an early age. He successfully completed... Yes, Supradeep. Yes, Supradeep is a talented and accomplished flautist who belongs to a distinguished family of musicians. He is the son and disciple of renowned flautist S. A. Shashidhar and has imbibed the nuances of classical music through the rich tradition and guidance of his father. Supradeep has demonstrated his dedication and commitment to music from an early age. He successfully completed the state junior and senior music examinations, securing ranks in both. His musical talent and promise have been recognized through prestigious scholarships from the Center for Cultural Resources and Training and the Ministry of Human Resource Development. He is an A-grade artist of Akashwani Bengaluru. Through his musical performances, he has reached diverse audiences and contributed to the promotion and propagation of Indian classical music. His artistic journey extends beyond the Indian stage. Supradeep has accompanied his father on musical tours to the abroad where they presented flute duet concerts. Supradeep has also made his presence felt in the broadcast and digital space.
0: आज की इस प्रस्तुति में आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर जी वेंकटेश जोशियर, मृदंगम पर के वी रविशंकर शर्मा और मोरसिंग पर लिखित के एम।
1: इन टुनाइट्स परफॉर्मेंस

0: accompanied on violin by G. Venkatesh Joshiar, on Mridangam by K. V. Ravishankar Sharma, and on Morsing, Likhit K. M.
1: S. Supradeep apne Basuri Vadan ka aarambh Vallabha Nayakasya se kar rahe hain. यह मुत्तुस्वामी स्वामी दीक्षितर की सुंदर रचना है जो राग बेगड़े और रूपक ताल में निबद्ध है.
0: यस सुप्रदीप बिगिन्स हिज फ्लूट रिसाइटल विद वल्लभ नायकस्य अ ब्यूटिफुल कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी स्वामी दीक्षितर सेट इन राग बेगड़े एंड रूपक ताला.

0: अगली प्रस्तुति है मरिवेरे दिक्केवरु। यह पठनम सुब्रमण्य अय्यर की लोकप्रिय रचना है, जिसे राग लतांगी और खंड चापुताल में प्रस्तुत किया जा रहा है।
1: द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज मरिवेरे दिक्केवरु, अ पॉपुलर कॉम्पोजिशन ऑफ पठनम सुब्रमण्य अय्यर, सेट इन राग लतांगी एंड खंड चापुताला।

0: रविवार सरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सुन रहे हैं एस सुप्रदीप का बांसुरी वादन। आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर जी वेंकटेश जोशियर, मृदंगम पर केवी रविशंकर शर्मा और मोर सिंह पर लिखित केएम। अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए एस सुप्रदीप अब प्रस्तुत कर रहे हैं रा रा राजीव लोचना। यह मैसूर वासुदेवाचार्य की मधुर रचना है जो राग मोहनम और आदि ताल में निबद्ध है।
1: इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा यू आर लिसनिंग टू फ्लूट रिसाइटल बाय यस सुप्रदीप। ही इज अकंपनीड ऑन वायलिन बाय जी वेंकटेश जोशियर, ऑन मृदंगम केवी रविशंकर शर्मा एंड ऑन मोर सिंह लिखित केएम। कंटिन्यूइंग हिज परफॉर्मेंस यस सुप्रदीप नाउ प्रेजेंट्स रा रा राजीव लोचना, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मैसूरु वासुदेवाचार्य, सेट इन राग मोहना एंड आदिताला।

0: अभी आपने तनी आवर्तनम सुना, जिसे मृदंगम पर केवी रविशंकर शर्मा और मोर सिंह पर लिखित केएम ने प्रस्तुत किया।
1: दैट वॉज तनी आवर्तनम प्रेजेंटेड ऑन मृदंगम बाई केवी रविशंकर शर्मा एंड ऑन मोर सिंह बाई लिखित केएम।
0: एस सुप्रदीप अपने बांसुरी वादन का समापन कन्नड़ भक्ति रचना तंबूरी मीठी दवा से कर रहे हैं। यह महान संत कवि पुरंदर दास की रचना है और राग सिंधु भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: यस सुप्रदीप कंक्लूड्स हिज फ्लूट रिसाइटल विद अ टाइमलेस कन्नड़ा डिवोशनल कॉम्पोजिशन तंबूरी मीठी दवा कंपोज्ड बाय द ग्रेट सेंट पोएट पुरंदर दासा सेट इन राग सिंधु भैरवी एंड आदिताला।

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सुन रहे थे एस सुप्रदीप का बांसुरी वादन। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर जी वेंकटेश जोशेर, मृदंगम पर केवी रविशंकर शर्मा और मोरसिंग पर लिखित केएम। यह कार्यक्रम आकाशवाणी बेंगलुरु का योगदान था, जिसे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो से आपके लिए प्रस्तुत किया गया।
1: इंदिरावी वासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा। यू आर लिसनिंग टू फ्लूट रिसाइटल बाय यस सुप्रदीप। ही वाज एकॉम्पनीड ऑन वायलिन बाय जी वेंकटेश जोशियर, मृदंगम बाय केवी रविशंकर शर्मा एंड ऑन मोरसिंग लिखित केएम। This program is a contribution of Akashvani Bengaluru, brought to you from the studios of Akashvani Delhi.
2: Namaskar.
3: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जन सेवाओं तथा मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कल शाम तक के मौसम संबंधित पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कई भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं संपन्न होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती पर FM पर कल सुबह 6 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आश्विन माह की छठवीं तिथि, तदनुसार 28 सितंबर सन 2026 सुबह के समय 5:28 और 36 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: सुबह के समय 5:30 हुए हैं। श्रोताओं, सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए ये अनमोल विचार।
1: परिवर्तन जीवन का एक अटल नियम है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। सुख हो या दुख, सफलता हो या कठिनाई, हर परिस्थिति बदलती है। इसलिए बदलाव से डरने की बजाय उसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। कई बार जिस परिवर्तन को हम शुरुआत में कठिन समझते हैं, वही आगे चलकर हमारे जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोल देता है। परिवर्तन से घबराएं नहीं, क्योंकि हर नया बदलाव अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आता है। इसलिए परिस्थितियां बदले तो निराश न हो, बल्कि स्वयं को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढालते हुए आगे बढ़ते रहें।
0: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। सबसे पहले लीजिए सुनिए ये मातृ वंदना।